मैं हूं अभी जुड़ गया हूं आपके साथ में, जबकि है संडे, तो लेकर आया हूं आपके लिए जसशील का ये कूल कूल कारवास, खास आपके लिए अभी से लेकर शाम 6 तक ये चलता रहेगा, जबकि आज है 23rd of August, ऐसे में 8 more days टू गो, कैन यू बिलीव इट। और जी हाँ, देखते ही देखते ये भी गुजर ही जाएगा, निकल ही जाएगा और शुरू हो जाएगी एक और एक महीना हमारे लिए, आपके लिए। ये सभी कुछ बातें रहेंगी आपके साथ में। आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM पर, रोवा पर आपका खास स्वागत करते हैं। मैं हूँ अभी, साथ देता रहूँगा आपका, लेकर आया हूँ ढेर सारा प्यार आपके लिए। बस आपको याद रखना है ये 5599 आपका मैजिक नंबर है, साथ में 0800-004-866 पर आप कॉल करके बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम आए हैं, कुछ अपनी कहे और कुछ आपकी भी सुने।

0: लटकी।
1: मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि 12:22 हो चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दूं कि हमारे हम फेसबुक पेज पर ढेर सारे प्रमोशन अभी चल रहे हैं, इसके बारे में आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। लेकिन आज के लिए हमने एक पोस्ट अपलोड किया है जहां पर एक सिनारो बेस्ड क्वेश्चन दिया है आपको, एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन दिया है और आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना होगा कि गाड़ियाँ यहाँ पर कैसे मूव होगी। How will cars move on from this intersection? अगर जो आपको पता है तो वहाँ पर आप जाकर इस पोस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे ये बताऊं कि घर से निकलते निकलते स्टूडियो आने के लिए मैंने दर्पण से मुलाकात की। मैं दर्पण से मिला और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। अब दर्पण कौन है और कहाँ रहता है, यही आपको बताना है 5599 पर।

0: biggest hits.
1: But you hit the gun, Dave.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया
5: अभी. ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaiku.
7: Radio pe gaano ki farmaish ki ja sakti hai. Apno ke naam sandeshe bheje ja sakte hain. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
8: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
9: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
10: अब हमारा क्या होगा?
11: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
9: तो क्या करें?
12: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
13: Rev those savings engines and rush into Briscoe's for huge half-price deal winners. All air fryers, duvet sheets, cookware sets, towels, RoboVacs and microwaves are half price. In Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
14: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island. Like whole chicken legs, $7.99 per kilo. Or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
15: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
16: हाँ. अच्छा
15: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
16: मिसेस सिंह.
17: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
18: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
19: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और 6 तक ये कारवा आपके साथ में चलता रहेगा। और जबकि बातें हो रही थी, मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मैं दर्पण से मिला, और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो आपको यही बताना है कि दर्पण रहता कहाँ है और कौन है। हाँ, दर्पण कौन है और रहता कहाँ है, यही आपको 5599 पर बताना है। वैसे अमित को तो पता है, अमित ने जवाब दे दिया है। इसके साथ में श्रुति का भी मैसेज आ गया है। और आगे बढ़ते हुए अगला जो गाना है, ये जितने भी प्रिया है आउट देयर, ये आपके नाम पर है, आपके लिए है। जबकि कुमार शानू और अलका याग्निक साथ में आ रहे हैं, और ओ प्रिया लेकर।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम पर जशिल है ये और मैं हूँ आपका साथी. अभी छः तक हमारा और आपका साथ रहेगा. जबकि टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं तो अमित ने बताया था और जवाब दिया था इसके साथ में 5356. आपने भी मैसेज किया था, आपने अपना नाम नहीं लिखा लेकिन कोई बात नहीं. और श्रुति ने भी सही जवाब दिया है. इसके साथ में एक बड़ा ही डीप सा जवाब आया है और किसी ने लिखा है कि जो आईना है ये भी कभी कभी झूठ बोल देता है और आप रेडियो पर मेरा नाम ना ले तो मैं नहीं लूँगा. तो काफ़ी डीप था लेकिन जो भी हो, जो आंसर हम देख रहे थे कि जबकि मैं घर से निकला था और दर्पण से मिलकर आया, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है. दर्पण कौन है और कहाँ रहता है? तो दर्पण इज़ अ मिरर, शीशा है ये, और ये घर में ही रहता है और निकलते निकलते शीशा हाथ से छूट गया, दर्पण टूट गया. क्या इसका कोई मतलब होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन आज निकलते निकलते यही हुआ है हादसा. लेकिन कुछ चोट चपेट नहीं आई, बिल्कुल सही सलामत है और यही होगा कि एक रिप्लेसमेंट मीरा ढूंढना पड़ेगा. लेकिन कारवां को आगे बढ़ाते हैं. अब की बार जुबिन नौटियाल है और साथ में और साथी इनके हैं जो आ रहे हैं आपके लिए पहला नशा वंस अगेन लेकर. थोड़ी देर में आपके साथ में एक बार फिर कोशिश करेंगे. सोशल मीडिया कंपटीशन जो रक्षाबंधन है इसके बारे में भी बात करेंगे आपके साथ में और क्या क्या प्रमोशंस हो रहे हैं इसके बारे में आपको एक बार फिर बतला देंगे. हो सके तो ओनिया भी कोशिश करेंगे.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin binning. And you need to know about it.
4: Join our tribe!
3: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
4: join our tribe!
5: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
6: You filled the pinata before I sealed it, right?
7: No, you did.
6: Oh, I thought you did.
8: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari good brands nahi hai.
12: Just chill.
13: हम पर जशिल का आप मजा ले रहे हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं फ्लैट बुश में कैशुअल आप है साथ में कविता है साहिल है और साथ में है छोटे से सनव और आपने कहा है आप इंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए और जस्ट आफ्टर वन आपके लिए लेकर आएंगे रक्षाबंधन ऑन एयर जहाँ पर आपको सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देकर अपने आप को ड्रॉ में शामिल करना है जहाँ पर ड्रॉ होगा 28 अगस्त को और दो लकी विनर्स रहेंगे जो अपने साथ $250 इनाम ले जा सकते हैं अपने भाई या बहन के लिए आप गिफ्ट ले सकते हैं तो ये सभी कुछ रहेगा मैं आपको बताऊं सच में कि जब भी मैंने प्रमोशन किया है उन्हें बहुत कम एंट्रीज आए हैं और आज मैं होपफुल हूं कि आफ्टर वन कोई ना कोई कॉल आएगा जहां पर लाइव ऑन एयर आप सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू देंगे और आपके नाम को हम ड्रॉ में शामिल कर लेंगे अगर जो आप चाहें तो ऐसे ही बात करें जैसे आप घर पर बातें करते हैं ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करें ऑन एयर लेकिन आप अगर जो कुछ अच्छी बातें भी बताना चाहते हैं अपने सिबलिंग के बारे में या फिर कुछ खामियाबी है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं हमारे साथ में तो 0800004866 पर 1 बजे के बाद आपको बिल्कुल मौका देंगे

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और हमारे स्टूडियोज में शार्प वन हो चुके हैं. और ऐसे में आपको बता दे, अगले आवर पर आपके लिए लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज. लेकिन उससे पहले आपके साथ में मौका है अब क्योंकि अब लाइंस को ओपन कर रहे हैं फॉर रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आप हमारे पास में 0800-004-866 पर कॉल कर सकते हैं अभी और अपने सिबलिंग के बारे में जो भी आपको दिल से लगे आप बस बयां कर दीजिए उन्हें हमारे साथ में. और इसके बाद में आपके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा जहां पर आप $250 इनाम जीत सकेंगे जो ड्रॉ होगा 28 अगस्त को. तो अभी तक मेरा जो रिकॉर्ड है यहाँ पर जो रक्षाबंधन के लिए एक भी एंट्री मेरे शो से नहीं गई है. लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ और मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई किसी न किसी दिन, जबकि समय तो बहुत नहीं है, लेकिन कोई ट्राई ज़रूर करेगा 0800-004-866 पर. और जो कॉल है देखो ये आ गया अब. हेलो, हम पर आपका खास स्वागत है.
3: हेलो भैया, गुड आफ्टरनून, केवल्स बोल रहा हूँ, कैसे हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: बढ़िया भैया. आप बोल रहे कि एक भी एंट्री नहीं गई, मैंने सोचा चलो भैया का दिन बना देते हैं.
2: आपका दिल बहुत बड़ा है.
3: बहुत बड़ा भाई.
2: थैंक यू सो मच, आपके कॉल के लिए शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और पता नहीं क्यों जो रक्षाबंधन का ओवरऑल हम देख रहे थे इसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमने सोचा चलो कोशिश करते हैं क्योंकि कोशिश से बढ़कर कुछ नहीं है ना.
3: सही बात है भाई. अच्छा, कोशिश करेंगे तो कुछ होगा ना.
2: यस, दैट्स राइट. और अपने सिबलिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे?
3: मेरी सिस्टर है, वो मेरे से छोटी है 3-4 साल, तो वो तो इंडिया में है, शी हैज अ फैमिली एज वेल. बस कुछ नहीं, हमारा प्यार चलता रहता है. रक्षाबंधन पे वो मेरे को राखी पोस्ट कर देती है और मैं उसको वाइज मनी भेज देता.
2: अच्छा चलो ठीक है. लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि ये कितने लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ये रिश्ता कायम है. रक्षाबंधन का जो प्रथा है जो चलती आ रही है, जो कस्टम है कि
3: ये तो भाई फिर अपने खून में है ना, ये रिश्ते तो खून में, ये तो कहीं कभी नहीं जाएंगे ना.
2: बिल्कुल बिल्कुल. आखिरी बार लड़ाई कब हुई थी?
3: नहीं भाई, हम लड़ते नहीं.
2: बिल्कुल नहीं लड़ते?
3: नहीं नहीं, हम नहीं लड़ते. वो
2: वेरी nice.
3: थोड़ी बहुत ही किसी चीज पे लेके थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बहस हो जाती है, फिर वो भी चुप कर जाती है, मैं भी चुप कर जाता हूँ.
2: अच्छा चलो सीखते हैं.
3: तो हम ये हमारे बीच में कभी वो मारदाड़ वाला काम नहीं हुआ, ना ही लड़ाई हुई है, टचवुड.
2: आपको सबसे,
3: हाँ जी,
2: आपको सबसे अच्छी बात उसकी क्या लगती है, आपकी बहन का, बहन के?
3: उसका मेरे को ऑलवेज सपोर्ट करना, साथ देना, चाहे मैं गलती हूँ. जब किसी बंदे के सामने हो जाती है तो वो बोल देती है भाई ये चाहे गलती है तो मेरा भाई ना.
2: वाह, वंडरफुल यार, ब्यूटीफुल. बिल्कुल
3: वो नहीं है जो वो करण और दुर्योधन की दोस्ती थी ना. करण को मालूम था कि ये दुर्योधन गलत है, पर वो बोलता था यार है तो मेरा दोस्त ही ना, चाहे गलती है.
2: यस, ये अच्छी बात.
3: हम दोनों का ऐसे होता है.
2: बिल्कुल सही.
3: हम धर्म, भाई बहन का धर्म नहीं बात है.
2: ओह वेरी नाइस, वेरी वेल सेड. आपने आपने आपने अपनी बहन का नाम नहीं बताया?
3: उसका नाम है बेअंत.
2: बेअंत, ओके. और आपका नाम?
3: मेरा नाम केवल सिंह.
2: केवल सिंह, थैंक यू सो मच केवल, आप प्रोग्राम में आए हैं. और होपफुली शायद हु नोज, जबकि ये ड्रॉ 28 अगस्त को होगा, $250 शायद आपके हाथ लग जाए.
3: क्या पता भाई.
2: अच्छा,
3: हु नोज ना. अच्छा है ना यार, 250 आएगा.
2: हाँ, फिंगर्स क्रॉस.
3: तो ये कैसे बताओगे आप, कॉल करोगे या टेक्स्ट आएगा या?
2: हमारे जो यहाँ पर सैंडी होती है या फिर पूजा, ये आपको कॉन्टेक्ट करेंगे जैसे ही ड्रॉ होगा. और होपफुली मैं तो अपनी तरफ से यही कहता हूँ कि आप ही का नाम निकले और निकल जाता है
3: तो मैंने आपके प्रोग्राम में फोन
2: किया. मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है और जो हमारा ये फॉर्म होता है उसमें मैं अब डाल दूंगा और फिर उसके बाद में होपफुली जब ये ड्रॉ हो तो जैसे ही आपका नाम निकलता है आपको कॉल किया जाएगा. इसमें से कितना अपनी बहन को दोगे? इसमें से कितना अपनी बहन को दोगे?
3: मैं सारे दे दूंगा भाई उसको.
2: अच्छा चलो, आपका दिल वाकई में ही बड़ा है केवल.
3: नहीं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर दैट.
2: थैंक यू
3: एंड यू हैव अ गुड डे, गुड वीकेंड.
2: यू टू ब्रदर, टेक केयर.
3: थैंक यू,
2: थैंक यू. तो ये थे केवल हमारे साथ में. हेलो, आपका स्वागत है.
4: नमस्कार सर, कैसे हो?
2: नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपका नाम?
0: मेरा नाम अंतरप्रीत है
2: जी।
0: हाँ जी, तो आप पहले मेरे को बताइए, आप कब का ज्वाइन किया आपने हम रेडियो?
2: मैं मुझे आए
0: जी
2: कुछ 7-8 महीने हो गए, बिल्कुल नया हूँ।
0: ओके ओके ओके, ठीक है। आपकी बात सेम कृषि जैसी लगती है, मुझे लगा शायद नाम चेंज कर दिया आपने।
2: अच्छा, हो भी सकता है क्योंकि जब प्रोग्राम करते हैं तो चेहरा तो दिखता नहीं ना।
0: हाँ नहीं, मैं फेसबुक पे देख रहा था आज।
2: अच्छा।
0: तो मैंने पहले भी नहीं देखा था, क्रिश को भी नहीं देखा था, लेकिन आवाज मेरे को सेम ही लग रही है, पता नहीं अभी।
2: अच्छा। कई लोगों का कहना है, आपने हमारे साथ ही जिकाश को सुना है? जिकाश ये रेडियो पब्लिक,
0: जिकाश की तो आपकी हाँ मिलती है आवाज, बहुत मिलती है।
2: हाँ।
0: वो क्रिश के साथ भी बहुत मिलती थी, आपके साथ भी बहुत मिलती है,
2: यही बातें
0: बस। थोड़ा आपका जो स्टाइल, मतलब की आपका थोड़ा सा दोनों का स्टाइल सेम है, मतलब कि आपने वही बात करनी है जितनी मतलब की है, जैसे कि कुछ
2: अच्छा
0: वो जो सियाने होते हैं ना, सियानी बात करते हो आप।
2: ये जानते हो ऐसा क्यों है?
0: आलतू फालतू की बात नहीं करते आप।
2: आप जानते हो ऐसा क्यों है?
0: हाँ नहीं, मैं नहीं जानता, बताओ।
2: मैं आपको बताता हूँ, देखियो मैं आप ही को बताता हूँ, रेडियो पर काफी लोग नहीं सुन पाएंगे इस बात को। मुझे इसी तरह से ट्रेन किया गया है, घर पर बात करने को मौका लगती ही नहीं है।
0: ओके ओके ओके, ठीक है।
2: नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। और आपको मालूम है रक्षाबंधन जो प्रमोशन है ये चल रहा है?
0: हाँ, मेरे को मालूम है, मालूम है मेरे। अच्छा, को तो हाँ।
2: और फादर्स डे का मालूम है
0: तो आप मेरी एंट्री डाल दो। मैं
2: फादर्स डे का आपको मालूम है? फादर्स डे,
0: हाँ फादर्स डे का मालूम है।
2: अच्छा चलो ठीक है,
0: मालूम है। वो तो जब आया था 3-4 दिन पहले सैंडी, मैं क्योंकि मेरा मैं शॉप पे काम करता हूँ, तो मेरा सुबह से लेकर 9 से 9-12 घंटे चलता रहता है हम।
2: अच्छा, तो दैट्स वेरी नाइस। तो आपके लिए तो एक और एक प्रमोशन भी काफी सही रहेगा, जो हम बोर्डिंग कॉल चल रहा है, हम बोर्डिंग कॉल।
0: हाँ वो रोवा पे। जी जी जी।
2: हाँ, तो उसमें भी भाग लेते रहना, लेकिन अभी के लिए क्या है?
0: हाँ, लेता रहता हूँ मैं, लेता रहता हूँ मैं।
2: वेरी नाइस। अभी के लिए क्या है कि मेरे शो में सिर्फ एक ही एंट्री अलाउड थी, तो मैंने वो ले ली है।
0: ना ना कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे कॉल किया, मैंने आपके साथ कभी, मैंने बाकी तो मेरे सैंडी रुजबे तो मेरे से डेली में बात करता हूँ, वो तो जानते हो, आपसे कभी नहीं की। मैंने तो वैसे कॉल, आप बोल रहे कॉल नहीं कर रहे, मैंने तो वैसे किया है, कोई नो प्रॉब्लम।
2: थैंक यू सो मच, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम अंतरप्रीत।
0: तो अभी एक बात तो बता दो कि क्रिश तुम भी हो या?
2: ओ क्रिश, क्रिश एक सोच है। नहीं मैं क्रिश नहीं हूँ, वाकई में क्रिश अलग है। मैं अवि हूँ, और शायद हमारी स्टाइल मिलती होगी। और लेकिन जिकाश से मुझे बताया गया कि आवाज काफी मिलती है, लेकिन
0: जिकाश का तो मालूम है। हाँ, वो हाँ, वो कल कर रहे थे रेडियो पर, तो मैं सुन रहा था उनको। हाँ, आप लास्ट वीक के कर रहे हो ना, लास्ट वीक 2 वीक हो गया आपको, लंच बॉक्स भी कर रहे हो, मैं सुनता हूँ वो आनी ना केतन भाई।
2: हाँ हाँ, केतन अब सोमवार से आ जाएंगे और लंच बॉक्स वापस एक बार फिर वो लेकर आएंगे। मैं अब वीकेंड पर आऊंगा और आपसे बस इसी तरह से साथ बना रहेगा। लेकिन रियली अप्रिशिएट आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू, हैव ए गुड डे।
2: थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉल। अच्छा, तो अच्छा लगा बातें करते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक्स भी मिल रहे हैं, आवाज़ मिल रही है, और साथ में और मिलेगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हम का अम्ब्रेला है, हमारा प्रेजेंटेशन स्टाइल भी अलग है और एक ही तरह है। और इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहें, बस यही कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में और लेकर आएंगे आपके लिए फादर्स डे प्रमोशन, और चलो और कुछ गाने आपको सुनवाते हैं। और कुछ नहीं, रक्षाबंधन पर जबकि एक एंट्री हो चुकी है, तो रक्षाबंधन को लेकर, इस थीम को लेकर ही अगला गाना आपके लिए लेकर आते हैं। पहली

आज के इस जटिल प्रोग्राम में कोशिश यही रहती है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते रहें, जैसे कि स्पोर्ट्स की दुनिया, इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स की बातें भी आपके साथ में होंगी। लेकिन आज सुबह सुबह जो ऑल ब्लैक्स और साथ में साउथ अफ्रीका के बीच में जो खेल हुआ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग मैच ये रहा है। और यहाँ पर ऑल ब्लैक्स की शानदार जीत स्प्रिंगबॉक्स के खिलाफ 33-16 से हुई है, जबकि ये इनकी 4-match tour की पहली मैच टेस्ट मैच रही है। और ये गेम साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में थी। यहाँ पर न्यूजीलैंड राधा कंफर्टेबली 17 points से जीती है, और इस मैच को जीतने के बाद में शायद ये इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री रही होगी इन साउथ अफ्रीका। और यहाँ पर जो रग्बी पंडित हैं, इनका कहना है कि एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑल ब्लैक्स थे गोइंग इनटू दिस मैच, इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी, जबकि प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे, दे हैड टू फ्लाई कवर्स ओवर। और इसके बावजूद इनकी एक जीत यहाँ पर हुई है, रिजल्ट अच्छा मिला है, तो यह कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है, जो ऑल ब्लैक्स और साथ में स्प्रिंगबॉक्स के बीच में जो मैच हुआ, 33-16 से ऑल ब्लैक्स की जीत हुई।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
3: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
4: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स, हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग, स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
4: 100% authentic and pure as mother's love.
5: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
6: Hey, still house hunting next weekend?
7: No, hopefully not. Going to an auction tomorrow.
6: Whoa, how did you sort things so quickly?
7: My BNZ home loan partner, Jane, met her last Saturday, got her home loan sorted, and she's even calling tonight, so we're ready for the auction.
6: All that from one person.
8: Go direct to a BNZ home loan partner and deal with the decision maker from search to settlement. Bank of New Zealand. Let's find a way. All home loans are subject to BNZ lending criteria, minimum equity requirements and terms and conditions. Up to a $150 establishment fee and other fees may apply.
9: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
10: Big jobs, bigger savings. Right now, save up to $16,000 across LDVs, utes, vans and SUVs. LDV, helping Kiwis work harder every day. LDV distribution arrangements in New Zealand are subject to change. See ldv.co.nz for important information.
11: Non-stop Bollywood. Bollywood's biggest hits.
12: Just chill.

0: your chance to win two return tickets to Vanuatu with Solomon Airlines.
1: Let's take a vacation.
0: And $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines. Flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: हम पर मैं हूं आपका साथी अभी आपने सुना हम बोर्डिंग कॉल के बारे में ये स्वीपर जबकि हम बोर्डिंग कॉल इज नाउ ओपन जो कि आपका ड्रीम आइलैंड एस्केप है कुड बी जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे जहां पर आप जीत सकते हैं टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी यस $1,000 स्पेंडिंग मनी और कैसे आपको एंटर करना है सिर्फ हमको आप एवरी वीकडे सुनते रहें और बी ऑन द लुकआउट फॉर स्पेशल बोर्डिंग कॉल क्यू जो सुबह 8 के आसपास साथ में 11 के आसपास और दिन में 1 बजे के आसपास और शाम को 5 बजे के आसपास आपको सुनाई देगा हम पर और जैसे ही आप इसको सुने आपके पास में 1 आवर का टाइम है समय है आप रोवा पर जाकर बोर्ड नाउ टाइप करके और उस पर सबमिट क्लिक कर सकते हैं बस इतना ही करके आप अपने आप को ड्रॉ में शामिल कर लेंगे अगर जो आपको इस कंपटीशन पेज का लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर आप टेक्स्ट करिए ताकि आपको लिंक मिल सके और आसानी से आप इसको ढूंढ सके बस इतना ही यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेट अवे डोंट मिस योर फ्लाइट बिकॉज दिस वन कुड टेक यू टू पैराडाइज हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग फोर टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनुआतु Visit flysolomons.com. T's and C's do apply.

0: Just Chill.
1: हम पर ये है जस्ट चिल, न्यूज़ एट टू, और न्यूज़ के सीधे बाद आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज।

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अवि आपके साथ में, जबकि 2:02 हो रहे हैं और ये कारवा है जस्ट चिल का. और समय को देखते हुए अब टाइम हुआ आपके साथ में खेले The Epic Bollywood Challenge. आपको ड्रिल बिल्कुल मालूम है, यहाँ से मैं आपको क्लूज देता हूँ, ट्रिविया देता हूँ, और उन्हीं क्लूज के बेसिस पर आपको पहचानना होता है कि किस गाने की हम बात कर रहे हैं. जो सबसे पहले गाने को पहचान कर हमारे पास में मैसेज करता है अपने नाम के साथ में, वही इस वीक का विनर ठहराता है. जैसे कि लास्ट वीक कॉम्पिटिशन को जीता था श्रुति ने, जबकि उन्होंने तेरे नाम का टाइटल ट्रैक को पहचाना था. तो इसी तरह से आज भी एक इंटरेस्टिंग गाना है आपके साथ में, जिसके बारे में मैं आपको बस बताने वाला हूँ. आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, समय उतना ही है. जैसे ही हम क्लूज बताना शुरू करें और गाना बजाने से पहले जो बीच का समय है, उसी टाइम में आपको आइडेंटिफाई करके अपना जो जवाब है हमारे पास में 5599 पर भेजना होगा. सो हियर इट गोज. आज का एपिक बॉलीवुड सॉन्ग 2004 की फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था सक्सेसफुल कोरियोग्राफर टेंड डायरेक्टर ने, और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी बतौर एज डायरेक्टर. एक कॉलेज कैंपस बेस्ड मूवी है, जहां पर एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर करंट आर्मी जनरल की डॉटर को यूज़ करना चाहता है टू सेबोटाज प्रोजेक्ट मिलाप पीस टॉक्स, जिसे इंडिया ने शुरू किया है. मिलिट्री को भनक पड़ जाती है एंड दे सेंड ए हाईली ट्रस्टेड राम प्रसाद शर्मा एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह. यह थी फिल्म की ब्रीफ प्लॉट. फिर उसमें एक इमोशनल स्टोरी भी है जो दो स्टेप ब्रदर्स की है. उसमें तड़का भी लगाया गया है विद लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अगर जो आपको पता चलता है तो 5599 पर अपना जो जवाब है ये भेजें. इस फिल्म में दो रोल के लिए डायरेक्टर को काफ़ी मुश्किलें आईं. एक तो एंटोगनिस्ट का, जहां पर इस रोल के लिए काफ़ी एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया, जिनमें शामिल थे नसीर उद्दीन शाह. उन्होंने फिर डिक्लाइन करके एक छोटा सा पार्ट इसमें प्ले किया था. फिर उसके बाद में कमल हसन और नाना पाटेकर को भी अप्रोच किया गया था. कमल ने इनकार कर दिया. साथ में नाना पाटेकर ने कहा कि कुछ कंडीशंस है, इसको आप पहले मीट करो और इस कहानी को थोड़ा सा चेंज करो, ट्विस्ट करो, और फिर शायद मैं कर पाऊंगा. सो द डायरेक्टर मूव्ड ऑन. फिर दूसरे रोल के लिए, जहां पर लक्ष्मण प्रसाद लकी की रोल के लिए काफ़ी दिक्कतें आईं, जबकि कोई एक्टर तैयार ही नहीं था इस रोल को करने के लिए. इनिशियली ड्यूरिंग कहो ना प्यार है, मैकेज ने अप्रोच किया था ऋतिक को. उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया, लेकिन फिर कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन अ डबल हीरो प्रोजेक्ट. फिर वो अभिषेक के पास भी गए, उन्होंने भी बात किया, लेकिन वो भी वर्कआउट नहीं हुआ. सोहेल खान ने भी रिजेक्ट कर दिया. और एक दिन डायरेक्टर ने चुरा लिया है तुमने देखी, एंड देन जैद खान वॉज साइंड टू डू दैट रोल. डायरेक्टर और फिल्म के सुपरस्टार लीड जो है, इनके बीच में काफ़ी बनती थी, इसीलिए कहानी सुनने के बाद SRK ने सिर्फ एक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि फिल्म को प्रोड्यूस करने को भी कमिट किया. और ये उनकी नई प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज की पहली प्रोडक्शन थी. इतना सुनने के बाद में तो आपको फिल्म का अंदाज़ा लग गया होगा. आज जिस गाने को हमने लिया है, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक है. अब बात करते हैं म्यूज़िक की. कंपोज़र है अनु मलिक, और इस पर्टिकुलर गाने को गाया है सोनू निगम ने. गाने लिखे हैं जावेद अख्तर ने. इस ट्रैक की शुरुआत में जो आप विशल सुनोगे, इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अनु मलिक ने वो विशल किया है. उस विशल को उसने खुद अपनी धुन में रिकॉर्ड किया है. और सारे जो नोटेबल सिंगर्स थे इस म्यूज़िक एल्बम में, वो थे KK, अभिजीत, अलका याग्निक और सुनिधि. इस फिल्म के टाइटल ट्रैक की जो एक स्टोरी है अलग है, क्योंकि मेकर्स को शुरू में ये जो फिल्म का टाइटल है, एक वॉकिंग टाइटल की तरह ही यूज़ करना था, जिसे बाद में कन्फर्म किया गया. SRK को शुरू में यह टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं था, जब तक उन्होंने फिल्म का मेलोडियस टाइटल ट्रैक सुना नहीं. अच्छा, टाइटल भी रीअश्योरिंग है, क्योंकि ये अक्सर लोग आपसे कहते रहते हैं ना कि जो भी हो मैं हूं ना. डायरेक्टेड बाय फरा खान. अगर जो आपने मैसेज किया है तो थोड़ी देर में ही देखेंगे, लेकिन अभी के लिए गाना सुनिए और गाने के इंट्रो में विशल भी सुनिए.

हम पर मैं हूं ना अभी आपके साथ में और ब्यूटीफुल नंबर जबकि सोनू निगम साथ में श्रेया ने गाया है। अगर जो आप गौर से सोचे तो जिस जमाने की ये मूवी है 2000s की, वहां पर उस समय अभिजीत वॉज द प्रिफर्ड वॉइस फॉर शाहरुख खान और इस फिल्म में भी उन्होंने मेरे ख्याल से एक दो गाने गाए हैं, लेकिन इस टाइटल ट्रैक को सोनू निगम ने बहुत ही बेखूबी से गाया है। अगर जो आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है या फिर रिविजिट करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और वापस आते हैं अपने टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर, काफ़ी लोगों ने आज अपना जवाब भेजा है जिनमें शामिल है 1665 और इसके साथ में जेकी आपका भी जवाब हमें मिला है और इसके अलावा 1676 आपने भी अपना जवाब सही भेजा है। इसके साथ में अंतरप्रीत थैंक यू सो मच, आप डायरी में बैठकर अपने बिजनेस में बैठकर हमें सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से साथ देते रहे। और इसके अलावा महेश ने भी जवाब भेजा है और साथ में है रवि, रवि का भी जवाब आया, थैंक यू। 2653 आपने भी सही पहचाना, इसके साथ में 7334 आपने नाम तो नहीं लिखा लेकिन आपने सही जवाब भेजा, इसके साथ में गीता आपका भी जवाब मिला है एंड अलोंग विद दैट अंतरप्रीत का एक बार फिर से जवाब आया है और पर्थ पुरोहित आपका भी जवाब सही में आया है और इसके अलावा दीपिका आपने भी सही अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया। इसके साथ में राहुल पांडे आपने भी जवाब भेजा, इसके साथ में फाल्गुनी आपने भी भेजा, आप थोड़ा सा फिसल गई अगर जो टाइम वाइज देखे तो, क्योंकि आपसे पहले रोनल का जवाब आया था और रोनल से पहले जो जवाब हमारे पास में आया था सबसे पहला इफ़ आई एम नॉट रोंग तो ये वेलिंगटन से जवाब आया है और जवाब भेजने वाले हैं सलेश, पहली बार मेरे ख्याल से इस कॉम्पिटिशन में आपने भाग लिया है और जीता भी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू सो मच आप सभी को कि आपने इतना ध्यान और प्यार से सुना और इस कॉम्पिटिशन में भाग भी लिया। तो अगला जो गाना है आप सभी के नाम पर करते हैं, लेकिन फाल्गुनी आप अभी भी लीड कर रही हो जबकि श्रुति का जवाब आज आया ही नहीं, तो यू आर स्टिल इन द लीड। अगले वीक एक और एक नया चैलेंज आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन इन द मीन टाइम आप सभी के लिए अगला ये गीत

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और जबकि आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, अगली बार जब मैं ओनिया आऊँगा तो आपके लिए लेकर आऊँगा फादर्स डे ओनिया प्रमोशन, जहाँ पर आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे और एक सवाल आपको दिए जाते हैं, इसके बारे में सोचिएगा। आपके बच्चे यूँ कहें कि अपने सिबलिंग को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर किसी और को भी एज अ ट्विन रेफा करते हैं, तो जिसको ट्विन रेफा करते हैं वो रिश्ते में या फिर इनके क्या लगते हैं? थोड़ा ट्रिकी है, आपको अच्छी तरीके से सोचना होगा कि ये कभी कभी किसी और पर्सन को अपना ट्विन बताते हैं, और ये ट्विन जो जिसको ये रेफा करते हैं ये इनके भाई या बहन नहीं होते, तो ये क्या होते हैं इनके? बस इतना ही आपको जवाब देना होगा। अगर जो आपके बच्चे आपके आस पास है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई किसको और आप ट्विन बुलाते हो, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। बस इस गाने के बाद में ओनिया कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे फादर्स डे प्रमोशन के अंतर्गत।

0: हम पर आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा को रवि का साथ है, जबकि हम आपको बता रहे थे फादर्स डे प्रमोशन के बारे में ओनेया, जहां पर डेट्स रिवर्स ग्रिल में आपको अपने डेट को कॉल करवाना होगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ बातें करनी है किसी एक स्पेशल फादर से जो 0800004866 पर कॉल करके सही जवाब दे सके, और सही जवाब देने पर इनके नाम को ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहाँ पर फ्राइडे 4 सितंबर को ड्रॉ होने पर ये लकी डेट को मिल सकता है $500 कैश इनाम। तो सवाल हमारा यही था कि बच्चे अक्सर अपने भाई बहन को छोड़कर, ट्विन की बात तो दूर है, अपने भाई बहन को छोड़कर किसी और को रेफा करते हैं एज अ ट्विन, तो जिनको ये रेफा करते हैं एज अ ट्विन, ये इनके क्या लगते हैं, क्या होते हैं इनके बच्चों के, तो यही आपको बताना है 0800004866 पर कॉल करके। क्वीन, आपका जवाब मिला है, थैंक यू सो मच। हाय अवी, ऑसम प्रोग्राम। आपने डिफाइन भी कर दिया है कि ट्विन किसको कहा जाता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि फादर्स को डेड्स को कॉल करना होगा 0800004866। तो आप अपने बच्चों के पापा को कहें कि रिंग करें, कॉल करें हम पर और हमसे बातें करें 0800004866 पर और सही जवाब दे। ये डेड्स रिवर्स ग्रिल है, जबकि एक एंट्री हमें चाहिए आज के शो में। अगर जो आप कॉल कर सकें तो आप हमें जवाब में यही बताए कि हु एल्स डू किड्स रेफर टू एज अ ट्विन। ये इनके सिबलिंग्स नहीं होते हैं, लेकिन इनके लिए इनके ट्विन होते हैं। तो आपको एक और गाना सुनवाते हैं, उतने देर में अगर जो कॉल आया तो ठीक, नहीं तो आज का जो अपॉर्चुनिटी है, जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये अच्छा चलो कॉल आ गया भाई। हम पर आपका स्वागत है, हेलो।
1: हाय देयर, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड थैंक यू। किनसे बातें हो रही हैं? हेलो सुनाई दे रहा आपको बराबर? अच्छा, किनसे बातें हो रही है, आपका नाम क्या है? अच्छा नहीं सुनाई दिया, शायद आप ट्रेवल कर रहे हो। हेलो, यस आई कैन हियर यू मच बेटर नाउ। आपका नाम क्या है?
1: देवांजन।
0: देवांजन, ओके देवांजन, आपको माल, आप एक प्राउड फादर हो?
1: यस।
0: अच्छा चलो, आपको मालूम है जो हमने पूछा इसका जवाब क्या है?

0: मैंने अभी पूछा मेरे बाजू में बैठा हुआ है, सो उसका आंसर तो पता नहीं, मेरे पास तो कोई ट्विन है नहीं.
1: राइट,
0: बट नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज बाबा. सो
1: बाबा, अच्छा,
0: फादर इन आवर लैंग्वेज.
1: ओके ओके, ये भी हो सकता है. अच्छा चलो, लेकिन जिस जवाब को हमको तलाश थी, ये अपने लिंगों में किसी और को रेफर करते हैं एज अ ट्विन. ये अच्छा, चलो मैं आपको एक क्लू भी देता हूँ, शायद ये अक्सर ज़्यादा टाइम उनके साथ में स्पेंड करते होंगे.
0: सबसे ज़्यादा टाइम तो प्रॉबली दोनों के साथ, मम्मी पापा दोनों के साथ ही स्पेंड करते हैं.
1: अच्छा,
0: बट Okay. Not really sure.
1: अच्छा चलो, ये तो सही नहीं था, but thank you for trying. अगला call ले लेते हैं दिबांजन. Thank you so much. Hello, हम पर आपका स्वागत है.
2: Hello, कैसे हो आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. किनसे बातें हो रही हैं?
2: केशवल से बात हो रही
1: है. Hi केशवल, how are you doing?
2: I'm very well, thank you. How are you?
1: I'm good, thank you. क्या हो रहा था केशवल?
2: बस शॉपिंग के लिए निकल रहा हूँ.
1: ओह वेरी नाइस वेरी नाइस. लिस्ट बन गया है कि बिना लिस्ट के जाओगे?
2: बिना लिस्ट के ही क्यों रहे आज.
1: अच्छा वेरी नाइस. आपको मालूम है जवाब?
2: मैंने पूछा, बोल रहा है कि बेस्ट फ्रेंड.
1: बेस्ट फ्रेंड, एब्सोल्युटली राइट. जी हाँ, ये अक्सर बच्चे आजकल अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं ट्विन.
2: मैंने भी पूछा तू आपके पास ट्विन है? बोलता हाँ. बोलता है कौन है? बेस्ट फ्रेंड है.
1: अच्छा, और क्या आपके आपके बच्चे का नाम, बेटे का नाम?
2: सनव.
1: सनव, ही इज वेरी स्मार्ट देन. थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए, इसी तरह से हमारा साथ देते रहे, शुक्रिया.
2: थैंक यू अभी.
1: थैंक यू, सी यू, बाय. तो ये थे केशवल, और इन्होंने सही जवाब दिया है जिसकी हमें तलाश थी, और ये एब्सोल्युटली राइट थे. एक और एक फोन कॉल. हेलो, आपका स्वागत है हम पर. गुड आफ्टरनून.
3: सुमन बोल रहा हूँ, कैसे हो आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया. हाँ, तो ट्विन का वो दूसरा वो रिफर करते हैं एज अ पेयर, जैसे कि दो फ्रेंड की पेयर है.
1: राइट, बिल्कुल सही पहचाना आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया. लेकिन हुआ यूं कि आज की जो एंट्री थी मुझे लेनी थी वो हो गया है, लेकिन आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपको मालूम है सोशल मीडिया पे भी हमारा प्रमोशन चल रहा है?
3: नहीं, वो नहीं पता.
1: अच्छा, मैं जल्दी से आपको बता दूं. देखिए, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, सुपर हीरो वाली. वही आपके बच्चों को एक आपकी तस्वीर को AI का इस्तेमाल करके आपको एक सुपर हीरो का इमेज देना है, और उस इमेज के साथ में हमारे हम फेसबुक पेज पर डेड्स AI अपग्रेड चल रहा है, जहां पर वो कमेंट्स में आपके जो सुपर हीरो कॉस्ट्यूम वाली फोटो है AI से जो जनरेट हुई है वही अपलोड करना है. उसके बाद में आपको टेक करेंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली को टेक करेंगे, कंपटीशन को लाइक करेंगे, और हम फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे. यहाँ पर आपके $300 कैश इनाम आपको मिल सकता है ड्रॉ होने पर. थैंक यू सो मच. और जल्दी से आप उन्हें शाउट आउट भी दे दे अपने अपने बच्चे को. क्या नाम है उनका?
3: श्रीहान.
1: ओके,
3: ही इज ओनली 3 months old
1: नाउ. अच्छा चलो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने भाग लिया. हैव अ वंडरफुल संडे.
3: नो वरीज, थैंक यू, सेम टू यू.
1: टेक केयर, बाय. तो ये थी, बातें हो रही थी फादर्स डे के बारे में, और जो सोशल मीडिया पर कंपटीशन जारी है यहाँ पर भी आप जाकर चेकआउट करें, क्योंकि किसी ने शक्तिमान का एक कॉस्ट्यूम पहनाकर अपने डेट को अपलोड किया है एज AI जनरेटेड इमेज, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. एक अलग टेक है, और हर डेट हर फादर कहीं ना कहीं एक सुपर हीरो ही होता है.
4: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो.

आप सुन रहे हैं हम जस्ट चिल लेकर आया हूँ, मैं हूँ आपके साथ ही अभी।

0: with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.
2: फार्मर्स मैसिव रेड डॉट सेल एंड्स वेडनेसडे. देयर इज नाउ 60% ऑफ रेड डॉट क्लोथिंग, 50% ऑफ रेड डॉट ब्यूटी लॉन्जरी एंड मेंस अंडरवियर, 40% ऑफ रेड डॉट टॉयज एंड 30% ऑफ रेड डॉट लेगो. फार्मर्स रेड डॉट सेल एंड्स वेडनेसडे. कंडीशंस एंड एक्सक्लूजंस अप्लाई.
3: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that five-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
4: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. Five-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
5: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
6: Join the Tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
6: join the Tribe!
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
8: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
9: अब हमारा क्या होगा?
10: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
8: तो क्या करें?
11: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800 722 462. फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
12: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
0: Zabardast hits.
13: Shuru ho jaye to rukte nahi.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
14: हम पर रवि का साथ है और आपके साथ में अक्सर हंसी मजाक होती रहती है, लेकिन बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी बातें भी हम करते रहते हैं. अब की बार आपका ध्यान खींचना चाहेंगे मेडिकल अलार्म्स के तरफ, जहां पर अगर जो आपके घर में ऐसी सिचुएशन है जहां पर घर पर कोई बुज़ुर्ग रहता है आपके साथ में और अक्सर ये बीमार रहते हैं और इनके साथ में दिन में कोई नहीं रहता या फिर ये काफ़ी समय अकेले घर पर रहते हैं, तो क्या कभी आपने मेडिकल अलार्म्स के बारे में सोचा है? जबकि काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है और मेडिकल अलार्म्स की ये फ़ायदा होती है कि जब आप काम पर नौकरी पर होंगे आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि घर पर कोई बीमार बुज़ुर्ग है, अगर जो इनको ज़रूरत पड़ती है तो एक मोनिटर होता है घर पर मेडिकल अलार्म जैसे कंसोल जैसा, और तकलीफ़ पड़ने पर ये उसको पुश करके आसानी से खुद के लिए मेडिकल हेल्प मांग सकते हैं. जो मेडिकल अलार्म से अगर जो सिनारियो दे, अगर जो कभी कभी कोई बाथरूम में बुज़ुर्ग गिर जाए या फिर उठ नहीं पाते हैं, तो जबकि कंसोल इनसे दूर होता है तो एक पेंडेंट भी इनके पास में होता है और उस पेंडेंट को पुश करते ही इनकी जो कॉल है बातें होने लगती हैं, जो टीम इसको मॉनिटर करती है या फिर सीधे डिस्पैच एम्बुलेंस टीम के साथ में, और यहाँ पर ये खुद के लिए एम्बुलेंस मांग सकते हैं. तो कभी कभी हमारे ख्याल में ऐसा कभी होता नहीं है कि क्या और कुछ कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, तो एक ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में. अगर जो आपकी ऐसी कुछ सिचुएशन है और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आप कुछ चाहते हैं तो ढेर सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. आपको खुद इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कि सबसे उम्दा और बेहतर सर्विस कौन देता है एट अ चीपर रेट, लेकिन ऐसा करने से आप उनको भी कहीं ना कहीं एक विश्वास दिला सकते हैं कि भले ही आप दूर हैं उनसे, लेकिन सर्विसेज या हेल्प दूर नहीं है। तो इसके बारे में सोचिएगा, अगर जो आपको कहीं ना कहीं कोई बुज़ुर्ग है घर पर, जिसे आपको छोड़कर सुबह जाना पड़ता है और फिर शाम को वापस आना पड़ता है, तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कहीं ना कहीं दिन में अगर जो ये गिर पड़े तो ये इनके लिए हेल्प कहाँ से आ सकती है। तो एक ऑप्शन अवेलेबल है और इसके बारे में आप कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं।

0: Stop Bollywood.
1: पूछो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम पर इट्स 14 अवे फ्रॉम 3 और हमारा प्रोग्राम का मजा ले रही हैं अमृता. आपने भी मैसेज किया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इसी तरह से हमारा साथ देते रहे 104.2 FM साथ में रोवा पर.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
6: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
9: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
0: Winger Motors are your home of Cherry, jahan nahi

0: to Avineet.
1: हम पर इस जस्ट आफ्टर थ्री और मैं हूँ आपका साथी अभी छः तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा और ऐसे में इस हवा पर भी ढेर सारी बातें आपके साथ में होती रहेंगी और इट्स टाइम फॉर सम टी और जबकि कुछ लोगों की आदत होती है दोपहर को इतने बजे आपको चाय चाहिए, मुझे भी चाहिए और कुछ और गाना भी सुनवाते हैं आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आता हूँ आफ्टर शॉर्ट टी ब्रेक।

हम पर रवि के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा 6 तक। और आपको बता दूं जल्दी से कि आपके आसपास कम्युनिटी में क्या कुछ होने जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी ये बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाएगा सैटरडे 29 अगस्त, विच इज नेक्स्ट वीक सैटरडे। और 29 अगस्त से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक आप जा सकते हैं द केव एट 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मेनेकाओ, जो बिल्कुल वेयर हाउस के ऑपोजिट में है। हर रात्रि 7:30 PM से यहाँ पर जो कथा है इसकी शुरुआत होगी, जबकि दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ में रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मेनेकाओ सभी कृष्ण भक्तों को इन्वाइट कर रही हैं ताकि यहाँ पर आप आकर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को मना सकें। सैटरडे 29 अगस्त से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक ये प्रोग्राम रहेगा एट रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मेनेकाओ रात को 7:30 PM से।

0: please. We are now inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के

0: to visit flysolomons.com.
1: Hamper, coming up next, मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग इन योर कार. जी हाँ, काफ़ी समय आप अपने नई गाड़ी के लिए अपनी पुरानी गाड़ी को ट्रेड कर देते हो, और इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ में करूंगा, जबकि consumer.org.nz ने कुछ पॉइंट्स उठाए और ये पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ.

हम पर मैं हूँ आपका साथी। जबकि बातें हो रही थी अबाउट ट्रेडिंग इन ऑफ योर कार्स, जब भी आपको एक नई गाड़ी लेनी होती है तो काफ़ी आम बात है, जब भी आपको अपग्रेड करनी पड़ती है आप डीलर के पास जाते हो, अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी, अपनी करंट पुरानी गाड़ी को आप ट्रेड इन कर देते हो और नई गाड़ी लेकर आ जाते हो। तो consumer.org.nz ने बताया है कि कुछ बातें हैं जिससे आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीलर का यही मोटिव होता है कि वो आपकी करंट गाड़ी पर मैक्सिमम प्रॉफिट बना सके। तो कुछ प्रोज और कौनस है जिसके बारे में मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। प्रोज ये है कि जब आप ट्रेड इन करते हो आप बच जाते हो ऐसे झंझट से जहाँ पर आपको गाड़ी की फॉर सेल एडवर्टीजमेंट्स नहीं लगानी पड़ती है और साथ में किसी इंक्वायरीज के साथ में डील नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब भी आप ट्रेड इन करने जाते हो इसका एक कौन यानी कि डिसएडवांटेज ये है कि आपको आपका मार्केट वैल्यू शायद गाड़ी पर नहीं मिलता, क्योंकि डीलर का यही लक्ष्य होता है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो बना सके, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आपको बिलो मार्केट एक प्राइस ऑफर करेंगे। तो इसमें आपकी राइट ये है कि आप इस जो ट्रेडिंग वैल्यू है इसके साथ में नेगोशिएट करें, और इसको करने के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, अपना खुद का रिसर्च करना पड़ेगा कि आप करंट मार्केट प्राइस चेक कर ले अपनी गाड़ी की, और इसके साथ में जो ईयर है, मॉडल है, मेक है और क्या माइलेज है, ये लेकर आप एक फेयर मार्केट प्राइस फाइंड आउट कर ले, ताकि जब आप डीलर के पास जाए यू हैव अ फिगर इन योर माइंड और इसको लेकर आप उनसे बातें कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे डीलर आप पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, इनफैक्ट ये आपके गाड़ी पर पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। सो यू हैव दिस राइट अकॉर्डिंग टू consumer.org.nz कि जहां पर आप एक फेयर प्राइस बार्गेन कर सकें।

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

हम्पर, मैं हूँ आपका साथी अवि। जबकि गाड़ी खरीदने के बारे में हमने आपसे बात कर ली है, ट्रेड इन वैल्यूज के बारे में बात कर ली है, लेकिन अब बातें करते हैं एक ऐसे शहर टाउन की जहां पर आज भी आप एक 3 बेडरूम घर 400,000 के करीब करीब ले सकते हैं। इस पर और भी बातें होंगी, बस कमिंग अप नेक्स्ट।

जसचिल का ये कारोबार है हम पर, मैं हूँ आपका साथी। अभी जबकि बातें हो रही थी प्रॉपर्टी प्राइसेस को लेकर, तो आज भी न्यूजीलैंड में एक ऐसा शहर है जहाँ पर आप एक 3-bedroom होम विद अ कोटा एकर सेक्शन खरीद सकते हो करीब करीब एट अ मीडियन प्राइस ऑफ $400,000। जबकि स्टफ ने रिपोर्ट किया है REINZ के एक रिपोर्ट को। REINZ ये रियल एस्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूजीलैंड है, इन्होंने एक रिपोर्ट पुट फोर्ड किया था जहाँ पर मीडियन प्राइस $400,000 में आप साउथ आइलैंड के वेस्ट कोस्ट में, यहाँ पर जो बुला डिस्ट्रिक्ट में जो एक टाउन है वेस्टपोर्ट, यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी आज भी 400,000 के करीब ले सकते हो। ये कहानी तब सामने आई है जबकि क्राइस्टचर्च के एलेक्स होग ने एक घर यहाँ पर लिया था वेस्टपोर्ट में 8 साल पहले, और जबकि उन्होंने घर लिया था करीब $215,000 में, तो आज ये बड़े ही आसानी से अपना मोगज जो है ये पे कर रहे हैं। और इसी कहानी को फॉलोअप करते हुए REINZ ने ये रिपोर्ट निकाला कि अभी के डेट एंड टाइम में आज भी यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस है कुछ $400,000 के करीब। तो अगर जो आप देख रहे हैं तो इसके बारे में सोचिएगा, लेकिन फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी होगी।

0: एवरीवन, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री। परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टप से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
4: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Hi, I'm Jeff with the latest at 4. The National Party has promised no new taxes if re-elected. The Labour Party today is promising to return the country to surplus, and the role of Tikanga Māori in the law could face new limits under an ACT policy. Police have filed charges against two teenage boys aged 15 and 14 after the fleeing driver crash that left a Palmerston North officer critically injured. The teenagers due in court Thursday. And hundreds of customers in the Deep South remain without power because of the wild weather, issues across central parts of the country as well. To sport rugby with All Blacks travel and hospitality.com. Waikato a third win of the MPC season while inflicting a fourth straight loss on Counties Monaco. The Mulu men winning 45-12. And a disappointing qualifying for Supercars series leader Matt Payne in Queensland, managing sixth.
4: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Put your head to Gandhi.
8: Yo,
4: you're listening to Avineet.
9: हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं आपका साथी अभी 104.2 FM, साथ में रोवा पर हमारी आवाज आप तक आ रही है। इसी तरह से दो घंटे और सफर बाकी है, 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा, लेकिन साथ देते रहेंगे और इस आवा पर भी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में होगी और इसके अलावा लेकर आएंगे कुछ मेलोडियस नंबर्स। ऑल ऑफ दिस विद मी अवी, कीपिंग यू कंपनी।

0: हम पर जसिल में आपको ले चलता हूँ स्पोर्ट्स की दुनिया में, जबकि इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो नया सीजन है इसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आए हैं। जबकि आर्सेनल ने किक स्टार्ट किया है अपना टाइटल डिफेंस बाय बीटिंग कोवेंट्री 3-0। इसके साथ में कल रात को हल ने, जो कि एक न्यूली प्रमोटेड टीम है, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को शॉक कर दिया, जबकि 2-0 से इनकी जीत हुई है यूनाइटेड के खिलाफ। इसके साथ साथ में एक और एक नई न्यूली प्रमोटेड टीम है इप्सविच टाउन, जिन्होंने संडरलैंड को 2-1 से बीट किया। इसके साथ में आज जो खेल हुए इसमें एवर्टन की जीत पैलेस के खिलाफ 2-0 से हुई। इसके साथ में लीड्स ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से पछाड़ा और साथ ही साथ में ब्रेंटफोर्ड ने स्पर्स को 3-0 से हराया। जो अन्य खेल है जो होने वाले हैं इसके बारे में बस थोड़ी ही देर में आपसे बातें करूंगा।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी।

0: Purpose Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.nz.
1: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट
2: Non-stop Bollywood.
3: Poochho ke karte shiddat ke saath karte
2: hain. Hum playing Bollywood's biggest hits.
4: EPL की बातें हो रही थी यहाँ पर और इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो खेल कल होने को है इसमें कल सुबह एक पर मैनचेस्टर सिटी और बोर्नमाउथ के बीच में खेल रहेगा जबकि सिटी के लिए एक ऐसा नया सीजन है जहाँ पर इनके पास में एक नए मैनेजर है तो कहीं ना कहीं इनको भी काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. इसके साथ में ब्राइटन और एस्टन विला एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी सुबह एक पर और एक और एक इंटरेस्टिंग मैच टुमारो एट 3:30 AM लिवरपूल और न्यूकासल के बीच में एक भिड़ंत होगी. इसके साथ में ट्यूजडे को जो इस वीक का आखिरी मैच है फुलहम टेक्स ऑन चेल्सी ट्यूसडे मॉर्निंग 7 पर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस है और जबकि वीकली बेसिस पर ये गेम्स अब होंगी एक नए सीजन के अंतर्गत तो इस पर जो और भी जानकारी रहेंगी इन्फॉर्मेशन रहेंगी टीम न्यूज़ रहेंगी ये सभी कुछ आपके साथ में शेयर करता रहूँगा ऑन हम

हम पर यह है जशिल, मैं हूँ आपके साथ में अभी, और बातें कर लेते हैं कुछ व्हीकल इंपोर्ट के बारे में। जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा ऐलान किया है कि जो क्लीन व्हीकल स्टैंडर्ड है इसको ये रिटेन करने वाली है। जो क्लीन व्हीकल स्टैंडर्ड है ये कहीं ना कहीं जो ऑटोमोटिव डीलर्स होते हैं इनके लिए सेट किया जाता है, ताकि ऐसे गाड़ियों को इम्पोर्ट किया जाए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टारगेट्स को मीट कर सके। यानी कि जितना कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो उतना ही फ़ायदा है देश के लिए, साथ में एनवायरमेंट के लिए। तो इसी कारण से जो रेगुलेशन सेट किए गए हैं लास्ट ईयर के लिए उसको अब कैरी फोर्ड किया जा रहा है, उसको मेनटेन किया जा रहा है, ये कहना है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्रिस बिशप का। और क्रिस ने बताया है कि जो व्हीकल क्लीन व्हीकल स्टैंडर्ड है ये कहीं ना कहीं जो एमिशन टारगेट्स है उसको इन्फोर्स करती है, ताकि एक रेगुलेशन बना रहे व्हीकल इंपोर्ट के लेकर। और इस पर बोलते हुए यही कहा गया है कि आने वाले साल में भी इसको रिटेन किया जाएगा, सो दैट आवर एनवायरमेंट इज क्लीन।

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की. बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको. मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम.
7: Jackie didn't think she needed a DVS system.
8: Our home is brand new.
7: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
8: Yeah, it does.
7: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.
9: The heart of a healthy home. DVS.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
10: हम पर यह है जस चिल अभी के साथ में. और आपको लगे हाथों बता दूं फादर्स डे सोशल मीडिया प्रमोशन के बारे में. जबकि सितंबर में फादर्स डे रहेगा ऐसे में अभी से आपके पास में मौका है इस प्रमोशन में आप भाग ले ताकि आप जीत सके अपने डेट के लिए $300 कैश इनाम. आपको सिर्फ क्या करना होगा अपने डेट के जो अंदर वाली सुपर हीरो क्वालिटीज है उसको बाहर निकाल कर एक AI जनरेटेड सुपर हीरो इमेज देना है उसको. और उतना करके आपको सिर्फ हमारे हम 104.2 FM के फेसबुक पेज पर जाकर जो पिन पोस्ट है फादर्स डे प्रमोशन का उसके नीचे कमेंट्स में आप वो पिक्चर अपलोड करें और उसके बाद में अपने डेट को टेग करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेट को टेग करें और फिर उसके साथ में जो कंपटीशन पोस्ट है उसको लाइक करके जितने भी आपके डेट के फ्रेंड्स है और साथ में फैमिली है उनको इनवाइट करें कि आपके डेट के पिक्चर को वो लाइक करें साथ में कंपटीशन पोस्ट को वो लाइक करें. याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अपने डेट के फ्रेंड्स को इनवाइट करें फैमिली को इनवाइट करें ताकि आपके डेट के पिक्चर को ये लाइक कर सके साथ में कंपटीशन पोस्ट को भी ये लाइक करें. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम फेसबुक पेज को फॉलो भी करें. हम फेसबुक पेज को फॉलो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सभी जितने कंडीशन से आप मीट करोगे उसके बाद में आपके एंट्रीज शामिल हो जाएंगी $300 कैश इनाम जीतने के लिए जिसका ड्रॉ रहेगा फ्राइडे 4th of September को. टीज एंड सीज डू अप्लाई तो जरूर इसको ख्याल रखिएगा. जी हाँ फादर्स डे सोशल मीडिया प्रमोशन जो जारी है इसके बारे में आपसे शेयर कर रहे थे.

0: X amount of respect due to you.
1: This is Avi on Hum, आपके साथ में 6 तक ये कारवा चलता रहेगा 104.2 FM, साथ में रोवा पर.

Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर जस्ट चिल में हम फाइनल हवा में पहुंच ही गए हैं, जबकि जस्ट आफ्टर 5-6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा. ऐसे में 104.2 FM साथ में रोवा पर हमारा साथ देते रहिए, और इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेशन साथ में कुछ अच्छे अच्छे गानों को आपके लिए बजाते रहेंगे, और 6 तक साथ मिलकर इस सफर को तय करेंगे. अभी का साथ है और इस हवा पर भी आपका खास स्वागत करते हैं.

हम पर. दिस इज मी अवी कीपिंग यू कंपनी. और इस बार के लिए आपको बता दूं, यंग एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करके एक अलग मजा आता है, क्योंकि इनमें वो जज्बा होता है कुछ नया करने को. और अपने अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में सिंडी और रुजबे ने बातें की है युवराज सिंह के साथ में, जो एक्सप्लो के एक मेंबर है. और एक्सप्लो एक स्टूडेंट रन बिजनेस है जो इस साल की यंग एंटरप्राइज स्कीम में भाग ले रही है. और यहाँ पर युवराज ने बातें करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने एक नया गेम डिज़ाइन किया है, जहाँ पर उस गेम को खेलते खेलते न्यूजीलैंड के बारे में लोकल्स और टूरिस्ट अलाइक ये और कुछ भी सीख सकेंगे, लेसन नोन डेस्टिनेशंस के बारे में जान सकेंगे, जितने भी हिडन जेम्स है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, इन सभी की कुछ के बारे में ये सीख सकेंगे. तो इस पर बातें करते हुए उन्होंने बताया है व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू कम अप विद अ गेम लाइक दिस. तो ये सभी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है सेंडी और रुजबे के अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे. ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें. और इसके साथ में ब्रेकफास्ट केचअप, अगर जो आप ब्रेकफास्ट केचअप करना चाहते हैं तो BF लिखकर 5599 पर टेक्स्ट करें, जहाँ पर विजय और पूजा की जो ब्रेकफास्ट शो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है ये इस केचअप के दौरान आप सुन सकेंगे.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
0: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
3: You filled the pinata before I sealed it, right?
4: No, you did.
3: Oh, I thought you did.
5: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. Participating North Island stores only. See online for T's and C's.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ, अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
10: Kia ora! If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
11: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
12: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health. Because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
13: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
14: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
13: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party, table service or buffet for up to 150 guests.
14: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
13: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
15: अपर मैं हूँ अभी आपके साथ में कुछ इंस्पायरिंग कोट हमारे हाथ लगी है हमने सोचा कि आपके साथ में इसे शेयर कर दूँ दो चार लाइन है और सत्य कितना भी कड़वा हो इसे स्पष्ट कहो कहो ना सुंदर झूठ चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ यानी कि सत्यता पर हमेशा रहना चाहिए सत्य पर हमेशा रहना चाहिए बस इतनी सी बात है दो चार लाइन्स में ही समझाने की कोशिश की है लेखक ने और मैंने सोचा कि इसे आपके साथ में बांट दूँ

हम पर जश्चिल का सिलसिला जारी है। मैं हूं आपका साथी अवि। आपको याद दिला दूं कि 60s और 70s के गाने भी आपके विद इन रीच है, जबकि आप इसे हमारे रोवा पर हम म्यूजिक स्टेशंस में हम रिवाइंड के नीचे सुन सकते हैं। इसके अलावा 80s के जो गाने हैं इसे भी आप सुन सकते हैं हमारे हम म्यूजिक स्टेशंस में। जो बॉलीवुड के गाने हैं, तड़कते भड़कते 80s के सॉन्ग्स, ये आपके पास में विद इन रीच है ऑन हम म्यूजिक स्टेशंस। इसके अलावा फिजी भजन्स भी आप सुन सकते हैं, 24/7 फ्री भजन स्ट्रीम यहाँ पर करता है। इसके साथ साथ में जितने भी पंपिंग पंजाबी हिट्स है, ये भी आप चढ़ती कला के साथ में सुन सकते हैं। फिर है फिजी कीर्तन संग्रह, यहाँ पर फिजी के जितने भी प्रमुख आर्टिस्ट हैं इनकी आवाज़ों में कीर्तन को रखा गया है, ये भी आप कहीं भी किसी भी समय सुन सकते हैं। इसके अलावा राहत फ़तेह अली खान की अपनी अलग एक फैन फॉलोइंग है, तो इनके गाए हुए जितने भी सूफी है कवालियाँ हैं यहाँ पर स्टोर किया गया है। तो ये सभी कुछ अगर जो आप रोबा के साथ में हैं तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं।

0: beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Driving you home.
3: Drive show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया
5: अभी. ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say, cero. In New Zealand, zero alcohol Corona, cero, is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ बना रहेगा, जबकि 6 बजे के बाद में आपके साथ यहाँ पर हो जाएंगे जिकाश, लेकर आएंगे एक और एक खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए।

हम पर मैं हूँ अवि, और आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यही तक था। 12 बजे से आपने हमें कंपनी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीकेंड पर, लेकिन अभी के लिए ये जो वीकेंड है इसका संडे बाकी है, अभी भी इंजॉय करते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों का ख्याल रखिए, और आपसे अगले वीक पर वीकेंड पर मुलाकात होगी। लेकिन कल के लिए, जबकि नया वीक शुरू होने जा रहा है, इसके लिए आपको बेस्ट विशेस दिए जा रहे हैं, आपसे फिर मिलेंगे। Do take care. This is me, Avi, signing off. Bye.

23rd of August 2026 6 बजने का आए हैं एंड रविवार है. रविवार की शाम 6 पर मैं जिकाश आपके साथ में शामिल हो जाता हूँ संडे नाइट मेलोडीज दिल से कार्यक्रम लेकर आपके साथ में मैं जुड़ चुका हूँ. एंड आई होप आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा है. जो भी कुछ आपने प्लान किया था इट हैज़ ऑल गोन अकॉर्डिंग टू प्लान और अब सक्सेसफुली आप आराम फरमा रहे हैं आफ्टर अ टायरिंग वीक एंड अ फ्रूटफुल वीकेंड. जो भी हो आपका साथ देने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ. किसी ने लिखा है कि जिसके मन में अच्छे विचार होते हैं उसके जीवन में हमेशा उजाला रहता है. दोज हु आर ऑप्टिमिस्टिक और जिनके जीवन में उजाला होता है उनके साथ हमेशा मन की शांति रहती है. तो भाई शायद कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया तो निराश मत होइए. ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक. शायद कल एक बेहतर दिन हो. कल आज से अच्छा कुछ आप कर दिखाए कल आपके लिए सक्सेसफुल बन सकता है. तो ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक और जो हो गया उसको लेकर बैठ जाना बस उसके बारे में सोच करना इससे कुछ नहीं हासिल होता. आगे के बारे में सोचना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए. तो इसी अच्छे सोच के साथ में आइए आप सभी का हम स्वागत करते हैं 104.2 FM और रोबा के जरिए आप जुड़ चुके हैं संडे नाइट मेलोडीज में. अभी से लेकर रात 12 के बीच हम आपके हमनवा बनकर यहाँ पर रहने वाले हैं. कुछ आपकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे और इधर उधर की बातें करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम एंजॉय करेंगे. तो स्वागत है आपका. क्योरा

0: Hollywood's biggest hits.
1: Put your hectic gun day.
2: Hum par aapke saath hai Jikash.
3: हमारे आसपास कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। वैसे अगर आप भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड यू वांट मोस्ट या फिर जहां तक रीच हो सके वहां तक आपके इवेंट्स के बारे में न्यूज़ जाए, गेट इन कॉन्टेक्ट विद अस, क्योंकि न्यूजीलैंड हमें सुन रहा है। ये हमारे सर्वेस बताते हैं, हमारे लोग बताते हैं कि वी आर न्यूजीलैंड्स नंबर वन रेडियो, हिंदी रेडियो स्टेशन। तो भाई इसका फ़ायदा आप उठाएं, क्योंकि हमारी रीच ऑकलैंड ही नहीं बल्कि न्यूजीलैंड, हम तो कहेंगे कि न्यूजीलैंड नहीं, विदेश में भी है थ्रू आवर रोवा ऐप। तो गेट इन टच विद अस, वी आर अ विनिंग टीम, आपको भी हम विनर बना सकते हैं। तो बस अपने इवेंट्स की जानकारी हमारे तक पहुंचाएं और वहां से जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। वैसे आने वाले शनिवार से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव ये कई जगहों पर मनाया जाएगा, तो इसके लिए क्या आप तैयार हैं? दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट ये कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मना रही है फ्रॉम 29th ऑफ अगस्त से लेकर 4th सितंबर के बीच में एट द केव 5/57 कैवेंडिश ड्राइव मनुकाव में 7:30 PM से हर रोज कथा होगी। रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव में अपने सभी भक्तों को इनवाइट कर रही है फॉर कृष्ण जन्माष्टमी 29th अगस्त से 4th सितंबर के बीच, हर रात 7:30 से कथा शुरू होगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड संगम इज प्लीज टू इनवाइट यू ऑल फॉर दियर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव 2026। ये 28th अगस्त से अपना अष्टमी उत्सव शुरू करने वाली है थ्रू टिल 4th ऑफ सेप्टेम्बर एट डिको ऑफ एलिगेंस, दैट इज एट 16 लेम्बी ड्राइव मनुकाव में। हर रात पूजा 7:30 PM से शुरू होगी, जहां पर कृष्ण कथा, आरती फॉलोड बाय प्रसाद और महाप्रसाद आपके लिए बनाया जाएगा। कथा व्यास रहने वाले हैं नलेश नायडू, तो यहां पर भी जाकर आप कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। हमारे साथ में ही जुड़े रहेगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, समथिंग दैट जस्ट माइट हेल्प सेव समवन्स लाइफ। तो जुड़े रहे, इसके बारे में हम बातें करेंगे थोड़ी देर में। मैं हूं जिकाश, संडे नाइट मेलोडीज में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं।

सनडे नाइट मेलोडीज़ का सफ़र जारी है एंड मैं हमेशा इस बात को दोहराता रहता हूँ अबाउट स्ट्रे डॉग्स या फिर कुत्ते जो अनअटेंडेड होते हैं, इन पर इनके साथ में इनके ऑनर्स नहीं होते हैं, कॉलर्स नहीं रहते हैं एंड बस यूं ही बाहर फिरने घूमने के लिए इनके ऑनर्स छोड़ देते हैं। दे लीव दियर गेट्स ओपन एंड दीज डॉग्स गो आउट इन द कम्युनिटी। एक मेरे लिए पर्सनल प्रॉब्लम है कि दे कोज सिग्निफिकेंट डेंजर टू एनीवन जो इनसे आमना सामना होता है, क्योंकि कुत्ते शायद चाहे जितने भी वफादार हो या फिर जितने भी फ्रेंडली हो, यू नेवर नो एक कुत्ता कब पलट कर आपको काट ले, उसके दिमाग में क्या चल रहा है आप नहीं जानते। एंड दीज केसेस हैव कम बिफोर अस क्वाइट ऑफन। अभी इसी महीने अ डॉग इन्वॉल्व्ड इन फेटल अटैक ऑन अ क्राइस्टचर्च टॉडलर इज स्टिल इन इम्पाउंड। छोटा सा बच्चा जो एक साल का था, ही वॉज किल्ड इन अ डॉग अटैक इन क्राइस्टचर्च। बहुत ही दुखद दुर्घटना है। सोनी चार्ल्स वॉटसन aged one sustained critical injuries at an address on Basingstoke Street in Aranui around 4:45 p.m. on Friday. This happened on the 14th of August. Ek saptah se upar kuch hua hai. So just imagine the heartache, the loss of such of any family member. And ye chota sa bachcha Sony Charles Watson, aged one, he succumbed to his injuries caused by a dog attack. To aisa nahi hona chahiye, aisa this shouldn't have happened. And people who are owners of dogs, they should be responsible for their dogs 24/7. Aisa nahi ki 5 minute ke liye aap kahin chale gaye, dog kutte ko khulla chhod diya. No, that shouldn't be the case. And if you come across such a scenario jahan par ek kutta khulla ghum raha hai with no one attending to them, ye aapko kabhi bhi kaat sakta hai. That should be your approach.

About Rakhi, Raksha Bandhan is Shukrawar ko celebrate kiya jayega in Auckland, and I was doing some research aur Drik Panchang ke anusar Friday August 28th Auckland, New Zealand mein aap Raksha Bandhan mana sakte hain, and muhurat ke bare mein baat kare to that will be going into finer details. Time 6:48 am se lekar 4:18 pm ke beech mein aap Raksha Bandhan band sakte hain, ya fir agar aapko एकदम से एक्चुअल टाइमिंग चाहिए तो अपने लोकल पंडित पुरोहित को आप संपर्क करें. दे विल लुक इन टू द पंचांग एंड आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होने वाला है. लेकिन फ्राइडे 28 अगस्त को जनरली रूल ऑफ थंब इज की अष्टमी से पहले, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले रक्षाबंधन को बांधा जाता है. तो ऑल दी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर, आप सभी को हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन हम विश कर रहे हैं. एंड फॉर रक्षाबंधन 28 अगस्त को हम कुछ लकी विनर्स को कुछ इनाम देना चाहते हैं. आप तो, आपको तो पता है हमारा रक्षाबंधन ओनिया ये कंपटीशन जारी है. नॉट कंपटीशन, बस आपको कॉल करके ये बताना है कि आपके भाई, आपकी बहन अच्छी है, बहुत अच्छी है तो क्यों है. और अगर एकदम से यू नो शैतान चुड़ैल टाइप ऑफ पर्सन है, बिकॉज आपकी चीज़ें ले लेते हैं और आपको हमेशा ये यू नो साइड कर देते हैं, कोना करते रहते हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं. वेन एवर वी टेल यू टू कॉल अस, कॉल अस एंड लेट अस नो कि क्यों आपके भाई या बहन इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, या फिर मे बी दे गेट ऑन योर नर्व क्वाइट टू ऑफन. तो ये बातें हम आपसे जानना चाहते हैं. देट इज़ वेन वी आस्क यू टू कॉल अस. दूसरा कॉम्पिटिशन है, फेसबुक पेज पर आप जाए, हमने रक्षाबंधन का एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट के नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक फोटो डाले ऑफ समथिंग देट इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर यू एंड योर सिबलिंग, और क्यों वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है ये बात आप वहाँ पर बताएं. Also, tag your brother or sister in the comment section, and just like that, you'll go into the draw. And come Friday, 28th of August, the winning comment will be read on air. Aur phir winner ko $300 cash hum dene wale hain. To itna hi kijiye, and your Raksha Bandhan will become sweeter, more meaningful come this year. Kyunki is saal aap hamare saath celebrate karne wale hain, and is saal aap hamare saath winner bhi ban sakte hain. तो वेरी हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाइयों और बहनों को. आप सभी को इस अगले गीत में हम शामिल कर रहे हैं.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: Is your marketing budget feeling the squeeze? You need marketing assets that keep delivering. Great Signage does exactly that. Speedy Signs creates bold, professional signs that draw attention and reinforce your brand every single day. From sharp shop fronts to standout vehicle graphics, they make sure your business gets seen. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
4: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
5: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari koi brand nahi hai.
6: Dil se, dil se, dil tak.
8: Samay bahut hi tezi se bhagta ja raha hai, lekin is samay ko aapko kabu mein karna hai. Kaise? Well, bahut hi jald फादर्स डे आने वाला है एंड इसके लिए कंपटीशन जारी है और समय रहते आपको हमारे साथ में दीज कंपटीशंस में शामिल होना है ताकि यू कैन मेक योर डैड फील सुपर ऑसम, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी लाइफ के सुपर हीरो आपके डैड हैं। तो सुपर हीरो इज़ द वर्ड, इसके बारे में सोचे किस तरह के सुपर हीरो होंगे अगर आप आपको अपने डैड को एज अ सुपर हीरो पोर्ट्रे करना है। ये छापा, ये एक पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाएं और इसको आप कागज़ पे या फिर डिजिटली आपको क्रिएट करना है। कैसे ये आपको हम बताएंगे और कहां पर अपलोड करना है, क्योंकि डूइंग दैट यू विल गेट इन द रो जहां पर अमेजिंग प्राइजेस आपको हम जीतने के लिए मौका देना चाहते हैं। तो जुड़े रहे, विल फाइंड आउट इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स।
6: यू आर लिसनिंग टू चिकाश।

Hey Bula, welcome back to Sunday Night Melodies, जहाँ पर मैं जिकाश आपका साथ देने वाला हूँ, दे रहा हूँ, not देने वाला हूँ. Anyways, if you've just joined, आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं. इस घंटे पर हम बातें करेंगे about nostalgia. कुछ बीते लम्हों के बारे में बातें करेंगे, कुछ यादें ताज़ा करेंगे that are connected to some songs that we play on this hour. लेकिन उससे पहले हमने बातें की थी about superheroes. Avengers Doomsday ये दिसंबर में रिलीज होने वाला है एंड इसके लिए काफ़ी लोग बिल्डअप कर रहे हैं. दे आर गोइंग बैक टू वॉच ऑल द सुपर हीरो मूवीज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अवेंजर और फॉलो अप करते हुए. दे आर आई थिंक 36-38 मूवीज इन टोटल. अगर आपको एक्चुअली में बिल्डअप करना है, एक्चुअली में जानना है ऑल द फैक्टर्स दैट विल बी कंसिडर इन प्रेजेंटिंग डॉक्टर डूम. Doomsday में डॉक्टर डूम आने वाले हैं एंड डॉक्टर डूम इज बीन प्लेड बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर. हमने सोचा था कि आयरन मैन की डेथ हो गई और फिर अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैसे देखेंगे. वेल ही इज कमिंग बैक एज डॉक्टर डूम. कैसे होगा, क्यों होगा, ये तो फिल्म देखकर पता चलेगा. लेकिन हम बातें कर रहे हैं अबाउट सुपर हीरोज एंड हमारी अपनी लाइफ में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले एक सुपर हीरो रह चुके हैं एंड देयर इज आवर लवली डैड्स. तो अगर आपको अपने डैड को एक सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट करना है, हमारे बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI को यूज़ कीजिए, प्रॉम्प्ट्स डाले एंड क्रिएट ए पिक्चर ऑफ योर डैड एज अ सुपर हीरो. जो भी प्रॉम्प्ट आप डाले, मेक श्योर इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू थिंक अबाउट योर डैड. तो वंस यू गेट योर फोटो, आपको जाना है हमारे फेसबुक पेज पर. डैड्स AI अपग्रेड का एक हमने पोस्टर डाला है, एक अपडेट डाला है, उसके कमेंट सेक्शन में अपने डैड का फोटो पोस्ट करें. टैग योर डैड एंड गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू लाइक योर डैड्स फोटो. जितने भी लोग आपके डैड के फोटो को लाइक करेंगे, मेक श्योर दे फॉलो द हम फेसबुक पेज एंड दे लाइक द कंपटीशन पोस्ट. एंड इफ आपके फैमिली मेम्बर्स दे प्ले इन एज अ टीम, यू माइट जस्ट विन $300 कैश कम फादर्स डे. फ्राइडे 4 सितंबर को इसका हम ड्रॉ करेंगे. टीज एंड सीज डू अप्लाई, तो डू गो टू आवर फेसबुक पेज एंड चेक आउट ये कॉम्पिटिशन एंड गेट क्रिएटिव. लेट अस ऑल सी कि व्हाट काइंड ऑफ अ सुपर हीरो इज योर डैड. गेट क्रिएटिव और मेक योर डैड फील स्पेशल. तो गेट इनटू फेसबुक एंड गेट इनटू दिस कॉम्पिटिशन राइट नाउ. आइए शुरुआत करते हैं इस घंटे की विद सिद्धार्थ बसरूर and fellow artist with this awesome song. मैं हूं जिकाश, Sunday Night Melodies में आप सभी का स्वागत हम कर रहे हैं.

हर रविवार को हम 7 से 8 बजे के बीच में कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स को शेयर करते हैं आपके साथ जो जुड़े होते हैं विद सम ऑफ द सॉन्ग्स दैट वी प्ले हियर. नाउ द नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम एक लड़का एक लड़की मूवी जो 1992 में आई थी. 1992 में आप कितने वर्ष के थे? नाउ टॉकिंग अबाउट 1992, इट इज़ क्वाइट अ वाइल बैक. आप गणित अपना करें और ये हमें बताएं 5599 पर कि 1992 में आप कितने साल के थे एंड व्हाट वाज दैट स्पेशल थिंग दैट हैपेंड इन 1992. 1992 मेरे लिए तो खेलने कूदने वाले दिन थे. कुछ चीज़ की फिक्र नहीं थी, ना तो एग्ज़ाम्स के फिक्र थे, ना तो कमाने की फिक्र थी. बस दोस्तों के साथ समय गुजारना, अपने पेरेंट्स के साथ समय गुजारना. और कुछ ग्लिम्सेस अगर मुझे याद है तो इट वाज वन ऑफ माय बेस्ट चाइल्डहुड डेज जहाँ पर एक्चुअली एक छोटा बच्चा मैं था. तो 1992 में आप क्या कर रहे थे? वैसे 1992 जनवरी वाज द ईयर जहाँ पर जेफरी डामा द अमेरिकन सीरियल किलर ही फाइनली प्लीडेड गिल्टी. इसके बारे में कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज बन चुके हैं. गिल्टी तो प्लीड किया लेकिन ही ऑल्सो said that he is not right in the mind. He pleaded guilty but insane. ये वो साल था जहाँ पर इंडिया were beaten by Australia 2-0 with Australia winning cricket's World Series Cup. David Boone scores the most runs in the series ending with 432 runs. So these were some of the important things that happened in January. तो आपके लिए 1992 क्यों important है? इसके बारे में आप सोचिए. मैं भी कुछ रिफ्रेशिंग कुछ ज़रूरी यादें ताज़ा हो जाए. आइए एंजॉय करते हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों को.

वेलकम बैक टू संडे नाइट मेलोडीज, जहां पर दिल से कार्यक्रम जारी है। मैं हूं जिकाश, आपका साथ देता चल रहा हूं। नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। द नेक्स्ट सॉन्ग फिल्म मरजावा, जिसके सभी ट्रैक्स बहुत ही लाजवाब रहे हैं। 2019 में ये आई फिल्म एंड वन ऑफ द गुड वंस आउट देयर। इस मूवी को अगर आपने नहीं देखा है, डू चेक इट आउट, क्योंकि आई थिंक इट्स वन मूवी जिसको बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। नाउ 2019 कोविड-19 इतना कह दो तो भाई बहुत ज़्यादा यादें ताज़ा हो जाती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। और 2019 में बहुत कुछ हुए थे। इधर न्यूजीलैंड में तो बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था, द क्राइस्ट चर्च मॉस्क शूटिंग, एंड इससे बहुत सारी यादें और बहुत सारा पेन जुड़ा हुआ है। एंड इसके अलावा, इससे आगे बढ़ते हैं, जो हो गया सो हो गया, पीपल हैव कैरिड ऑन विद देयर लाइव्स। हाँ, यादों को सजो के रखते हैं, जो हुआ नहीं होना चाहिए था और आइंदा ना हो, इसके लिए आप जो हो सके आप करें, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो क्वेश्चनेबल हैं, इसको आप रिपोर्ट करें टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़। शायद वो सिचुएशन माइट नॉट बी एनीथिंग, लेकिन अगर आप रिपोर्ट करते हैं, इफ़ देयर आर पीपल बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी कुछ प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू फाइंड समथिंग दैट इज़ क्वेश्चनेबल, आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो डू गेट टू द रिलेवेंट अथॉरिटीज़, डू इन्फॉर्म देम, वो अपना काम करेंगे। एंड अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके कंप्लेंट से शायद एक ऐसी दुर्घटना होने से बच जाए जो हुआ था इन क्राइस्ट चर्च इन 2019। तो इसके बारे में सोचिए। 2019 वॉज ऑल्सो अ गुड ईयर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। द US वीमेंस नेशनल सोकर टीम वन द फीफा वर्ल्ड कप, और 2019 वॉज द ईयर जहाँ पर एवेंजर्स एंड गेम बिकेम ए हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस हिट। एवेंजर्स के बारे में हमने बातें की है एट द स्टार्ट ऑफ दिस आवर। डूम्स डे, आई थिंक इट्स बिल्डिंग अप टू ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑफ एवेंजर्स एंड गेम। अभी इस साल जो आया है स्पाइडरमैन ब्रैंड न्यू डे, ये तो हलचल मचा ही रही है। आई हैवंट वॉच्ड इट टिल नाउ, जरूर समय निकाल कर इसको देखूंगा, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम इट बिकेम ए हिस्टोरिक बॉक्स ऑफिस हिट इन द ईयर 2019।

समय के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है एंड स्लैंग्स जिस तरह से हम बातें करते हैं ये भी बदलता रहता है. कुछ स्लैंग्स दे टेक ऑफ इन अ पर्टिकुलर ईयर, कुछ स्लैंग्स दे आर क्वाइट कॉमन विद सम जनरेशंस. जैसे कि अभी जेन अल्फा पीपल हु वर बोर्न इन 2010 थ्रू टू 2024, ये अगर 2024 में बोर्न हुए हैं तो अभी दो साल के होंगे, लेकिन अगर 2010 में बोर्न हुए हैं तो 16 उम्र के हो चुके हैं. दे आर द टीन्स ऑफ टुडेज डेट इन टुडेज वर्ल्ड. एंड इनके साथ में बातें करना, भाई स्लैंग्स ही स्लैंग्स यूज करते हैं जो पल्ले नहीं पड़ता है फॉर मोस्ट ऑफ द मिलेनियंस हु आर पेरेंट्स ऑफ जेन अल्फा. तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके टीनेज सन एंड डॉटर्स अपने ग्रुप में बातें कर लेते हैं एंड भाई समझ में नहीं आता है. एंड वन थिंग जो मुझे अब बिट अनोइंग लगता है इज क्लॉकेट. व्हेन आई से इट आई हेट माय सेल्फ फॉर सेइंग क्लॉकेट. लेकिन क्या आप जानते हैं क्लॉकेट का मतलब क्या है? अगर आप जानते हैं एंड इफ यू आर अ पेरेंट, इफ यू आर अ डैड, हम आपसे सुनना चाहते हैं. कॉल मी एंड लेट मी नो इफ यू आर राइट. आपका नाम शामिल हो जाएगा इन आवर फादर्स डे प्रमोशन. फादर्स डे प्रमोशन के तहत ओनिया आपको आना है एंड कुछ मॉडर्न स्लैंग्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉप कल्चर और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे. एंड राइट नाउ क्लॉकेट ये एक मॉडर्न स्लैंग है. इसका मतलब क्या है भाई? अगर आप जानते हैं कॉल मी ऑन 0800-004-866 एंड यू विल बी गेटिंग द ड्रॉ, जहां पर 4th सितंबर को हम $500 कैश ड्रॉ करने वाले हैं फॉर वन लकी डैड. क्लॉक है.

0: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest.

Hey Kira, welcome back to Sunny Night Melodies, जहाँ पर इस घंटे हम nostalgic moments को experience कर रहे हैं. I hope you are enjoying the program so far. 7 to 8 बजे के बीच में every Sunday night we have nostalgia nights and let's go back to the year 1997. याद आया कुछ 1997 को लेकर? क्यों ये साल आपके लिए खास था? I was in primary school और काफ़ी बातें मुझे याद है, काफ़ी फ्रेंड्स याद हैं जिनके साथ मैं अभी भी मैं टच में हूँ. और मुझे ये भी याद है कि ये वो साल था जिस साल में टाइटैनिक रिलीज़ हुई थी. नाउ आई डिडंट वॉच इट देन क्योंकि इट वाजंट सूटेबल फॉर किड्स, तो मैंने तब नहीं देखी व्हेन आई वाज ऑफ द एज टू वॉच द मूवी टाइटैनिक, तब मैंने इसको देखी है. लेकिन 1997 में टाइटैनिक आई और लोगों का नज़रिया ही बदल गया अबाउट द डिज़ास्टर दैट हैड हैपन्ड. तो टाइटैनिक का एक अभी एक्सिबिशन इधर ऑकलैंड में शुरू होने वाला है, इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे. 1997 वाज आल्सो द ईयर जब हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन द फर्स्ट बुक इन द ग्लोबल फिनोमेना सीरीज ये रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था यूनाइटेड किंगडम में. आई पर्सनली हैवन्ट रेड एनी ऑफ द बुक्स, लेकिन मैंने सारी इंस्टॉलमेंट्स ऑफ हैरी पॉटर देखी है, ऑल 7 ऑफ देम, एंड आई हैव लव्ड इट. कभी कभी सोचता हूँ कि जाकर बुक पढ़ूँ, लेकिन आई एम नॉट मच ऑफ अ बुक काइंड ऑफ गाय. तो 1997 में जेके राउलिंग ने रिलीज़ की थी, पब्लिश किया था अपना पहला विजर्डिंग वर्ल्ड का जो पहला बुक है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन. आर हैव यू रेड दैट? इफ़ यू हैव यू शुड नो कि 1997 में ये रिलीज़ हुई थी. 1997 वॉज ऑल्सो द ईयर जब द अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था जिसमें प्रिंसेस डायना की मृत्यु हुई थी. द प्रिंसेस ऑफ वेल्स डाइड फॉलोइंग ए हाई स्पीड कार क्रैश इन पेरिस ऑन August 31, स्पार्किंग ग्लोबल मॉर्निंग. दीज वेर सम ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द ईयर 1997. और भी काफ़ी कुछ हुए थे. द यूनाइटेड किंगडम returned Hong Kong to the People's Republic of China on the 1st of July, ending 156 years of British colonial rule. यार ये ब्रिटिश वालों ने कहाँ कहाँ पर नहीं गंदगी फैलाई है. लकली इन्होंने हांगकॉन्ग को लौटा दिया, एंड नाउ हाउ लवली हांगकॉन्ग इज ये तो आप जानते ही हैं. तो दैट ऑल्सो हैपन्ड इन 1997. हांगकॉन्ग 156 years तक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के नीचे रहा है. आपके लिए 1997 क्या याद लेकर आता है, सोचिए और एंजॉय कीजिए श्वेता शेट्टी की आवाज़, क्योंकि ये गाना ने भी बहुत ही धूम मचाया था जब 1997 में रिलीज हुआ था. कंपोज्ड बाय जवाहर वटल एंड रवि पावर विथ लिरिक्स बाय श्याम अनुरागी, दिस ट्रैक बिकेम ए मैसिव चार्ट बस्टर एंड अ कल्चरल स्टेपल ऑफ द एरा'स वाइब्रेंट पॉप म्यूजिक सेंस. श्वेता शेट्टी की आवाज़ है.

मंथ ऑफ मई एनजेड म्यूजिक मंथ रहता है, जहां पर वी एक्टिवली सीक आर्टिस्ट फ्रॉम आवर ओन कंट्री फ्रॉम न्यूजीलैंड टू गेट इन टच विद अस एंड टू मेक श्योर कि उनको हम प्लेटफॉर्म दे जहां पर वो अपना आर्ट डिस्प्ले कर सके, देयर सॉन्ग्स, देयर क्रिएशंस, जो भी आप करते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मई महीने में हम ऐसा करते हैं, यू कैन गेट इन टच विद अस एनी टाइम और हम ये देखेंगे क्या हम कर सकते हैं फॉर यू। इफ़ योर आर्ट इज अमेजिंग, आई पर्सनली बिलीव इट शुड बी आउट देयर ऑन डिस्प्ले। तो इफ यू आर अ म्यूजिशियन, यू हैव आर्ट, यू हैव क्रिएटेड म्यूजिक व्हिच यू थिंक इज गुड, अच्छी तरह से इसकी रिकॉर्डिंग की है, गेट इन टच विद अस एंड विल मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि दिस आवर इज बॉलीवुड अनप्लग्ड। कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक गिटार लेकर दे कैन क्रिएट मैजिक, कवर्स गाते हैं अनप्लग्ड वर्जन में और सुनने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इफ़ यू आर समवन लाइक दैट, यू गॉट गुड म्यूजिक टेस्ट, यू गॉट गुड क्रिएशंस, गेट इन टच विद अस, वी माइट जस्ट गेट योर सॉन्ग इन दिस आवर इन आवर फ्यूचर प्रोग्राम्स। तो आइए स्वागत करते हैं आप सभी का विथ दिस ऑसम ऑसम वॉइस ऑफ श्री रामचंद्रा। जब से इनको मैंने इंडियन आइडल में देखा था, हिज वर्सेटिलिटी, आई हैव बिकम अ फैन। सो He is Sri Ramchandra kicking off this hour of Bollywood Unplugged on 104.2 FM and on Rover, Sunday Night Melodies mein Magic Ash aapka saath de raha hoon।

आप में से कितने लोग हैं जो सिंपल टास्क जानते हैं इन मेंडिंग क्लोथ्स? एंड व्हेन आई से सिंपल, आई एम टॉकिंग अबाउट रियली सिंपल, मतलब अगर बटन गिर गया है तो बटन टाके डालकर आप लगा सकते हैं। आई कैन डू दैट फॉर्चुनेटली, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सा काम है। लेकिन दे आर थिंग्स लाइक जब आप ट्राउजर्स खरीदते हैं एंड द लेंथ इज अ बिट लॉन्ग फॉर यू, तो उसके लिए आपको उसको काट कर फिर मोड़ कर उसको सीना पड़ता है। आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, वेल आइडिया है लेकिन कभी ट्राई नहीं किया है। और ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ अ फ्यू ईयर्स अगो, मैंने मुझे एक फंक्शन में जाना था और लास्ट मिनट शॉपिंग की, तो एक ट्राउजर्स पेंट्स मैंने खरीदा विच वॉज अ बिट लेंथी फॉर मी, और अगले ही दिन उसको मुझे पहनना था एंड आई डिडंट हैव एनीवन हु कैन हु कुड डू दिस फॉर मी। तो मैं टेलर शॉप गया, वहाँ पर मैंने बताया कि इतने लेंथ का चाहिए, आप कर दोगे? उन्होंने कहा कर देंगे, 15 मिनट लगेगा। एंड तो मैंने कहा कि चार्ज कितना होगा? उन्होंने कहा कि $30। ये जो पैजामा है, ये जो ट्राउजर्स है, आई बॉट फॉर $25। उसको काट कर छोटा करने के लिए मुझे उन्होंने चार्ज किया $30 एंड आई डिडंट हैव एन ऑप्शन, क्योंकि मुझे उसी समय करवाना था, नेक्स्ट डे उसको इस्तेमाल करना था। तो आई डिड दैट। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? डू यू नो सिंपल हेमिंग, डार्निंग, सेविंग ऑन बटन्स? वेल आई थिंक दीज आर सम स्किल्स जो घर में किसी ना किसी को आना चाहिए, ताकि एज अ फैमिली यू डोंट स्पेंड $30 ऑन अ $25 ट्राउजर्स सिर्फ उसके हाइट लेंथ छोटा करने के लिए। तो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे 12 सितंबर को बिटवीन 2 and 3 PM ब्लॉक हाउस बे लाइब्रेरी में, 578 ब्लॉक हाउस बे रोड ब्लॉक हाउस बे में एक बेसिक क्लोथ्स मेंडिंग वर्कशॉप होने वाला है। आई विश आई वॉज क्लोजर टू द वेन्यू, आई वुड हैव गॉन देयर। तो यू कैन लर्न सम बेसिक हैंड सेविंग स्किल्स सच एज हेमिंग, डार्निंग, सेविंग ऑन बटन्स, सो दैट यू कैन मेंड योर क्लोथ्स। मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू मे लर्न हाउ टू यूज देयर सेविंग मशीन एज वेल। ये इवेंट है पार्ट ऑफ अडल्ट लर्नर्स वीक, सपोर्टेड बाय द अडल्ट एंड कम्युनिटी एजुकेशन आउटरोआ, द यूनेस्को, न्यूजीलैंड नेशनल कमीशन एंड द टर्शरी एजुकेशन कमीशन। अडल्ट लर्नर्स वीक, इसके बारे में भी हम बातें करेंगे बस थोड़ी देर में।

0: driving you home?
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

बॉलीवुड अनप्लग्ड म्यूजिक आप एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ऐसे गाने जिसको री इमेजिन किया गया है और इसके कवर्स बनाए गए हैं इन एन अनप्लग्ड वर्जन जो काफ़ी सारे लोग एंजॉय करते हैं। तो एंजॉय करते रहिए ऑल दीज म्यूजिक जो आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं। अडरलेनेस वीक के बारे में हम आपको बता रहे थे, दिस इज़ हैपनिंग बिटवीन 7 सितंबर एंड 13 सितंबर। फंडिंग अप्लीकेशन फॉर द अडरलेनेस वीक हे तंगाता मत्ताउरांगा फेस्टिवल ऑफ अडल लर्निंग वीक ये क्लोज हो चुके हैं और ये अडल लर्नर्स वीक विल बी ऑब्जर्व्ड बिटवीन 7 and 13 of September। ये है क्या, ये एक यूनेस्को इनिशिएटिव है सेलिब्रेटेड इन मोर देन 40 कंट्रीज एंड इट्स अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल मूवमेंट डेडिकेटेड टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्रू लर्निंग, जैसे कि मैंने कहा कि क्लोथ मेंडिंग वर्कशॉप। Ace Aotearoa has celebrated this festival across the Motu for more than 25 years. It's a chance to showcase the learning on offer in our communities, acknowledge the achievements of learners who have returned to learning and have fun. So the theme for this year, the theme for Adult Learners Week is finding our voice. My language or voice is my awakening power. We are hopeful that this theme provides scope to explore a range of lifelong learning issues and ideas. You can have more read about this more on aceaotearoa.org.nz. लेकिन इसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है ये अलग आर्टिकल है, और कहाँ कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये भी आप जान सकते हैं by heading on to ouroakland.auckland.council.gov.au। मीडिया रिलीज इसके लिए किया गया है एंड इसके बारे में हिस्ट्री के बारे में बातें की गई है, 1980s से ये चलता आ रहा है और आपके कम्युनिटी में कब कहाँ क्या कुछ हो रहा है, हेड ऑन टू aceaotearoa.org.nz एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कशॉप्स जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं टू हेल्प अडल्ट लर्न अ न्यू स्किल जो इन द डेली लाइफ आप काम में लाने वाले हैं। तो हेड टू aceaotearoa.org.nz या फिर लुकअप अडल्ट लर्निंग।

0: कितने लोग हैं जो हसल टीवी शो देखते हैं, दी हिप हॉप रैपिंग शो जो इंडिया में होता है. दिस हैज़ गोन इनटू सीजन 5 एंड आई हैव गोन बैक इनटू वाचिंग हसल दिस सीजन. मैंने हसल 1 देखा था, उसके बाद हसल 2 जो आया था उसमें बहुत ही बढ़िया कंटेस्टेंट्स थे, जैसे कि एमसी स्क्वेड, पैराडॉक्स हो गया और सृष्टि हो गई, साथ में विकेट सनी. दे वर सम गुड गुड कंटेस्टेंट्स. और नाउ पैराडॉक्स एंड एमसी स्क्वेड दे आर फीचरिंग एज टीम लीडर्स इन दिस ईयर्स सीजन 5 ऑफ हसल, जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं ऑन नेटफ्लिक्स. तो आज है संडे, एक एपिसोड मेरे ख्याल से आ जाएगा एंड देन द नेक्स्ट वन ऑन नेटफ्लिक्स विल बी टुमारो. So I'm following this really closely. Lekin if you are someone who enjoys poetry, rap karte hain, lekin you're more into poetry, there's stuff happening in our local libraries. Jaise ki poetry afternoon, ye hua kal. Epsom Library mein, 195 Manukau Road mein, kal hua a poetry session with 5 fabulous Auckland poets, Amanda Eason, Janet Chaman, John Adams, Peter LeBeige or P.S. Davies. More of these kinds of events are organized routinely in libraries across New Zealand. So, bahut important hai, you head to your library and you'll be amazed to find out ki libraries are not just for getting books and returning books. No. Wahan par bahut sare events, bahut sare workshops, bahut sare community-based programs hote hain jisme कलेक्टिवली आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं. एंड माइंड यू, यू आर फंडिंग ऑल ऑफ दिस थ्रू योर सिटी रेट्स, योर होम रेट्स जो आप भरते हैं. यू आर पेइंग योर काउंसल्स एंड काउंसल्स आर लुकिंग आफ्टर द लाइब्रेरीज. तो इनडायरेक्टली, वेल नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपके ही पैसे लगे हैं इन वर्कशॉप्स में. तो मेक यूज ऑफ इट.
1: यू आर लिसनिंग टू चिकाश.

बहुत ही बढ़िया बढ़िया अनप्लग्ड विजन्स ऑफ सॉन्ग्स आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, तो इसे एंजॉय करते रहिए। एंड फादर्स डे के लिए तो हमने आपको बताया है कि किस तरह से आप हमारे साथ कॉम्पिटिशन्स में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्लेनफील्ड एरिया में हैं एंड यू हैव एक्सेस टू ग्लेनफील्ड लाइब्रेरी जो 19 बेंटली एवेन्यू पर है, तो यू कैन गेट इनटू दिस ऑसम ऑसम प्रमोशन जहाँ पर Read with your father figure and win. ये एक कैंपेन जारी किया गया है ताकि लोगों को किताबें पढ़ने के लिए और भी प्रोत्साहित किया जा सके. Read with your father figure and go into the draw to win a $30 Glenfield Mall gift voucher. One per age range. तो एक voucher है for under 12s, एक voucher है for 13 to 18 years and one voucher for 18 years and over. आपको करना क्या है? You have to read a book या फिर e-book together. With your father figure, चाहे वो आपके अंकल हो, maybe it's your big brother who is like a father figure to you. मतलब कि आपकी देख रेख करते हैं and you respect him a lot. तो जो भी हो उनके साथ एक book आप पढ़े. Fill in the prize draw slip and put it into the lucky draw box at Glenfield Library. Entries ये खुल चुके हैं 21st August से और ये फ्राइडे 4th सितंबर तक आपके पास मौका है टू गेट इन टू दिस ड्रॉ. विनर अनाउंस होगा ऑन द 4th of September Friday को via phone and Glenfield Library Facebook page. So there you go, another reason to get along with your dad or your fatherly figure and do something fun and win prizes at the same time.

फादर्स डे के लिए हम कई कॉम्पिटिशन्स रच रहे हैं एंड आपको हमने बताया था कि आपको अपने डेट को सुपर हीरो बनाना है, तो हैव यू इमेजिन हिम बीइंग अ सुपर हीरो? अगर इमेजिन कर लिया है तो उस इमेजिनेशन को क्रिएटिव कीजिए, क्रिएटिव टच दीजिए, यूज़ AI प्रॉम्प्ट्स जनरेट करें एंड थ्रू द प्रॉम्प्ट्स जनरेट एन इमेज ऑफ योर डैड एज अ सुपर हीरो और उस फोटो को आप डालें इन आवर डैड्स AI अपग्रेड प्रमोशन पोस्ट ऑन फेसबुक, उसी कमेंट में आप उस डैड की फोटो को डालें एंड टेक योर डैड, get your friends and family to like that photo, make sure they follow our Facebook page और competition post को भी like करें, जितने ज़्यादा likes आएंगे आपके photo पर and if all of them are following us, you might be just walking away with $300 cash on the 4th of September. तो get that done and हम जानते हैं कि सभी के dad super heroes हैं in their lives, mine was too. अनफॉर्चुनेटली ये हम मेरे डैड मेरे साथ अब नहीं है, लेकिन आई फील फॉर्चुनेट, आई फील ब्लेस्ड कि उनका आशीर्वाद उनके द्वारा दी गई हुई सीख इट्स ऑलवेज विथ मी एंड ही इज़ ऑलवेज गोना बी माई सुपर हीरो. काफ़ी कुछ बात करना, गाना बजाना सीखा है अपने डैड से मैंने सीखा है, तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लाइफ स्किल्स आपके डैड ने आपको सीखा है एंड देट इज़ रीज़न इनफ फॉर हिम टू बी द ओनली सुपर हीरो इन योर लाइफ. तो री इमेजिन योर डैड, give your imagination some thoughts, some creativity, prompts डालकर AI से आप अपने डेट को सुपर हीरो बना ही दीजिए. आई एम प्रीटी श्योर ही विल लव सीइंग हिमसेल्फ थ्रू योर आइज एज अ सुपर हीरो. तो नॉट जस्ट टू विन प्राइजेस, जस्ट डू इट फॉर हिज हैप्पीनेस. मे बी दैट्स वन वे यू कैन टेल हिम हाउ मच ही मीन्स और वट एक्चुअली ही मीन्स टू यू इन योर लाइफ. योर डैड इज अ सुपर हीरो.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

Hey, kia ora, welcome back to Sunday Night Melodies. I hope you enjoyed the unplugged music jo aapke liye humne play kiya in the previous hour. Ab samay hua hai kahkashan ka, jahan par aapke dil ke kareeb jo ghazal hai ye aapke liye hum lekar aate hain. Kuch apne pasandeeda ghazal sunate hain, kuch aapki farmaishon par gaur karte chalte hain, and kai sare shayaris hamare paas abhi hain. Bahut acha lag raha hai jab aap hamare sath अपना प्यार बांटते हैं. तो आइए शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की इस गज़ल से. एंड ये गज़ल आई थी इन द मूवी तुम बिन, और जिस तरह की वो मूवी थी, दिस गज़ल कंप्लीटेड दैट मूवी. तो आइए सुनते हैं, एंड इससे मिलता जुलता किसी ने एक हमारे पास शायरी भेजी थी, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. किसी ने लिखा है कि हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर इश्क का नाम खराब नहीं होता. ये तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता. खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हस्ती आँखों में भी जख्म गहरे होते हैं. जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं. किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में उसने खुद की मौत मांगी. खुदा ने कहा मौत तो तुझे दे दूँ, मगर उससे क्या कहूँ जिसने तेरी ज़िंदगी की दुआ मांगी. हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बेवफा नहीं होता. बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता.

0: experience.
1: Attention everyone. हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
4: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol served everywhere this winter with a lime.

0: inviting all passengers booked on flight HUM 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special HUM boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
1: HUM boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
4: At Bunnings, you'll find gifts built for Dad. Put a smile on Dad's face with a gift from Bunnings.
5: When Dad's come in here, it's like a kid in a toy shop.
6: Dad's loves to shop at Bunnings. You know, there really is something for every dad. A new water blaster, a new drill, a new barbecue, lawn mowers, edges.
5: Any type of dad. Landscaper dad, builder dad, worker dad. And if they've got projects that they want to work on around the house.
7: Dads are always working on a project.
5: Bunnings is the best place to find a Father's Day present. Bunnings
4: Warehouse! Lowest prices are just the beginning.
8: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: Find more ways to save this business month at Warehouse Stationery. Grab hot deals on office essentials or a great value bundle. And earn bonus biz rewards points on the brands you love. Shop great deals for your business and save big today.
10: 3, 2, 1, rush!
11: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
12: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
13: Zabardast hits.
14: Shuru ho jaye to rukte nahi.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Hum.
13: Dil se. Dil se. Dil tak.
16: This next song goes out to everyone jo apne ghar se dur hai ya phir unse dur hai jinke saath mein rehkar ghar wali feeling aati thi. एवरीवन जो यहाँ पर है, इंडिया से हो, चाहे फिजी से हो, चाहे नेपाल से हो, हम जानते हैं कि अपनों से दूर रहकर एक और ज़िंदगी गुजर बसर करना इट्स वेरी चैलेंजिंग, लेकिन आप कर रहे हैं और आपकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ पर हैं। हम भी तो अपना देश छोड़ कर आए हैं, फिजी से आए हुए, मुझे 13 साल हो चुके हैं। आई हैव माई इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स स्टिल इन फिजी और मेरा खुद का परिवार यहाँ पर अब मैं पाल रहा हूँ विथ माई वाइफ एंड टू लवली डॉटर्स। तो ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन जिन्हें हम छोड़ कर आए हैं ऐसा नहीं है कि वो छूट ही गए हैं, वो है, बस याद आती रहती है। कभी उनकी चिट्ठी आ जाती है, मैसेज आ जाता है मैसेंजर पर या फिर व्हाट्सएप पर, कॉल्स आ जाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि टेक्नोलॉजी है तो बातें हो जाती है बेझिझक, हम बस डाटा को इस्तेमाल करके उनको देख भी लेते हैं। लेकिन ये जब गाना बना था, चिट्ठी आई है, पंकज उदास जी द्वारा इसको गाया गया है, उस समय मोबाइल फोन्स वेरेंट much of a thing. तो सोचो उस समय घर से दूर रहना और याद आए तो कब बातें होंगी, कैसे बातें होंगी, ये बात सोचना और दुख तकलीफ बांटना उतना आसान नहीं हुआ करता था. तो लेट्स गो बैक इनटू दैट एरा एंड देन लिसन टू दिस गजल बाय पंकज उदास.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

संडे नाइट मेलोडीज में मैं जिकाश आपका साथ दे रहा हूँ। 23rd of August है एंड दिल से कार्यक्रम जारी है आप सभी के लिए। 10 से 12 बजे के बीच में आपके लिए हम बॉलीवुड के कुछ यस्टरडेज के गाने लेकर आते हैं, मतलब आपके लिए हम 90s दिल से प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें 90s के दशक के कुछ बेहतरीन नगमे आपके लिए हम पेश करते हैं। अगर आपके पास भी कुछ पसंदीदा गीत है फ्रॉम दी 90s और अभी तक आपने नहीं सुना है इन लास्ट फ्यू वीक्स इन दिस प्रोग्राम, तो गेट इन टच विथ मी 5599 पर गाना भेजिए, गाने का नाम भेजिए, फिल्म का नाम भेजिए। वी विल ट्राई टू गेट दैट ऑन इन दिस प्रोग्राम नेक्स्ट वीक। तो आइए शुरुआत करते हैं संडे नाइट मेलोडीज़ में इस घंटे की, जिसमें 90s दिल से कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। इस घंटे पर आपको बताएंगे अबाउट आवर हम बोर्डिंग कॉल। कई सारे दोस्त हैं जो दे हैव ऑलरेडी आंसर टू द हम बोर्डिंग कॉल। कई सारे लोग हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, भाई इंतज़ार करोगे तो शायद ये मौका आपके हाथ से फिसल जाए। तो क्या है हम बोर्डिंग कॉल, ये आपको हम बताएंगे बस इस अगले गीत के बाद में। क्योरा

ऑलराइट, तो हम आपको भेजना चाहते हैं वनुआतु विद सोलमन एयरलाइंस, और आपको ही नहीं आपके साथ एक और एक टिकट देंगे, यानी कि दो टिकट रिटर्निया टिकट्स देंगे। ऐसा नहीं है कि वन वे टिकट देकर आपको वहाँ भेज देंगे फिर बुलाएंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। रिटर्निया टिकट्स फॉर टू पीपल टू वनुआतु विद सोलमन एयरलाइंस, और इसके साथ में $1,000 पेंडिंग मनी। तो भाई आपके तो वही बात हुई ना, सोने पर सुहागा। एक तो आपको घूमने का मौका, और घूमने फिरने के लिए पैसे भी हम दे रहे हैं। तो इतना ही आपको करना है। एवरी वीकडे हमारा स्पेशल बोर्डिंग कॉल हम करते हैं सुबह 8 बजे, सुबह 11 बजे, दिन में 1 बजे और शाम 5 बजे। जैसे ही आपके सुनते हैं गो टू रोबा, और हमारे हम बोर्डिंग कॉल प्रमोशन के अंतर्गत वहाँ पर जाकर आप बोर्ड नाव लिखकर सबमिट कर दें। अगर आप नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर ढूंढना है ओनरोबा, BC लिखकर भेजें 5599 पर। अभी हम आपको पेज लिंक भेजेंगे जहाँ पर जाकर आप बोर्ड नाव लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, टुमोरो मॉर्निंग 8 AM, टुमोरो 11 बजे सवेरे सुबह और दिन में 1 बजे एंड शाम 5 बजे। तो हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलमन एयरलाइंस जो फ्लाई करती है नॉन स्टॉप ईच वीक फ्रॉम ऑकलैंड टू वनुआतु 4 बार हफ्ते में। विजिट कीजिए solmans.com, T's and C's डू अप्लाई। थोड़ी देर में वील हैव अ लुक एट द वेदर फॉर नेक्स्ट वीक।

A big shout out to all our people who are on the road. मतलब driving कर रहे हैं आप, चाहे आप truck and trailer चला रहे हो या फिर taxi चला रहे हैं, airport पर हैं आप waiting for your passenger या फिर आप Uber के ting का इंतजार कर रहे हैं कि आपके future customer आपको बुला ले and you get some well-deserved money tonight. तो जो भी है, अगर आप राइट शेयर ऑपरेटर है, ऊबर हो गया, बोल्ट हो गया, कई सारे तो हो गए हैं, जो भी आप कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर सेफ आउट देयर, सेफ्टी फर्स्ट. अगर कोई भी डोजी सिनेरियो आपको लगे तो डोंट इंडल्ज, जस्ट वहां से आप निकल जाए, ये आपके लिए बेहतर होगा. एंड गेट टू दी रेलेवेंट अथॉरिटीज़. 105 पर आप कॉल करके आप पुलिस को बता सकते हैं. इफ़ इट्स नॉट सुपर अर्जेंट, क्रिटिकल नहीं है, अगर क्रिटिकल है तो 111 पर आप कॉल करें एंड मेक श्योर यू रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी. जो भी हो, हम चाहते हैं कि आप सेफ रहें. राइट, लेट्स हैव अ लुक एट द वेदर फॉर नेक्स्ट वीक. संडे तो ख़त्म होने का आया है एंड आई एम ग्लैड टू से मंडे, मंडे आईटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्लाउड्स विल बी क्लियरिंग बिफोर डॉन. तो सुबह 7-8 बजे से पहले धूप आपको दिखने को मिल जाएगी, बादल घट जाएंगे. ट्यूसडे को थोड़ा सा बादल रहने वाला है, अ चांस ऑफ शावर इन द मॉर्निंग, नॉट टू बैड. वेंसडे को बारिश देखने को मिलेगी, अ फ्यू शावर्स ऑन वेंसडे. थर्सडे को अगेन पार्टली क्लाउडी विद अ फ्यू शावर्स, चांस ऑफ अ शावर. तो मंडे से थर्सडे ठीक ठाक वेदर रहने वाला है, वेंसडे को बारिश होने का अनुमान ज़्यादा लगाया गया है. फ्राइडे को काले काले बादल छाने लगेंगे, तो फ्राइडे को शावर्स ज़्यादा होने वाली है. ओवर द वीक 16 से 18 डिग्रीज टेम्परेचर रेंज करने वाला है ड्यूरिंग द डे, 16 ऑन मंडे, 18 ऑन फ्राइडे. ओवरनाइट टेम्परेचर्स आर गोना स्टे अराउंड 9-11 डिग्रीज, तो बहुत बुरा नहीं है. हाँ, फ्राइडे को छतरी आप ज़रूर ले लें, शायद इसका इस्तेमाल करना पड़ जाए.

आप कितनी अच्छी तरह से चाय बनाना जानते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यू नो मसाला मार के एकदम से दूध को जलाकर जो चाय बनती है, इट्स नॉट हेल्थी। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, द हेल्थीस्ट वे टू ड्रिंकिंग मिल्क टी इज गेट योर ब्लैक टी एंड देन इन द फाइनल फ्यू मिनट्स और फाइनल 30 सेकेंड्स यू मिक्स हॉट मिल्क इन इट, यू डोंट बॉइल द मिल्क विद द टी, क्योंकि इससे आपके हेल्थ रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं। तो ये बात आपके डाइटिशियंस आपको बता सकते हैं एंड आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं एंड यू कैन रीड ऑन टू इट। लेकिन मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि वन कप 1000 स्टोरीज, द आर्ट ऑफ टी एंड कॉफी मेकिंग एंड टेस्टिंग, ये एक माइंडफुल प्रैक्टिस है दैट नर्चर्स ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड अवेकनिंग। बियॉन्ड इट्स वेल नोन हेल्थ बेनिफिट्स, टी एंड कॉफी इन्वाइट अस टू स्लो डाउन, be present and reconnect with ourselves. I love black tea and black coffee any time of the day. Before 3 o'clock I would go in for a coffee, black tea maybe 6 to 8 p.m. agar aap chahte hain to learn the art of making good tea, and you know this is not doodh wali chai, tea sahi maine mein bina doodh ki hoti hai, aur coffee bhi, अगर आपको कॉफ़ी पीना है यू ड्रिंक इट ब्लैक। ये आर्ट अगर आपको और भी पॉलिश करना है, तो कल एक सेशन हुआ सर एडमंड हिलरी लाइब्रेरी में, द नेक्स्ट वन इज़ हैपनिंग ऑन 24th अक्टूबर, फिर 14th नवंबर, फिर 28th नवंबर एंड देन 12th दिसंबर को वन कप 1000 स्टोरीज। ये एक फ्री इवेंट है जो हो, सॉरी नॉट फ्री इवेंट, दिस इज़ अ गोल्ड कॉइन डोनेशन इवेंट, तो चाहे $1 कॉइन या $2 कॉइन, ऑलमोस्ट फ्री, यू कैन डोनेट towards the cost of high quality tea and coffee and snacks. तो एक तो आप सीखेंगे स्वादिष्ट चाय का मज़ा लेंगे, और $1-2 वहाँ दे देंगे तो उस चीज़ का कॉस्ट भी कवर हो जाएगा। सर एडमंड हिलरी लाइब्रेरी 209 Great South Road पपरकुरा में, अगर आप उसके आस पास है, यू कैन गो टू द लाइब्रेरी। फ्री पार्किंग भी रहता है 28 East Street पर, एंड डू लेट मी नो कि इफ़ यू गो देयर, इफ़ यू लर्न अ न्यू वे ऑफ मेकिंग टी, लेट share with us.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया आप
2: लोग. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
4: Non-stop Bollywood.
5: We're playing Bollywood's

Hey Bula, welcome back to Sunday Night Melodies. Final hour में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत कर रहे हैं आपका. अगर आपने अभी काम शुरू किया है, आई होप यू हैव डन ऑल योर सेफ्टी चेक्स एंड सिक्योरली सेफली अपना काम आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं आज. अगर आप काम ख़त्म कर रहे हैं, कोई भी हड़बड़ी, कोई भी जल्दबाजी ना कीजिए, आराम से नुक ऑफ कीजिए और हौले हौले अपनी मंजिल यानी कि अपने घर की ओर जाए, जहाँ पर आपके चाहने वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं. एन्जॉय द जर्नी एंड गेट सेफली टू योर डेस्टिनेशन. स्वागत कर रहे हैं आप सभी का इन संडे नाइट मेलोडीज. इस घंटे पर हम बातें करेंगे अबाउट सम ऑसम थिंग्स जो हो रहे हैं इन न्यूजीलैंड. अभी पिछले ही सप्ताह इन माई किड्स स्कूल दे हैड अ बुक एक्सचेंज सेशन ऑन फ्राइडे, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट वे ऑफ इट्स बाटा, जहाँ पर जो बुक्स उन्होंने पढ़ लिए हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट आउट टू चैरिटी डोनेशंस, दे कैन टेक इट टू बुक एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पर किसी और को वो बुक देकर अपने लिए दूसरा नया बुक ये चुन सकते हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ऐसा ही अपॉर्चुनिटी आपके पास भी है. आई विल शेयर इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर आप जाकर ऐसा कर सकते हैं. एंड ऑल्सो कमिंग फ्रॉम इंडिया इन फिजी, आपने नोटिस किया होगा कि द क्लासरूम्स आर नॉट द ट्रेडिशनल क्लासिकल या फिर कन्वेंशनल क्लासरूम सेटअप जो हमें इंडिया में और फिजी में मिलता था. डू यू थिंक कि द वे किड्स आर टॉट इन न्यूजीलैंड इज बेटर और नॉट एज गुड एज थिंग्स दैट वर बैक इन फिजी और न्यूजीलैंड और इंडिया और नेपाल फॉर दैट इंस्टेंस. क्या आपके देश में जहाँ से आप आए हैं, द एजुकेशन सिस्टम, द वे किड्स आर एजुकेटेड, इज इट बेटर देन न्यूजीलैंड वर्स देन न्यूजीलैंड? जानकर अच्छा लगेगा. मैसेज भेजिए हमारे पास 5599 पर.

All right, if you are a bookworm, books padhna aapko bahut acha lagta hai. I know a few people who love reading. I also love reading, lekin I cannot commit to a 100-page book. Mujhe commitment issues hai with books. Anyway, Teatatu South mein agar aap hai, then the Teatatu South Community Hub, which is at the 247 Edmonton Road, Teatatu South, Auckland mein, yahan par ek book exchange system set up kiya gaya hai, jahan par you can come along and browse the wide selection of books. If you find something new to read, you can exchange books with others in the community. To apne पास जो बुक है वो लेकर जाए, दूसरे को दो या दूसरे लोगों से बुक्स आप ले सकते हैं, एंड दैट इज़ फ्री एज वेल. ये होता है एवरी मंडेज को, एंड द नेक्स्ट वन इज़ टुमारो 24th August, फिर उसके बाद 31st August, एंड देन फॉलोइंग ऑन एवरी मंडे ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर आप जा सकते हैं 14th December तक. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे ऑफ एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड गेटिंग न्यू बुक्स विदाउट स्पेंडिंग मनी.

टिपिकल क्लासरूम सेटअप के बारे में हमने बातें की थी कि क्या इंडिया में जो सेटअप होता है कि एक कक्षा में सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एंड दूसरी कक्षा के लोग दूसरे कक्षा के बच्चों से बहुत घुलते मिलते नहीं है, एज इन दिस कॉम्पिटिशन विद इन द क्लास। और ऐसा फिजी में भी होता था, एक क्लास होता था से 30 स्टूडेंट्स का और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एग्जामिनेशंस, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड

मेरा तो यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज का कार्यक्रम। आई होप यू हैव इक्वली एंजॉयड टुनाइट्स प्रोग्राम। अगर कुछ suggestions ho to make the program better, do hit me up in sync with Jix on Instagram and Facebook par Jikash Prasad aap look up kare, you'll find me there. Go to our hum page, wahan par I have a lot of mentions, to wahan se bhi aap mujhe look up kar sakte hain and get in touch. Hamesha main koshish karta hu ki program ko aur bhi badhiya banau. To isi ke sath अब मिलते हैं अब अगले सप्ताह इन रेडियो पब्स शनिवार के दिन में 12 बजे। तब तक के लिए आप सभी अपना खूब ख्याल रखें। व्हाटएवर यू डूइंग, मेक श्योर कि आप सेफ रहे, आपके आसपास जो लोग हैं आपके फैमिली, दे नो व्हाट टू डू इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इन सभी पर आप गौर करते रहिएगा और हम चाहते हैं कि आपसे दोबारा मुलाकात हो अगले सप्ताह शनिवार के दिन में 12 बजे, फिट एंड फाइन एंड रेडी टू रॉक राइट हियर ऑन हम रेडियो पब में। मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। हैव अ ग्रेट एंड प्रोडक्टिव वीक अहेड। नमस्कार।

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आप

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center.
3: Bollywood ka asli blockbuster.
4: Pure sheher pe kabza hoga, raj hoga.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Night Flight

0: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight HAL 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilyservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। Night.

वे खत्म नहीं हुआ बावड़ी पूछ, अबे ढोल पीट ले। वे गिटार बजा ले जैक्सन की औलाद।

0: Crispy on Rova, Spotify और anywhere you get your podcast.
1: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
2: हाँ, अच्छा?
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं.
2: Mrs. Singh.
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स.

0: लो।
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

0: driving you home? Drive show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन लिए पहन के यार. क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में.

0: सिर्फ
1: इंटरेस्ट
2: ब्रांड हो गया अभी वो
0: अभी ब्रांड हो गया ना
1: रिज़्बे के बाल लगे उससे
3: The Drive Show with Sandy and Rusbi, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ. अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: डॉक्टर ने क्या बोला
8: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
7: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
9: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
10: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashure1.co.nz Northernville Advisory Limited Trading as Ashure One is a licensed financial advice provider
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलोकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines, plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
9: डॉक्टर ने क्या बोला
10: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए
9: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए वरना पता भी नहीं चलता
11: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक हाय आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शोर वन माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड
12: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे कॉल अ श्योर वन ऑन 0800-77-HEERA दैट्स HIRA और विजिट ashore1.co.nz नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अ श्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर
13: Bollywood ka asli blockbuster.
14: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Hum. Night flight on Hum.
16: Hey, kutte. Idiot. Haan, teri to.

इधर है तू तो?

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Now listen.
3: Get up.
2: That's right.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: हे नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
3: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
6: द बीट ऑफ बॉलीवुड
7: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी गुड ब्रांच नहीं है।
8: नाइट फ्लाइट

सोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम।

0: भी तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: That's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वो भी विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients के लिए अल्ट्रासोनिक स्केल एंड पॉलिश फ्रॉम $99 और वन टूथ एक्रेलिक डेंचर सिर्फ $599 में, प्लस फ्री डेंटल examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes, or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
6: Join our tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। Playing Bollywood's biggest hit.

0: show with Vijay and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Two Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
3: डिब्बा खुल गया
4: भरत भाई टिफिन खुल गया छे संजना का डिब्बा खुल गया
5: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा फिर यही तो होगा
4: डिब्बा खुल गया
5: हल्दी मिर्ची गरम मसाला कशिश मसाले अच्छे वाले बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.

0: Sunnyside Up. आज की सनी साइड अप स्टोरी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इट्स ऑल द वे फ्रॉम इंडिया. वैसे ये जो स्टोरी है एक्चुअली इंडिया में कहाँ की स्टोरी है वो मेरे पास ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं है, बट इट लुक्स लाइक इट्स समवेयर फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया. अपेरेंटली यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जो है इनकी एक वीडियो वायरल जा रही है. जब ये रूटीन चेकअप जो है ये कर रहे थे रास्ते पर, तो वहाँ पर ही मेट विद अ स्टूडेंट जो काफ़ी डिस्ट्रेस में लग रहे थे बिकॉज ही हैड टू रीच हिज एग्जामिनेशन सेंटर. उनका एग्जाम था और वो समय पर पहुंच नहीं पा रहे थे वहाँ पर बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है टाइमली मैनर में अवेलेबल नहीं था, और ऑफ कोर्स ही कुडंट अफोर्ड अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. तो जब पुलिस ऑफिसर जो है इन्होंने इस लड़के को देखा, स्टूडेंट को देखा एंड हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, तो उनको पता चला कि व्हाट्स द सिनेरियो. अभी बच्चा जो है ये समय पर एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर नहीं पहुंचेगा तो उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और फिर पूरी मेहनत पूरा साल जो है ये बर्बाद. सो व्हाट दिस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर डिड, ये रास्ते पर जो भी ट्रक्स जो है ये पास कर रहे थे बिफोर द चेक पॉइंट, ये हर एक ट्रक ड्राइवर के पास गए, उनको रोका और उनसे पूछा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है. आप देन ही नेम्ड दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ये एग्जामिनेशन सेंटर था कि आप उधर जा रहे हैं. तो जिस ट्रक ड्राइवर ने बोला नहीं, तो उनको थैंक यू बोलकर बोला आप चलिए, आप निकलिए ना कि आप जाइए. एंड देन जिन्होंने जिनसे पूछा उसमें से सबने इनफेक्ट कहा था कि वो उधर नहीं जा रहे हैं बिकॉज दे हैव टू टेक अ पर्टिकुलर लोड दैट साइड ऑल्सो ना, तो वो भी देखना पड़ता है. तो फाइनली उनको एक ट्रक ड्राइवर मिला जिनसे उन्होंने पूछा कि आप उधर जा रहे हो, तो दो जो ट्रक ड्राइवर है उन्होंने बोला जी हाँ बिल्कुल. एंड देन ही एक्सप्लेन द होल सिचुएशन कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बच्चा है इसका एग्जाम है और ये समय पर पहुंच नहीं पाएगा अगर आप इनकी हेल्प ना करो, तो अगर आप कर दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी. एंड अपेरेंटली द ट्रक ड्राइवर लाइक रियली नाइसली सेड ऑल गुड, मैं पहुंचा दूंगा, आप टेंशन मत लो. एंड देन ऑफर्ड लिफ्ट टू दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड देन वहां से उसको लेकर गया. तब तक का वीडियो है, तब तक की स्टोरी है. उससे आगे आई होप कि ही रीच द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन टाइम एंड गेव हिज एग्जाम एज वेल. बट ये जो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर है इनका ये जेस्चर दैट नीड की जरूरत तो नहीं थी, अगर वो चाहते तो वो अपना काम ही करते. वाई बींग बॉदर अबाउट लाइक अ स्टूडेंट जिसको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है समय पर, बट ही स्टिल डिड दैट. ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, उन्होंने आने वाले ट्रक्स जो देखे, ड्राइवर से बातें की, कोशिश की और फाइनली जब उसको एक ट्रक ड्राइवर मिला हु गेव हिम द लिफ्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर, ही अप्रिशिएटेड एंड थैंक्ड दैट पर्सन एज वेल ना.
1: या यू नो सम पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी you know, वो धोस नहीं जमाते
0: अफसरी का, above and beyond लोगों की हेल्प करने के लिए.
1: you know, TikTok पर मैं एक और पुलिस ऑफिसर है, इंडिया के ही है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है. उनका अंदाज बहुत पसंद है. वो क्या करते हैं जब वो रास्ते पर होते हैं, यू नो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए या फिर चेक पॉइंट्स पर, वो गा गा कर लोगों को रुकवाते हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, गाना गा कर रुकवाते
0: हैं. फाइन देने के लिए
1: नहीं, वो देखते हैं जो भी गड़बड़ होगी उसको म्यूजिकल अंदाज में गा कर बताएंगे.
0: अच्छा, मतलब अगर हेलमेट नहीं पहना है और ट्रिपल राइड कर रहे हैं,
1: कहाँ जा रहे हो, क्या बात है,
0: बताते हैं.
1: और ऐसा उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो फाइन दे, वो समझा भी देते हैं.
0: मतलब एजुकेट कर रहे हैं लोगों को बिकॉज इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट.
1: समझा भी देते हैं, कभी कभार वापस करते हैं, चलो जाओ जाओ जाओ जाओ घर से हेलमेट लेकर आओ. हाँ, ऐसा तो नहीं करना चाहिए. एंड यू नो वो देख के या फिर वो देख कर ऐसा लगता है कि भाई, और लोग उनकी बात मान भी लेते हैं जिस अंदाज से
0: वो बताते हैं.
1: हाँ.
0: तो वो भी एक चीज होता है. I mean, in certain situations, कभी-कभी होता है ऐसे कुछ लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते हैं, बट इन अ सिचुएशन लाइक दिस इफ पीपल आर लिसनिंग और मेकिंग दोज नेसेसरी चेंजेस, अगर आप आराम से अच्छे से भी बता रहे हो देन दैट इज द लैंग्वेज आप अपना रहे हो, तो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना.
1: जी.
0: बट ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी ओर से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, आउट ऑफ द वे जाते हैं औरों की हेल्प करने के लिए, और ऐसे लोगों को हम सेलिब्रेट करते हैं सनी साइड अप में. बाय द वे, अगर आपके पास भी ऐसे ही किसी शख्स की कहानी हो तो हमारे साथ शेयर आप ज़रूर कर सकते हैं. समवन इफ़ यू इवन नो जो यहाँ न्यूजीलैंड में हो, ऑकलैंड में हो, इवन इफ इट्स वन ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और ऐसी कोई भी कहानी जहाँ पर यू अप्रिशिएटेड दैट पर्सन फॉर ब्रिंगिंग दैट जॉय दैट हैप्पीनेस किसी और की ज़िंदगी में अपनी एक कोशिश से, तो आप हमारे साथ ये ज़रूर शेयर कर सकते हैं. और हु नोज, अगली बार सनी साइड अप स्टोरी में उनकी कहानी हम सबको सुनाए.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो मैं आ गए.
4: अब तक डैड
3: आपकी क्लास लेते थे, लेकिन अब बारी है रिवर्स ग्रिल की।
4: इस फादर्स डे हम पर डेड से होंगे मॉडर्न स्लैंग, पॉप कल्चर और टेक के सवाल।
3: हर सही जवाब को मिलेगी ड्रॉ में एंट्री और एक लकी डैड जीतेंगे $500 कैश।
4: साथ में सोशल मीडिया पर पार्ट लीजिए डेड्स AI अपग्रेड में और जीतिए $300। डेड को रेडी करो, खुश करो।
3: फादर्स डे ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय आई विलेज एट विक्टोरिया, इंडियन किचन एंड बार, BFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years, अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इनडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स।
4: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
6: Hi, Kevin Eater here, Trade Staff. Is respect in your workplace and being treated like an adult important to you? Are you currently in work that feels like you're going nowhere? Life's too short for bad jobs. Let's have a chat. If you're looking for better pay, flexibility, or a new challenge, let us show you how. There's never been a better time than now. We're online, tradestaff.co.nz.
7: Trade Staff, industrial employment solutions. Trade Staff.
8: Your property manager shouldn't disappear after 5 p.m. Nesto offers evening and weekend viewings, proactive management and real support. Visit nesto.co.nz. Nesto Property Management. Comfortably nested.
9: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
10: Flooring Extra. Adore your floor.
11: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोगांव में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: The beat of Bollywood.
13: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: Global Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान ने यूएस के साथ चल रहे संघर्ष पर कहा है कि ईरान हमेशा के लिए जंग नहीं लड़ सकता, और उन्होंने देश को ना वो ना पीस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए पिछले अग्रीमेंट का बचाव किया है। तेहरान में हुए इवेंट्स के दौरान उन्होंने वार्निंग दी कि अगर सरकार लोगों की ज़रूरतों और इकोनॉमी को नहीं संभाल पाती है तो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होने के बावजूद भी हार हो सकती है। इस मुद्दे पर ईरानियन लीडरशिप के बीच मतभेद गहरे हो रहे हैं, जहां प्रेसिडेंट और उनके समर्थक बातचीत को देश के हित में बता रहे हैं, वहीं हार्डलाइनर्स और सिक्योरिटी लीडरशिप डायलॉग का विरोध कर रहे हैं। अमृतसर में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने 2 आरोपियों को अरेस्ट करके एक इलीगल आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिनके पास से 10 पिस्टल्स, मैगजीन्स और लाइफ कार्ट्रिजेस बरामद हुए हैं। अरेस्ट किए गए दोनों आरोपी तांतरण के रहने वाले हैं, जो एक मोटरसाइकिल पर इन हथियारों को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। फिजी के एजुकेशन मिनिस्टर असेरी रनरोंड्रो के मुताबिक पिछले साल 1,508 प्राइमरी और 1,635 सेकेंडरी स्टूडेंट्स ड्रग्स के साथ पाए गए थे, जो रिपोर्टेड केसेस में 2.4% की बढ़ोतरी है। मिनिस्टर ने साफ किया है कि ये इंक्रीज नए बने काउंसलिंग हब्स के कारण हुआ है और प्रभावित बच्चों की संख्या 2% से कम है, जिसमें मैरिजुआना, वेपिंग और अल्कोहल शामिल है, पर मेथमफेटमिन का कोई केस नहीं मिला है। इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच जो है ये शुरू हो रहा है। पहले इनिंग्स में इंडिया ने 5 खिलाड़ी खोकर 85 ओवर्स में 300 रन बनाए। श्रीलंका को बैट करना अभी बाकी है। पहले मैच में इंडिया की जीत हुई थी। उधर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया की जीत एन इनिंग्स और 51 रन्स से हुई। इसके बाद अब दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत लिया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले राउंड के मैचेस सप्ताहांत खेले गए। आज सुबह न्यूकासल और लिवरपूल 2-2 गोल से बराबर ठहरे। ब्राइटन 4 एस्टन विला 0, मैनचेस्टर सिटी 2 बर्नमाउथ 1। कल ब्रेंटफोर्ड की जीत टॉटनहम हॉटस्पर्स के खिलाफ 3-0 से हुई। लीड्स की जीत नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ 1-0 से हुई। इप्सविच टाउन 2 संडरलैंड 1, एवर्टन 2 पैलेस 0। और शनिवार की सुबह मैनचेस्टर यूनाइटेड की हार हल सिटी के खिलाफ 2-0 से हुई, जबकि आर्सेनल ने कोवेंट्री को 3-0 से हराया था। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
15: Bollywood's most wanted.
16: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
17: मैं लाऊं अपना A game.
18: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: run a race like me.
1: मंडे 24th of August की सुबह खास आपके नाम कर रहे हैं हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा, जहाँ कहीं भी आप साथ हमारा दे रहे हो उसके लिए थैंक यू सो मच। आज देखा जाए तो लगता है बस दो ही लोगों की मंडे मॉर्निंग हुई है, सुबह की शुरुआत हुई है। एक है मिस तमारा माटा, जिन्होंने कहा है कि राम राम, जय माता दी, हैप्पी मंडे एवरी वन, हैव अ गुड डे। मिस तमारा माटा, इन्होंने अपना मैसेज हमें सेंड किया। और दूसरे शख्स लाइक एवरी मॉर्निंग बॉबी मान जी, जिनका गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। और इन्होंने कहा है, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड, महादेव ब्लेसिंग्स, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी थैंक यू हमारा साथ देने के लिए।
2: अभी क्या है ना कि बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी खबरें हम आपको देते रहते हैं। आपने फिल्म देवा देखी है
1: जिसमें शाहिद कपूर थे ना?
2: हाँ,
1: मैंने देखी है।
2: तो इस फिल्म के एक एक्टर को मुंबई में एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान अरेस्ट किया गया है।
1: किस एक्टर को?
2: रहुल्ला मेहंदी।
1: अच्छा,
2: रहुल्ला मेहंदी जो है इन्होंने फिल्म देवा में काम किया था और इनको एक अलेज्ड ड्रग ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट किया गया है। INI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेहंदी और उनके एक दोस्त को या साथी को अरेस्ट किया गया विद 28 ग्राम्स ऑफ ड्रग्स। और महाराष्ट्र के पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और इसके बारे में INI ने एक जो एक्सपर्ट रिपोर्ट पब्लिश की है। रहुल्ला मेहंदी, इन्होंने शाहिद कपूर के साथ फिल्म देवा में काम किया और साथ ही में उन पुलिस को एक टिप ऑफ मिली थी कि मेहंदी जो है ये दहिसर चेक नाका की ओर जा रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र कमले जो है उन्होंने एक टीम बनाई और सर्वेलेंस जो है ये शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उन दोनों को अरेस्ट किया गया है और अब मामले की तहकीकात जो है ये की जा रही है। रहुल्ला मेहंदी ओरिजिनली जम्मू और कश्मीर

0: ऐसा करके जब हम टाइप करते हैं गूगल में तो हाँ. आता है कि 26 अगस्त को रिलीज होने को है थिएटर्स में.
1: 26 अगस्त अभी थोड़े ना आई है. हाँ. अभी तो 24 चल रही है, आज 24th है, एंड देन
0: दो दिनों बाद
1: यस. सो वंस इट रिलीजेस तो इसके साथ गन मास्टर जीना इन हिस का भी टीजर देखने को जरूर मिलेगा.
0: बाय द वे रवनेश मुदलियार जी का भी मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय एंड पूजा एंड ऑल लिसनर्स ऑफ हम, हैव अ हैप्पी डे. आपको भी ये दिन ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Attention, hum passengers. Your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu.

0: visit flysolomons.com. Accurate traffic.
1: Kitchen Mania free installation.
2: Plenty of cloud, but still mainly fine today. A high of 17 degrees. Coming into the city, just starting to slow down as per normal. Southern, 22 minutes. Manukau to town, 42. Dreary to the city. South of Manukau, we're slow. Papakura through to Manurewa. Northwestern, 17 minutes in from Massey. Bit of traffic west of Massey at Te Aratu and around Grey Lynn. Northern, 18. Constellation to town, slow there to Milford and at Esmond.
1: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and receive free installation. Kitchenmania.co.nz.
3: पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार, 190 स्टॉडर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
4: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
5: At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
6: At Bunnings, give Dad the gift of the whole warehouse this Father's Day. Whatever type of dad he is, from tool dad to barbecue dad, he'll find something he really wants with our wide range. Gift cards built for Dad at Bunnings. Available in-store and online. Bunnings Warehouse.
7: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने ले ले
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
8: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए लेकर आ रहे हैं 22 minutes away from 7:04 now and Monday 24th of August की सुबह याद दिला रहे आपको भी कि आज आपका स्पेशल डे है if you're celebrating your birthday, your anniversary तो इस घंटे आप अपने मैसेजेस हमारे पास डेफिनेटली भेज सकते हैं बिकॉज अगले घंटे हम आपको विश करेंगे आपकी खुशियों में शामिल होते हुए आपके साथ हम ज़रूर जुड़ेंगे और आपको बताएंगे ना कि क्या कुछ जो है ये आज आप और आपके साथ अन्य लोग जो है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं
10: 24th ऑफ अगस्त है आज का दिन तो शायद आपको याद नहीं था हम अभी आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि प्लीज़ समय से पहले अपने मैसेजेस जो है ये आप हमें भेज दें वैसे आज 24th ऑफ अगस्त को अदिति शर्मा ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं अदिति शर्मा 1983 में इनका जन्म हुआ था लेडीज वर्सेस रिकी बहल और अंग्रेज कई अन्य मूवीज में इन्होंने काम किया

0: इन्होंने गंगा जो टीवी सीरीज है उसमें भी काम किया था।
1: आई थॉट अदिति शर्मा यू द सिंगर यू वर टॉकिंग अबाउट।
0: नहीं नहीं, शी इज एन एक्ट्रेस।
1: ओके।
0: हाँ, और सिलसिला बदलते रिश्तों का अगर ये आपने देखा है कलर्स टीवी पर, तो मौली का किरदार इन्होंने निभाया था।
1: राइट, नाउ आई नो।
0: या शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे 24th of August। जस्ट रिमाइंडर भाई, अपना काम अगर आप सही सही नहीं करोगे तो यू नो, जो अच्छा करते हो तो प्रमोशन मिलता है, कुछ खास नहीं होता है तो डिमोशन भी हो सकता है ना।
1: बिल्कुल।
0: अब मुझे नहीं मालूम है कि इसने अपना काम सही तरीके से क्या नहीं किया था कि इसको डिमोट कर दिया गया।
1: किसको?
0: प्लूटो को।
1: अच्छा, प्लैनेट प्लूटो।
0: प्लूटो को आज के दिन 20 इयर्स अगो डिमोट किया गया था।
1: ओके।
0: क्या ओके?
1: मतलब उनको जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट्स में डाल दिया गया था ना।
0: या समथिंग लाइक दैट। एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम, क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग द पी फ्रॉम प्लूटो, बिकॉज प्लूटो हैज बीन डिमोटेड। और फिर यू नो, अभी क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे नर्सरी राइम्स वगैरह जो है ये बने, जहाँ पर बच्चे सीखते हैं इसके बारे में। इसको डिमोट करने का प्रोसेस जो इनफैक्ट 2005 में शुरू हुआ था, व्हेन अ ड्वार्फ प्लैनेट नेम एरिस, इसको डिस्कवर किया गया था आउटसाइड ऑफ नेपच्यून्स ऑर्बिट इन द सेम बेल्ट एज प्लूटो। क्योंकि ये ड्वार्फ प्लैनेट जो है ये प्लूटो से बड़ा था, इसने कॉम्प्लिकेशंस जो है ये क्रिएट कर दिए क्लासिफिकेशन में। तब जाकर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसाइड किया कि प्लूटो को डाउनग्रेड करना पड़ेगा फ्रॉम अ फुल साइज प्लैनेट, और ये जाकर हुआ था 24th of August को शेक रिपब्लिक में।
1: ओके, इंटरेस्टिंग।
0: So much of details.
1: I know.
0: Early in the morning.
1: A planet can be demoted as well. ये हमें पहले कभी नहीं पता था, आज जाकर पता चला। Interesting, very interesting. फिलहाल समय की ओर देखें तो it's 19 minutes away from 7. और चलिए आज का सवाल, movie के description आपको हम देंगे।
0: हाँ हाँ।
1: Movie का description आपको हम देंगे, then आपको अनुमान लगाना है कौन सी movie ये हो सकती है। आज की हमारी Bollywood movie of the day, a young woman shares a deep friendship with a man who secretly falls in love with her. But circumstances take them different directions. Years later, they meet again when she is happily married. Tragic incident happens, only for an unexpected love triangle to turn their lives upside down. Friendship, love, heartbreak, and a shocking twist. क्या आप इस movie का नाम हमें बता सकते हैं या नहीं?
0: नहीं.
1: Very nice. एक महिला है, यंग महिला है, जो एक बहुत ही गहरी दोस्ती शेयर करते हैं एक लड़के के साथ, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लड़का उससे चुप चुप के प्यार करता है।
0: हाँ।
1: और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद चलकर जिंदगी उनको अलग अलग रास्ते ले जा लेकर जाती है। फिर कई सालों बाद उनकी मुलाकात होती ज़रूर है, लेकिन उस समय पर जो लड़की है इसकी शादी हो जाती है, शी इज़ हैप्पी मैरिड, लेकिन कुछ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद चलकर उनकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, और एक लव ट्राइंगल, अनएक्सपेक्टेड लव ट्राइंगल जो है ये सामने आता है। और ये पूरी की पूरी कहानी इज अबाउट फ्रेंडशिप, लव, हार्ट ब्रेक और साथ में एक शॉकिंग ट्विस्ट। देखते हैं क्या आज कोई इस फिल्म को पहचान पाता है या नहीं। तो अगर आपको अंदाजा लग चुका है कौन सी फिल्म है, आप BF लिखे सबसे पहले, फिर अपना आंसर, अपना नाम 5599 पर सेंड कर दे हमारे पास, एंड विल सी आप में से कितने लोगों ने सही आंसर्स दिए हैं। और अगर आप नहीं गेस कर पाए तो बताना ही पड़ेगा जवाब हमें, जो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे, अभी नहीं।
0: सो आप ट्राई कर सकते हैं और कि अपने जवाब हमारे पास आप भेजें, BC अपना आंसर और नाम।
1: अच्छा, 5599 पर
0: देखें अभी कितने लोग, मेरे बस की तो बात नहीं है भाई। पता नहीं मुझे फिल्मों के बारे में याद क्यों नहीं रहता, मैं देखकर फिर भूल जाता हूं।
1: याद मुझे भी नहीं रहता है, ये कभी कभी ऐसी तैयारी करनी पड़ती है तो आ जाता है ना, वो करना पड़ता है थोड़ा बहुत। बट ये जो मूवी है जब आई थी तो एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से लोगों ने इस फिल्म को देखने की इच्छा जाहिर की थी, और वो पर्टिकुलर रीजन क्या है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आई विल सी कि क्या कोई मूवी पहचान पाता या नहीं। अगर कोई नहीं पहचान पाया तो क्लूज के तौर पर आपको बताएंगे।
0: अच्छा, देखते हैं।
1: राइट, सो गेट स्टार्टेड।
2: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Hum, accurate traffic.
2: New limited edition sweet sriracha chicken parma.
3: A fine day, but plenty of cloud around as well. Got a high of 17 into the city. Southern starting to slow down a bit. We're slow at Drury and Manurewa through to Manukau. And again at Papatoetoe, 24 minutes Manukau to town. Not too bad though. Southwestern fine. Northwestern slowing at Te Aratu and St. Luke's, 20 minutes in from Massey. Northern slow Greville to Glenfield, 20 in from Constellation.
2: Lips will tingle. Enjoy the sweet sriracha chicken parma at Peter Pit, egged and bowled.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, ceiling आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
7: Coffee? The usual?
8: How about the unusual?
9: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
10: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
11: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
12: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
14: अभी 8 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में. बाय द वे, डोंट फॉरगेट कि इतना सारा इनाम जो है ये हम आपको दे रहे हैं ओनली ऑन हम. रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु दो लोगों के लिए विद $1,000 स्पेंडिंग मनी और उसके अलावा और इनाम देखिए. अच्छा, फादर्स डे इसमें भी इनाम जो है ये अब आ चुका है ना.
15: बिल्कुल, क्योंकि फ्राइडे को हमने शुरुआत की इसकी और अपॉर्चुनिटी आपको दिया कि आप हमारे साथ फादर्स डे कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेते हुए नाम जो ये जीत सके.
14: इंटरेस्टिंग है कॉम्पिटिशन. आज भी आपको दिस टाइम अराउंड फादर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है.
15: बिल्कुल.
14: हाँ, आप अगर एक डेड हैं, आप खुद कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके अपने लिए $500 कैश जीत सकते हैं. कैसे क्या करना है, डिटेल्स के लिए हमारे साथ ही रहें. और हमारे फेसबुक पेज पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन जो है ये चल रहा है. वहां पर भी आप जाकर जो कॉम्पिटिशन पोस्ट है ये चेकआउट कर सकते हैं.
15: बिल्कुल. तो हम 104.2 FM विद द ब्लू टिक, दैट्स द पेज यू हैव टू गो एंड चेक. और सारे के सारे डिटेल्स आपको एक पिंड पोस्ट में जरूर मिल जाएंगे इन द फीचर्ड फोल्डर. राइट नाउ हमने कहा था कि आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे अगर कोई नहीं गेस कर पाया तो आई विल गिव यू अ क्लू, जिससे कि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए. तो आज की हमारी जो मूवी है ये जब आई थी जिस किसी भी साल, उस साल इस फिल्म को लेकर क्रेज ये था कि एक साथ दो वर्ल्ड पेजेंट होल्डर्स जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर एक दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर आई कैन से ये दोनों वर्ल्ड पेजेंट होल्डर्स जो है इन्होंने इस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत कहीं ना कहीं की थी.
14: अच्छा
15: दोनों एक ही फिल्म में आई थी नजर.
14: मुझे तो नहीं पता भाई.
15: आपको फिर भी नहीं याद आ रहा?
14: नहीं नहीं मुझे कहाँ याद आएगा.
15: ऐसी कौन सी फिल्म है जरा सोचो.
14: मेरे पास वरदान है मुझे नहीं याद आती है ऐसी
15: चीजें. तो जरा सोचो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें एक साथ दो दो वर्ल्ड पेजेंट होल्डर्स जो है इन्होंने काम किया था और ये बॉलीवुड फिल्म है. तो अगर आपके पास कोई जवाब हो, अगर आपको लग रहा है कि पता चल गया कौन सी मूवी है रोनाल्ड, इट्स नॉट एतराज. You're on the right line, but it's not Aitraz.
14: So, BC, apna answer aur naam, ye 5599 par aap humare paas bhej sakte hain. Sunita ji, thank you so much aapke answer ke liye bhi.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 12.4 degrees temperature hai filhal Super City Auckland mein. Aaj ke mausam ke liye kaha gaya it's going to be a fine beautiful day. Aur aaj ka sunset 5:55 PM par hoga. Overnight temperature 9 degrees rahega jabki high of 16 expected hai baad mein chalkar.
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning Madness. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Puri ki puri gang ke logo. कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
1: Hello, Kia ora, good morning, namaste and welcome to Humbling Bollywood's Biggest Hits. This is The Breakfast Show with Vijay and Pooja and today is Monday 24th August.
4: स्वागत है आपका जहां कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं विद इन ऑकलैंड आउटसाइड ऑकलैंड एनीवे अराउंड द ग्लोब रोवर पर अगर आप हमारा साथ दे रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कंपनी एंड इस घंटे तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स तो होंगी सेंट्रल ऑकलैंड में एक मामला जो है ये सामने आया है जिसके बाद टू पीपल हैव बीन हॉस्पिटलाइज इसके बारे में डिटेल्स 7:30 न्यूज हेडलाइंस में हम आपको देंगे
1: और इसके साथ साथ आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा आज के आपके हॉरोस्कोप्स क्या कह रहे हैं के लिए ये जानेंगे राशि वाइब्स में प्लस हमारा फेवरेट सेगमेंट जहां पर आपके साथ सेलिब्रिटी अलार्म गेम खेलने वाले हैं और देखते हैं कि आज कितने लोग हमारे साथ इसमें जुड़ते हैं और कितने लोग आवाज पहचान पाते हैं क्योंकि बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जब हमने आपको गेस्ट करने के लिए कहा तो आज तो लोगों को काफी डिफिकल्टी हुई इनफैक्ट आई वाज जस्ट लुकिंग एट द मैसेजेस जितने भी मैसेजेस हमारे पास आए हैं उनमें से सिर्फ एक सही जवाब या दो सही जवाब आए सॉरी और बाकी सारे गलत आंसर्स
4: आई नो द मूवी
1: यू नो द मूवी नाउ क्योंकि आपने देख लिया ना जो जवाब भेजा है बाकी दो लोगों ने
4: नहीं क्योंकि इस फिल्म को लेकर काफी बातें जो है ये हुई थी बिटवीन द एक्ट्रेसेस ना
1: इज इट
4: हाँ करीना कपूर और क्या नाम है उनका
1: यू आर रॉन्ग यू गॉट द रॉन्ग मूवी नाउ ये मैं आपको बता सकती हूँ
4: किस फिल्म में दो एक्ट्रेसेस के बीच झगड़ा हुआ था
1: हाँ दैट वाज करीना कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा फिल्म ऐतराज के लिए
4: अच्छा ओके
1: बट आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे इज नॉट ऐतराज इट इज अंदाज 2003 में अंदाज आई थी और विधि एंड नितिका दीज आर द टू पीपल जिन्होंने करेक्ट गेस किया रोनाल्ड ने इनफेक्ट ऐतराज कहा था बट येस द करेक्ट आंसर फॉर टुडे इज अंदाज 2003 में आई थी मैंने क्लू के तौर पर कहा था ना कि जब ये फिल्म आई थी तो इसमें टू वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट होल्डर्स जो है इन्होंने एंट्री ली थी इस पर्टिकुलर फिल्म के साथ
4: अच्छा
1: और दैट टाइम प्रियंका चोपड़ा हैड वन मिस वर्ल्ड एंड लारा दत्ता हैड वन मिस यूनिवर्स एंड देन आफ्टर विनिंग दोज पेजेंट्स Then they came into movies.
4: Hey, मेरी सोच तो ऐश्वर्या राय बच्चन और सुष्मिता सेन से आगे बढ़ी ही नहीं थी।
1: उन्होंने कभी कोई फिल्म साथ में नहीं की है, if I'm not
4: mistaken. इसलिए मैं अटक गया ना, क्योंकि उनके I couldn't think beyond them. I just didn't think beyond them. But thank you so much आप सभी के answers के लिए. सल्लू गल्फ हबा फंगपरुआ से a very good morning. Thank you so much आपके साथ के लिए. Good morning विजय एंड पूजा जी. जय भोलेनाथ. Wishing you both a wonderful and blessed day. विमलेश एंड प्रिया न्यू प्लिमथ से. बड़े दिनों बाद आज आपका मैसेज आया है. So we hope you all are doing good. न्यू प्लिमथ में अभी एक सवाल मैं आपसे पूछूं.
1: जी पूछिए.
4: पति और पत्नी कितना प्यारा ये रिश्ता होता है ना
1: वेरी ट्रू
4: वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अब ये बताओ पति पत्नी में बड़ा कौन होता है
1: बड़ा कौन होता मतलब
4: हाँ बड़ा कौन होता है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम
1: बट किस एस्पेक्ट में बड़ा होता है उम्र में साइज में आई डोंट नो
4: जनरली
1: आई डोंट नो इसका कोई इसका कैसे कोई जवाब दे सकते कि बड़ा कौन होता है
4: जो भी हमें सुन रहा है या देख रहा है जो भी है वो इसका आंसर दे सकता है
1: I don't know the answer to this question.
4: पति और पत्नी में बड़ा कौन होता है जवाब अगर आपको पता है हर कोई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
1: एनी अदर एस्पेक्ट
4: नहीं कोई ना कोई एस्पेक्ट तो होगा तब तो जवाब
1: किस हिसाब से पूछ रहे
4: जनरली जनरली हाँ जनरली पति और पत्नी में बड़ा कौन होता है
1: इंटरेस्टिंग
4: अच्छा मैं इतना मैं आंसर भी दे देता हूं आपको आपको बताना होगा कि कैसे
1: ओके
4: पति और पत्नी में पत्नी हमेशा बड़ी होती है
1: ओके, लेकिन किस हिसाब से, किस एस्पेक्ट से, वो हमें बताना है।
4: हाँ, मैंने सवाल भी पूछा, मैंने जवाब भी दिया,
1: अल्फाज ने भी कहा पत्नी।
4: हाँ,
1: लेकिन क्यों और कैसे ये नहीं कहा उन्होंने।
4: तो अब आप बताओ कैसे ये हो सकता है। पति और पत्नी में पत्नी हमेशा बड़ी होती है, क्यों और कैसे।
1: राइट, अगर आपको जवाब पता है तो आप हमारे पास अपने आंसर्स भेज सकते हैं, बीसी स्पेस योर आंसर नेम लिखकर 5599 पर, एंड देखते हैं आप में से कितने लोग वो जवाब देते हैं जो इनको चाहिए।
4: Let's see.
1: Right. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मॉर्निंग मैडनेस की विशाल ददलानी और उनके साथियों की आवाजों में। आपके लिए आज का पहला ये गाना लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी, जो कि आई थी पिछले साल।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
2: Welcome to the world of BM and CM, Bade Miyan, the Khiladi, and CM, the Baghi.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
0: Rashi Vibes.
2: कैसा रहेगा आज का आपका दिन, ये हम आपको बताते हैं हर सुबह ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज एक बार फिर सबसे पहले मेष यानी एरीज आपके लिए कहा गया है. ऑफिस में वीक की शुरुआत काफ़ी बिजी आपके लिए होने वाली है, सो अपने माइंडसेट को पहले से आप बना लें. और साथ में किसी बड़े डील पर साइन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ये अच्छी तरह से आप देख ले, पढ़ ले, समझ ले कि व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. और इसके अलावा फैमिली से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आज पैसे जो है ये खर्च हो सकते हैं. वृष यानी टॉरस, आज ऑफिस में दिन ठीक ठाक रहेगा, सुपीरियर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा और बिजनेस प्लान्स अच्छी तरह से सोच समझ कर बनाएं. फाइनेंशियली दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, ट्राई एंड टेक बैलेंस्ड मील टुडे, वो तो हमेशा ही करना चाहिए. मिथुन यानी जेमिनी, नए क्लाइंट्स आज आपको मिल सकते हैं, मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर या मार्केटिंग में अगर आप हैं तो दिन का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. क्लैरिटी के साथ स्पष्ट बातचीत अगर आप करते हैं तो गलत फहमियाँ दूर होंगी. यह मिथुन यानी जेमिनी के लिए था. कर्क यानी कैंसर, ऑफिस में किसी के उकसावे में ना आए और बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले अभी मार्केट कैसा है इसके बारे में अच्छी तरह से आप इवेलुएट कर लें. और बहुत ज़्यादा इमोशनल अगर होंगे तो लाइफ पार्टनर के साथ आज कुछ अनबन भी आपकी हो सकती है. सिंह यानी लियो, आज ऑफिस में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बढ़ेगा, बिजी रहेंगे, इसकी वजह से हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा अपसेट हो जाए क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे आप. पैसों का फ़ायदा तो होगा आज आपको, लेकिन एक्सपेंसेस भी कुछ ज़्यादा ही रहेंगे. कन्या यानी विगो, आज काम में आप बहुत ही एक्सपर्ट रहेंगे, इससे आपको फ़ायदा होगा. कुछ पुराने क्लाइंट से नया बिजनेस आपको मिल सकता है. कमियाँ निकालने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करें, दैट वुड गिव यू बेटर रिजल्ट्स. तुला यानी लिब्रा, टीम वर्क से बड़े बड़े टारगेट्स आज आप हासिल कर सकते हैं और बिजनेस से रिलेटेड पेपर वर्क जो है एकदम अप टू डेट रखें. लव लाइफ में आज काफ़ी मिठास होगी आपके. वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, अगर आप कंसंट्रेट करके काम करते हैं तो कठिन काम भी आसानी से आप कर सकते हैं. और उसके बाद रिश्ते जो है ये आपके मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति सम्मान जो है ये रहेगा. फाइनेंशियली दिन काफ़ी मजबूत होगा आपका. धनु यानी सेजिटेरियस, नए टारगेट्स जो है ये डिसाइड करें और उन पर काम शुरू करने के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है. डिजिटल या ऑनलाइन बिजनेस में कुछ इजाफा आप देखेंगे, तेज़ी देखेंगे और पार्टनर के साथ कुछ बहुत ही खुशनुमा टाइम आज स्पेंड करने का मौका आपको मिलेगा. मकर यानी कैप्रिकॉन, पेशेंस के काम साथ काम करें, आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा. पुराने कस्टमर्स जो हैं ये आज आपको भी कुछ नया बिजनेस दे सकते हैं और फाइनेंशियली आपका भी दिन बैलेंस रहेगा. जोड़ों में या घुटनों में कुछ दर्द आज पॉसिबल है. कुंभ यानी एक्वेरियस, अगर आप किसी इनोवेटिव फील्ड में हैं तो आज काफ़ी कैपेबल आप रहेंगे. साथी के साथ मिलकर अपनी योजनाएं जो हैं ये शेयर करें अपने पार्टनर के साथ, इससे आपको उनका सपोर्ट मिलेगा और आपका इनकम भी बढ़ सकता है. काम आज कुछ ज़्यादा होगा आपके पास, इसकी वजह से टायर्ड आप फील करेंगे. एंड फाइनली मीन यानी पाइसिस, आपके क्रिएटिव कामों को काफ़ी प्रेज किया जाएगा, बिजनेस में कुछ नए कॉन्टेक्ट्स आप बनाएंगे. आज इमोशनली काफ़ी स्ट्रोंग आप फील करेंगे, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा और फाइनेंशियली भी दिन आपका बहुत ही अच्छा होगा. और जबकि दिन आपका अच्छा होगा, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आज आप सोचें कैसे आप और पैसे बचा सकते हैं. तो दिस वे योर राशि वाइब्स फॉर टुडे. और अब 18 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर.
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
3: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
4: हम
3: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
4: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
3: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
5: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
6: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
7: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
8: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
12: Sorry about that.
11: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
12: Kogan Mobile, true Aussie value.
11: Terms and conditions apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara's Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm.
14: Hit it.
15: 22 मिनट हो रहे हैं, 7 बजकर तो चलिए समय हो रहा है कि आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म हम लेकर आए। और आज की जो हमारी सेलिब्रिटी है, काफ़ी जानी मानी हस्ती है ये, और शुरुआत
2: जानी है कि मानी है,
15: दोनों है, दोनों जानी भी है मानी भी है। और शुरुआत इनकी जो थी वो बहुत बेहतरीन रही है। ऑफ कोर्स शी विड नो द एंटायर स्टोरी की कितनी डिफ़िकल्ट रही इनकी शुरुआत, बट शुरुआती दौर में जिस किसी भी प्रोजेक्ट में दिखी है ना, वो बड़े बड़े कमाल के प्रोजेक्ट्स रहे हैं।
2: अच्छा,
15: तो पहले तो इनकी आवाज़ सुनाते हैं, देखते हैं आप में से कितने लोग इनको पहचान पाते हैं आज।
16: आई रियली लव माई एक्सेस। यू वांट टू नो हु? या एक्सपोज, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस।
15: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी। ऐसा लग रहा है यू नो द फेस बट यू डोंट नो द नेम।
2: या एग्जैक्टली, आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि मुझे एक एंगल से इनका चेहरा दिख रहा है, आई कांट मेक आउट हु दैट पर्सन इज।
15: नाउ यू माइट बी एबल टू सी हर क्लियरली। स्टिल ऐसा आपको लग रहा है कि आप इनके चेहरे को जानते हैं पर इनका नाम नहीं?
2: नहीं नहीं, आई नो, आई थिंक आई नो।
15: अच्छा, यू थिंक यू नो। लेट्स सी कितने लोग इनकी आवाज से इनको पहचानते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं,
2: में भी काम किया इन्होंने।
15: पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये इंडियन ही है। हाँ। बात ही सिर्फ अंग्रेजी में कर रही है इस पर्टिकुलर क्लिप में जो हमने आपको सुनाया है। इनको हिंदी आती है, बहुत अच्छी हिंदी बोलती भी है ये, बट ये क्लिप जो हमने शेयर किया इसमें इंग्लिश में बोल रही है।
2: ओके,
15: और हमारी बातों से आपको पता भी चल गया होगा कि एक एक्ट्रेस है.
2: हाँ.
15: हमने वैसे डायरेक्टली तो नहीं बोला बट हाँ, पता चल ही जाता है ना जिस तरह से हम बोल देते चीजें. तो एक और बार आपको सुना रहे इनकी आवाज, अच्छे से सुनिए. एंड ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी.
16: आई रियली लव माई एक्सेस. यू वांट टू नो हू? या एक्सपोज, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस.
15: तो कौन है ये, किनकी आवाज आज हमने आपको सुनाई सेलिब्रिटी अलार्म में? अगर आपको पता चल चुका है तो जल्दी से बी सी लिखे, फिर उसके बाद अपना आंसर लिखे और भेज दे हमारे पास 55599.
2: ये कौन है, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इन्होंने जो बोला है वो लगा.
15: हाँ, काफी इंटरेस्टिंग चीज
2: जो बात इन्होंने कही है ना. That was really nice. Good one.
15: Very good one. Yeah. Sunny, thank you for being the first one. कोशिश करने के लिए आपने लिखा है कोंकणा सेन. Unfortunately, ये वो नहीं है. उनकी आवाज नहीं है आज.
2: तो कोशिश कर सकते हैं.
14: Hollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
18: मैं लाऊं अपना A game.
14: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: हेडलाइंस। सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड के ताकापुना में शनिवार की रात युथ्स के एक ग्रुप ने दो टीनेज लड़कियों पर वायलेंट असोल्ट किया और उनका सामान चुरा लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों ने असोल्ट से पहले लगभग एक घंटे उस ग्रुप के साथ बिताया था, जिसके बाद उन पर हमला करके उन्हें अलग कर दिया गया। विक्टिम्स द्वारा बस स्टेशन पर पहचान किए जाने के बाद पुलिस ने 12 से 17 साल के आरोपियों की पहचान कर ली है और लीगल एक्शन की तैयारी कर रही है। सेंट्रल ऑकलैंड के वेलेस्ली स्ट्रीट ईस्ट और क्वीन स्ट्रीट के इंटरसेक्शन पर के पास हुई आपस की लड़ाई के बाद पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इस हिंसा के दौरान 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें चाकू लगने के बाद इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बाकी 2 लोगों को कस्टडी में लेकर चार्जेस लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सप्ताहांत ऑल ब्लैक्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत जो है ये हासिल की और उसके बाद अब टीम इस सप्ताहांत के मैच की तैयारियां कर रही है। उधर एनपीसी के कई मैचेस सप्ताहांत खेले गए, इनके परिणाम इस तरह से रहे। ओटागो 61, वेलिंगटन 22। वाइकाटो की जीत काउंटीज मैनुकाउट के खिलाफ 45-12 से हुई। बेफ प्लेंटी ने तरनाकी को 28-24 से हराया। शनिवार को टेस्मिन की जीत साउथलैंड के खिलाफ 46-17 से हुई, जबकि नॉर्थ हार्बर ने ऑकलैंड को 27-19 से हराया। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: Your holiday boarding pass could be waiting. Keep listening for the next hum boarding call and you could be flying to Vanuatu with 2 return air tickets from Solomon Airlines and $1,000 spending money.

0: Adidas All Black supporters gear on DoorDash. And you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
1: The Thomasons sit down to do advertising for Thomason Does Advertising.
2: Here you go.
3: Thank you.
4: I reckon we should do some advertising.
3: Great, I like doing advertising.
4: I love doing advertising.
3: What about?
4: Thomason Does Advertising.
3: And what should it say?
4: Thomason Does Advertising.
3: Nice, I like that. Anything else? Should we say we do good advertising?
4: Nah, keep it simple, I reckon. Thomason
5: Does Advertising. Hey, Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
8: Zero with an X.
9: You started your business for a reason. Remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search X-E-R-O today.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, hamari koi branch nahi hai.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: Birthday greetings.
13: Iska birthday, bhai?
14: Mera bhi birthday hai. Chalo, line mein aa jao.
13: Happy birthday to you.
15: आज है मंडे 24th of August एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको हम विश कर रहे हैं. अगर आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से. सबसे पहले तो आज गीरा शाह जी है वर्कवर्स में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको वेरी हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम विश कर रहे हैं हमारी पूरी की पूरी टीम की ओर से और ऑफकोर्स आपके सभी अपनों की ओर से. आज ये दिन बहुत बहुत बार मुबारक हो आपको.
16: और आपके साथ आज अहिल है पोकेनो में अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. बहुत सारी शुभकामनाएं और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है. मम्मी हैं, पापा हैं और आयशा जीजी हैं और जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं सभी आज अहिल आपको याद कर रहे हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. हमारी ओर से भी ये दिन आपको शुभ और मुबारक हो.

0: true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: फिलहाल चलिए आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम जबकि लेकर आ रहे हैं. इधर हमने आपसे आज का सेलिब्रिटी अलार्म जो है ये पूछा, आवाज़ आपको सुनाई और फिर वी वर लाइक कि चलो आप में से कितने लोग गेस कर पाते हैं. तो आंसर्स आए ना, अगर आप बता सके कितने लोगों ने हमारे पास अभी तक मैसेजेस जो ये भेजे हैं.
2: आज सनी ने सबसे पहले ट्राई किया, उसके बाद शिम आपने अपना जवाब भेजा है, प्रिया है, विकी मनु रेवस है, साथ में मोनिशा, चार पाँच लोगों ने ही आज अटेम्प्ट किया है कि सेलिब्रिटी जो है उनको पहचानने की कोशिश करें.
1: तो आवाज जो हमने आपको सुनाई थी सबसे पहले वो आपको बता दें, ये आवाज थी नन अदर देन शेफाली शाह की. शेफाली शाह एक जानी मानी एक्ट्रेस है और इन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन फिल्मों से पहले इनकी शुरुआत हुई थी टेलीविजन इंडस्ट्री में, जहाँ पर इन्होंने अपना एक्टिंग करियर जो है ये इनफैक्ट देखा जाए तो ऐसे शुरू किया था विद प्लेज. जब ये स्कूल कॉलेज में थी तब वहाँ पर ये काफ़ी प्लेज एंड ड्रामास वगैरह जो किया करती थी. फिर उसके बाद में चलकर इन्होंने थिएटर में काम किया. थिएटर में काम करने के बाद शी मूव्ड ऑन टू टेलीविजन, जहाँ पर इन्होंने कई तरह के डिफरेंट डिफरेंट शोज जो है ये काम किए हैं इसमें. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरीज जिसमें नज़र आई थी वॉज तारा जी टीवी पर, और बनेगी अपनी बात. बनेगी अपनी बात इज़ वन ऑफ दोज पॉपुलर शोज दैट आई एक्चुअली रिमेंबर. और फिर उसके बाद चलकर इनको और भी कई फिल्मों में देखा गया. सत्या फिल्म याद है आपको, उसमें भी थी ये.
2: फिल्म मैंने नहीं
1: मिलती है गाने में.
2: हाँ, नहीं मैंने पिक्चर तो नहीं देखी बट आई रिमेंबर फिल्म सत्या.
1: तो इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है एंड रिसेंट टाइम में शी हैज़ बीन गिवन द ड्यू क्रेडिट

0: for her amazing work that she has done. इन्होंने चाहे Delhi Crimes web series में काम किया हो या फिर इन्होंने दिल धड़कने दो movie में प्रियंका चोपड़ा रणवीर सिंह की मदर का किरदार play किया, but she has done everything perfectly well. And Darlings जो इनकी last I think I remember, I don't know उसके बाद अगर कोई project इन्होंने की हो, शायद की भी हो, but I don't remember. आलिया भट्ट के साथ इन्होंने उसमें काम किया था जिसमें आलिया भट्ट की माँ का किरदार play किया था इन्होंने. So she's played some interesting characters. और शिफाली शाह आज की हमारी सेलिब्रिटी रही सेलिब्रिटी अलार्म में.
1: फिलहाल 20 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. हमने कहा कि बहुत सारे इनाम हम आपको दे रहे हैं. आपको तो हमने बता ही दिया कि रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातू विद $1,000 स्पेंडिंग मनी विद सोलोमन एयरलाइंस, ये भी जीतने का मौका. फादर्स डे कॉम्पिटिशन के बारे में हमने आपको बता दिया जहाँ पर कैश इनाम आप जीत सकते हैं. रक्षाबंधन भी है,
0: राइट?
1: इसी फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना.
0: हाँ, इसी फ्राइडे 28 को. एक और जहाँ पर आप यू नो सोशल मीडिया कॉम्पिटिशन में जाकर पार्ट ले सकते हैं और उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जीत सके $300 कैश. क्योंकि सोशल मीडिया में क्या है, हम हमारा जो फेसबुक पेज है हम 104.2 FM, वहाँ पर आपको फीचर्ड फोल्डर में एक पोस्ट दिखेगा और रक्षाबंधन का ये पोस्ट जिसके कमेंट सेक्शन में आपको किसी एक ऑब्जेक्ट, कोई एक ऐसी चीज़ हो जो शायद आपकी भाई या बहन ने आपको दी हो, एंड इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल मेमोरी फॉर योर रिलेशनशिप जो आप अपने भाई या बहन के साथ शेयर करते हैं, और वो चीज़ आपने आज तक संभाल कर रखी है, उसकी एक फ़ोटो जो है इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आपको डालनी है और 2 या 3 लाइन में बताना है कि क्यों ये चीज़ आपके लिए इतनी स्पेशल है, क्या मेमोरी अटैच्ड है इससे, और साथ में अपने भाई या बहन को टैग करना है उसी कमेंट में. Once you do this, you'll be part of this draw जहाँ पर $300 कैश जीतने का मौका. पर याद रहे ये तीनों conditions आपको meet करने होंगे और हम 104.2 FM हमारा Facebook page है ये visit करना होगा to find that post.
1: And अभी तक इतने सारे opportunities आपको मिली but कितने सही कितने गलत वो तो छोड़ दो, सिर्फ 9 ही लोगों ने किसको एक चीज की फोटो शेयर की और अपनी कहानी जो है ये बताई है.
0: तो आप भी अपना लक ट्राई कर सकते हैं. इफ यू गॉट यू नो समथिंग्स टू शेयर, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की फोटो वगैरह जो अगर आपको शेयर करनी है तो वो आप जरूर कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इस गाने के बाद हम आपको मौका देंगे हमारे साथ ओनिया कॉम्पिटिशन सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू इसमें पार्ट लेने का.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: अभी 12 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. हमने कहा था रक्षाबंधन कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका आपको हम देने वाले हैं, जहां कैश इनाम आप जीत सकते हैं. आज क्वेश्चन डायरेक्टली हम अभी ही आपको बता रहे हैं, जब तक आप कॉल कर रहे हैं हमारे पास. आज आपको अपने भाई या बहन का परफॉर्मेंस रिव्यू करना है बेस्ड ऑन देयर राखी गिफ्ट्स जो बीते सालों में उन्होंने आपको दिया है.
3: रियली यू वांट टू डू
2: दैट? या कितना टाइम एंड एफर्ट लगाया, कितने जेनरस वो रहे हैं, या फिर बस ऐसे ही एनवलप में नोट डालकर आपको दे दिया. इट डजंट मीन कि ही और शी लव्स यू एनी लेस या प्यार कम है. इट जस्ट मीन कि जस्ट हम जानना चाहते हैं फन कॉन्टेक्स्ट, क्या लगता है आपको कितना अच्छा आपके भाई या बहन का परफॉर्मेंस है when it comes to giving रक्षाबंधन रक्षाबंधन का तोहफा.
3: हाँ, राइट. तो 0800 हम 0800-4866 पर आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं और आज का सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू इसमें आप पार्ट ले सकते हैं. टोटल ऑफ $500 कैश जो है ये जीतने का मौका, जो दो लकी लोग जो है जीत सकते हैं, यानी $250 ईच. इसका ड्रो इसी फ्राइडे को हो जाएगा, मतलब कुछ ही दिन जो है ये बाकी है ड्रो होने में. आज तो मंडे, चलो
2: ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थ्री डेज.
3: तो अगर आपने अभी तक हमारे रक्षाबंधन सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू में पार्ट नहीं लिया है, यू विल मिस आउट ऑन दिस जस्ट इन केस इफ यू डोंट इवन मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी नाउ.
2: तो लाइन हम खोल चुके हैं, टाइम बहुत ही कम है क्योंकि थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट भी आना है. तो अभी ही आप जल्दी से हमारे पास कॉल करें. 0800-004866 पर आपका स्वागत है. गुड मॉर्निंग,
3: कैसी हो परविंदर?
4: गुड मॉर्निंग, थोड़ी तबीयत खराब
3: होगी. अच्छा यार, सबकी तबीयत बहुत खराब हो रही है. लुक आफ्टर योर सेल्फ बिकॉज दिस फ्लू इज क्वाइट बैड.
2: That was from Dr. Pooja Kumar.
3: यार, but experience से बता रही हूँ ना, आसपास लोगों को बीमार होता हुआ देख रही हूँ मैं भी.
2: बीमार
3: होता हुआ देख रही हूँ मैं भी.
2: अच्छा चलो, परविंदर आपके कितने भाई हैं?
4: एक ही है.
2: एक ही? आपसे बड़ा है छोटा है?
4: मेरे से बड़ा है.
2: अच्छा, आपसे बड़ा है. तो बताइए, बीते सालों में कितना एफर्ट डाला उन्होंने आपको रक्षाबंधन के मौके पर गिफ्ट देने के लिए? How was his performance?
4: Honestly speaking, रक्षाबंधन पे as such हम लोग कुछ नहीं करते. पर जब भी मैं इंडिया जाती हूँ, वो ऐसे भर भर के भेजता है मेरे को, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा. अभी तो जैसे मेरे बेटे को पहली बार देखा था उसने, तो उसके लिए भी जैसे वो कुछ भी टॉय हाथ लगाए, इतने कपड़े भी और ये सब वगैरह भी है ना, मतलब कोई बात नहीं, जितने दिन खेलेगा खेलेगा, पर ये कौन सा बार बार आता है ना.
2: तो
4: मतलब उसका परफॉर्मेंस मैं कहूंगी कि मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मैं कहूंगी, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज है वो सब कहते हैं कि मंजीत जैसा बंदा नहीं है.
3: अरे वाह,
2: अच्छा,
4: वो टॉप लेवल का बंदा है.
3: क्या बात
4: जैसे
3: है.
4: कुछ भी मेरे बेटे का बर्थडे और लोहड़ी सेम दिन होता है, तो हमने नहीं सेलिब्रेट किया था यहाँ पे क्योंकि एक तो हम लोग अकेले थे और मेरी बड़ी मैसिव सर्जरी हुई थी. मैंने सोचा था कि जब ये थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला हो जाएगा तब करेंगे, तो हमने अभी गए थे इंडिया की लोहड़ी और बर्थडे करने के लिए. तो बाप रे, पूरा मतलब मेरी शादी पिंड में हुई है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, सारा पिंड ऐसा देख रहा था कि परविंदर का भाई आया है, वो गिफ्ट भर भर के लाया.
3: क्या बात है. तो काफी अच्छे नंबर्स देंगे आप अपने भाई को व्हेन इट कम्स टू गिफ्ट्स. थैंक यू सो मच परविंदर, थैंक यू आपके कॉल के लिए. हैव अ वंडरफुल डे. तो चली गई है, बट थैंक यू सो मच हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए. ये मौका तो परविंदर के हाथ लग गया, लेकिन अगली मौके के लिए आप भी तैयार रहिएगा.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में टेम्परेचर 12.3 डिग्रीज है फिलहाल. हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है. बाद में चलकर ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर आज का रहेगा. मौसम के लिए सुबह से बताया जाए है फाइन वेदर, बट लिटिल बिट ऑफ मॉर्निंग शावर्स आज हम जरूर एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट
2: 5:55 PM
1: पर
3: होगा. Bring home the fortune and Harrington Living at Bedzaras Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स. वैसे मैंडी का गुड मॉर्निंग मैसेज सुबह सुबह हमारे पास पहुंच चुका है. थैंक यू सो मच मैंडी हमें याद करने के लिए और आपके गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए भी. साथ में एक और एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, माई सिस्टर इज माई बिगेस्ट गिफ्ट. हर लव एंड केयर टुवर्ड्स मी इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट आई हैव एवर हैड एंड इट डजंट मैटर बट शी ऑलवेज गिव्स मी गिफ्ट्स एंड द बॉन्ड बिटवीन अस इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. रुवेन है फ्रॉम पापाटोई टोई, इन्होंने अपना मैसेज भेजा है. थैंक यू सो मच रुवेन आपके मैसेज के लिए. बातें कर रहे हैं ट्रेंड पेट्रोल की, तो क्या ट्रेंड कर रहा है फिलहाल. आपको याद होगा हमने कुछ दिनों पहले शेयर किया था ये डिटेल, जहां पर यू हैड स्पोकन अबाउट द फैक्ट कि आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड जो है कैसे चेंज हो रहा है. आजकल मैसिव शिफ्ट देखा गया है टुवर्ड्स रॉ एंड अनपॉलिश्ड कॉन्टेंट, जहां पर क्रिएटर्स और ब्रांड्स दोनों ही प्रिफर करते हैं एकदम यू नो रियलिटी टीवी स्टाइल एडिटिंग, जो काफी कैजुअल हो, रिलेटेबल हो, फास्ट हो, ना कि हाई प्रोडक्शन परफेक्शन के लिए जैसे कि पहले होता था. और साथ में कंटेंट वाइज भी कहा गया कि देयर इज अ बिग शिफ्ट, जहां पर लोग अभी इम्पोर्टेंट ये है कि वो रियल चीज़ें जो है ये देखें. कुछ भी AI कंटेंट या AI जनरेटेड द्वारा जो चीज़ें होती हैं जो पहले बहुत ज़्यादा चलती थी, अभी शायद उसे इतना तूल नहीं मिल रहा है ना.
5: हो सकता है हाँ, क्योंकि थिंग्स चेंज ओवर टाइम, लोगों का जो नज़रिया है. सी आप बॉलीवुड को ही देख लो, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक टाइम ऐसा था द एक्टर्स नीडेड टू बी वेरी पॉलिश्ड, लुकिंग गुड, रफ एंड टफ, चेहरे पर कोई मार्क, यू नो वो सारी चीजें,
1: साइंस ऑफ एजिंग नहीं दिखा सकते.
5: अभी आप देखो जिस जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट किया जा रहा है, यू नो नेचुरल ट्रूथ and all those things. So I think similar trend social media par bhi hai.
1: And I think another important thing here, jab aapne Bollywood mention kiya hai, is ki you know, जब किसी भी इंडस्ट्री के लोग जहाँ पर उनको वो एक्सेसिबल है ये चीज़ें तो वो कर सकते हैं, लाइक सर्जरीज एंड ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरीज, फिलर्स वगैरह, इसका इस्तेमाल कराना. बॉलीवुड इंडस्ट्री कम्स इन टू हाईलाइट बिकॉज वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लोगों के लुक्स के हिसाब से उनका ज़्यादा काम चलता है. और अ लॉट ऑफ पीपल गेट दैट डन, अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री गेट वर्क डन ऑन देयर फेस, ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर स्किन कलर, लाइक तरह तरह की चीज़ें. और पहले शायद ओपनली इसके बारे में इतनी बातें नहीं होती थी, पर अब लोग उसके बारे में भी ओपनली काफ़ी बातें करने लगे ना. इफ़ देयर गेटिंग अ नोज डन, देयर लिप्स डन, कुछ फिलर्स करा रहे हैं, अपना फेस लिफ्ट करा रहे हैं, तो देन दे आर काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट. तो एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा ओपन होकर अब ये सारे कन्वर्सेशन हो रहे हैं. कुछ मामलों में लोगों को डर तो लगता है दैट दे विल बी ट्रोल्ड फॉर इट, बट कुछ मामलों में लोग ये नहीं परवाह करते कि ट्रोल होगा तो होगा, चलो रहने दो, बट एटलीस्ट वी आर स्पीकिंग द ट्रुथ, ये चीज़ उनको ज़्यादा मैटर करती है. दूसरी ओर टॉकिंग अबाउट गूगल ट्रेंड्स, तो न्यूजीलैंड में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो लोगों ने अभी तक गूगल किया है न्यूजीलैंड इन द पास्ट समवट आवर्स, जर्मी क्लार्कसन ये नाम.
5: अच्छा, आई थिंक वीकेंड पर मैं इनका कोई प्रोग्राम जो है कहीं देख रहा था, बट आई कैन नॉट रिमेम्बर कब और कहाँ. इट वॉज समथिंग टू डू विद फार्म और समथिंग, या
1: फार्म.
5: जर्मी क्लार्कसन.
1: ओके, इंटरेस्टिंग. तो ये नाम लोगों ने न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा गूगल किया है पिछले 11 से 12 घंटों के बीच में, ऐसा बताया गया है. और उसके साथ हॉस्पिटल, ये शब्द इसे काफ़ी गूगल किया गया है. साथ ही साथ F1 रिजल्ट्स, ये काफ़ी ज़्यादा गूगल किया गया है. और उसके अलावा मैथ्यू कार्ली, ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा गूगल किया गया है इन न्यूजीलैंड पर्टिकुलरली, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं.
5: सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर ट्रेंडिंग इन न्यूजीलैंड राइट नाउ. और थोड़ी देर बाद व्हाट्स योर टेक भी हम आपके लिए लेकर आएंगे. ये वो घंटा है जब हम बोर्डिंग कोल जो है ये अनाउंस होगा. लिंक है आपके पास ताकि आप जल्दी से एंटर कर दे बोर्ड नाउ जैसे ही ये अनाउंस हो एंड यू सिक्योर योर एंट्री इनटू द ड्रॉ जहां पर आप जीत सकते हैं ए रिटर्न एयर टिकट या टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु फ्लाइंग सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. याद रखें सोलोमन एयरलाइंस अब हफ्ते में चार बार नॉन स्टॉप ऑकलैंड टू वनुआतु फ्लाई करता है. flysolomons.com आप विजिट कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस रोवर पर आपको मिल जाएंगे. अगर अभी तक आपने एंटर नहीं किया है यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच. बस BC लिखकर 5599 पर भेज दो. इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा आपको.
1: और ध्यान से सुनो बोर्डिंग कॉल कब अनाउंस होता है.
0: लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: प्राणप्रिय

0: समझ है? हाँ
1: बढ़िया।
2: Mornings made better.
3: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.
4: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
6: ये गलत बोल दिया यार.
5: और पहनता भी नहीं उसको.
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया
6: अभी. ब्रांड हो गया ना.
5: रुस्बे के बाल लगे उस.
4: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
8: If you're at the finish stage of a build, Bunnings Trade is here to help. Shop our wide range of paint and accessories, lighting and final fixtures from leading brands. Call 134 Trade on 0800 134 872 to get a quick quote today at Bunnings Trade.
9: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester home decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full price products. Excludes clearance. See website for details.
10: TradeDepot.co.nz.
11: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz.
12: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
13: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
14: Get the Skinny!
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
16: What's your take?
17: What's your take? Monday morning, अब हम बातें करने जा रहे हैं. अच्छी तरह से सुने.
18: Before what's your take, if you don't mind.
17: I have.
18: नहीं, बख्तियार ने मैसेज किया था, तो I thought why not let's address that as well. इन्होंने मैसेज किया कि गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, फ्रॉम बख्तियार, आई कांट सी द बोर्डिंग कॉल ऑन रोवर ऐप टुडे. तो बख्तियार, आपको बता दें, वी जस्ट हैड गॉन बैक एंड क्रॉस चेक रोवर ऐप पर, जहाँ पर आपको बोर्डिंग कॉल एंटर करना है वो है अवेलेबल. इट्स देयर, इट्स स्टिल देयर और इट्स विजिबल टू अस, सो इट मींस कि वो अवेलेबल है बाकियों के लिए भी. तो आप क्या कीजिए, अगर आपको लिंक चाहिए जहाँ पर आप जाकर बोर्ड नाउ टाइप कर फिर सबमिट करेंगे, ताकि आप भी यू नो हमारा हम बोर्डिंग कॉल इसके ड्रो में शामिल हो जाए टू विन टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुवातु एंड $1,000 स्पेंडिंग मनी. तो इसके लिए आप BC लिख दें, यानी बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म लिख दे, BC लिख कर आप 5599 पर भेज दीजिए और लिंक पेज जो है ये हम आपको डायरेक्टली सेंड कर देंगे. सो दैट जब आप रोवर ऐप ओपन करें आपको भटकना ना पड़े, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक, स्ट्रेट अवे आपको जो कॉम्पिटिशन पेज तक है वहां तक पहुंचा दिया जाएगा.
17: यू गो देयर एंड सिंपल बोर्ड नाउ एंटर कर दे, जो टैब आपके लिए ओपन होगा एंड हिट सबमिट. टर्म्स एंड कंडीशन से भी आपको अग्री करना पड़ेगा. और नॉट इवन बख्तियार ही नहीं, आप में से कोई भी है जो फिलहाल टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनुवातु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी ये आप जीतना चाहते हैं, BC, एंड रिमेम्बर B और C के बीच में कोई स्पेस नहीं देना है, इट्स जस्ट together.
18: Yeah, both the letters together. No spaces at all. Yaad rahe hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Aapke liye lekar aate hain. Visit flysolomons.com, flysolomons.com for details and terms and conditions do apply. Jiske liye aap hum.over.nz bhi visit kar sakte hain.
17: Aaj what's your take mein jo ek ambition audit hum karne ja rahe hain.
18: Ji.
17: ये जो एम्बिशियस होना है, हर कोई एम्बिशियस होता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, कोई एक्सेप्शन नहीं. हर किसी के पास कुछ ना कुछ होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं. और कोई ये जो एंडलेस एम्बिशंस हैं, आज हम जानना चाहते हैं इज इट रेसिपी फॉर सक्सेस या गारंटी टिकट टू बर्नआउट.
18: क्या कौन सा शब्द बोला था, कौन सा एम्बिशियस?
17: Ambitious होना है अगर.
18: नहीं नहीं, there was a word you just said.
17: I can't remember. तो बोल दिया मैंने ना.
18: Okay okay.
17: ये endless.
18: Endless ambitious.
17: हाँ, हमेशा खत्म नहीं होता ना.
18: आपका ambitious होना खत्म नहीं होता.
17: हाँ, क्या ये recipe है for success या फिर guaranteed ticket है to burnout?
18: Okay.
17: अभी मैं आपको बताऊं, ग्लोबल बर्न आउट लीडर मैकेंसी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने ये दिखाया है एक रिसर्च में कि 59% ऑफ इंडियन प्रोफेशनल्स रिपोर्ट सिम्टम्स ऑफ वर्कप्लेस बर्न आउट, द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड.
18: वाओ.
17: और हाई कॉस्ट ऑफ हसल, अगर आप समझना चाहें, एक और सर्वे किया गया जिसमें हाईलाइट हुआ दैट ओवरवर्क एंड मेंटल हेल्थ स्ट्रेन ये इंडियन बिजनेसेस को कॉस्ट करता है एनुअली $14 billion ड्यू टू स्ट्रेस, लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई टर्नओवर. नए जो जनरेशनल स्टडीज हैं ये एक स्प्लिट दिखा रहे हैं.
18: राइट.
17: ओल्डर जनरेशन्स जो है ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं स्टेबिलिटी और ट्रेडिशनल स्टेटस. यंगर इंडियंस आर प्रायोरिटाइजिंग मेंटल वेलबींग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड ओवर जो एंडलेस कॉर्पोरेट लेडर क्लाइंबिंग है ना, कि आप एक स्टेप पर आगे, अब नेक्स्ट जाना है, अब नेक्स्ट जाना है, ऊपर ऊपर जाना है. तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आर यू स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस or just running on a treadmill that never stops?
18: Right. Oh, 800-00. Oh, sorry.
17: Is settling for a comfortable, quiet life? अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी peaceful हो, जो कुछ है, I'm happy with it. क्या इसे हमारी community में lack of ambition के रूप से देखा जाता है?
18: Probably yes, I would say.
17: And how do you know when to push harder?
18: And when to stop?
17: And when to say I have enough?
18: Okay. इंटरेस्टिंग. सो अगर आपके पास इस पूरे सिनारियो में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट बिकॉज वी टॉक अबाउट दिस कंट्री, जहाँ पर हम जब भी बातें करते हैं वी मेक श्योर कि ये एक लाइन जो हमने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना है कि इस देश में घर चलाना सिर्फ किसी एक बक्के बस की बात नहीं है. इफ दे इट्स बेसिकली इफ देर इज अ कपल लिविंग टुगेदर हु हैव टू लुक आफ्टर अ फैमिली, तो दोनों का काम करना जरूरी है. काम करना एज इन घर के बाहर जाकर इनकम कमाना, दैट्स व्हाट वी टॉकिंग अबाउट. घर का काम भी इक्वली बांटना जरूरी
17: होता है,
18: बट वी टॉकिंग अबाउट इनकम कमाना. एंड व्हाई वी से दैट, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव ऑन वन पर्सन इनकम इन दिस पर्टिकुलर कंट्री. सो जब हम इस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, हम सब अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जानते हैं कि व्हाट वी आर ऑल गोइंग थ्रू, एंड इस हिसाब से क्या आपको लगता है कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आप चलते रहना चाहते हैं, बढ़ते रहना चाहते हैं ना. गुड मॉर्निंग सपना, क्या कहना है आपका इसके बारे में?
1: पूजा रोशनी बात करेगी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग विजय भाई.
17: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सपना
18: जी. रोशनी आप बताइए, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपका क्या कहना है इसके बारे में.
1: एक्चुअली मुझे एम्बिशन के बारे में बात करनी थी, बिकॉज रिसेंटली आई हैव रेड दिस प्ले एंड आई थिंक इट वेरी वेल डेमोंस्ट्रेट्स कि एम्बिशन क्या कर सकता है पर पर्सन. सो मैंने मैकबेथ पढ़ी थी बाय विलियम शेक्सपियर एंड उसके आई थिंक में एवरीवन जस्ट फिनिशेस जो वो कर रहा था मैकबेथ अपने लिए, अपने एम्बिशन से ड्रिवन था. He lost everything on the way. And I think I reflected from that and just, I learned ki ambition just leads over to burnout.
18: सॉरी रोशनी, क्या आपने लास्ट में जो बोला वो समझ में नहीं आया क्लियरली. एम्बिशन क्या बोला आपने लास्ट में? last line that you had said?
1: It leads to burnout.
18: Acha, over ambitious hona ki ambitious hona?
1: Over ambitious mostly, but zyada ambition nahi karni chahiye matlab.
18: Okay, it leads to burnout. That's what you have to say.
1: Yep.
18: Okay, thank you so much. Thank you हमारे पास कॉल करने के लिए. एक किताब पढ़ी, उस किताब से एक कहानी इन्होंने जानी और उस कहानी से ये सीख इनको अभी मिल गई है. So it's a good thing, you know, कि ऐसी जो सीख होती है, जो lessons हम life में चाहते हैं, ऐसे experiences से भी मिल जाते हैं, ताकि आप पहले से prepared रहें, plan कर सकें ना अच्छे से, how to execute things in your life.
17: Exactly.
18: Good morning. Hello, good morning.
7: Can you hear me?
18: जी जी जी बोलिए.
7: गुड मॉर्निंग. बहुत अच्छे टॉपिक है, स्पेशली जब हम सभी अभी काम पे जा रहे हैं अपना ambition पूरा करने के लिए.
18: जी बिल्कुल.
7: आई थिंक जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को डिफ्रेंशिएट करता है वो एम्बिशन ही है, कि अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है उसके लिए तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, राइट? उनका कोई गोल ही नहीं है वो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. बट कहाँ पर रुकना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक इन माई यंग इयर्स आई वाज सो एम्बिशियस, आई वुड डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग, तब ये बर्न आउट इतना फील नहीं होता है. तो व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट द ओल्डर जनरेशन, जो थोड़ा अपने 40s में थे, वो चीज थे, मैं कहते क्या है इनका कोई मकसद ही नहीं जिंदगी में. नो इट यूज टू अनोय मी कि क्यों एम्बिशियस नहीं है ये, राइट?
18: जी.
7: और ऐसा भी होता है, आई थिंक इंडियंस में थोड़ा इनबिल्ड होता है, स्पेशली जब इंडिया से आते हैं, कि वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन है, अगर आप स्टडी भी कर रहे हो तो 99.99% भी नॉट गुड इनफ. तो आपको बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना ही पड़ता है. तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जब मेरी मम्मा यहाँ पर काम कर रहे थे, तो एक कंपनी में काम करते थे जहाँ पर सभी गोरे थे, तो वो ऐसे दो दो दो उनका जो टारगेट था वो आराम से काम करते थे. तभी थोड़ा इन्फ्लक्स ऑफ इंडियंस आया, तो उन्होंने देखा कि दो तो मैं एक मिनट में कर दूंगा, तो उन्होंने आके दस दस करना शुरू कर दिया. तो कंपनी ने सोचा कि अरे ये तो पहले दो दो कर रहे थे, ये दो लोग तो दस दस कर रहे हैं. उन्होंने आधे लोगों को हटाया, टारगेट ऊपर किया. तो दैट्स अनदर थिंग इज कि अगर आप दो के बजाय तीन भी करते, चार भी करते, तो सभी इंजॉय कर पाते, पर उन्होंने सीधा दो से दस करके वो पूरा ही स्केड्यूल खराब कर दिया, राइट?
17: पूरा सिस्टम हिला दिया.
7: पूरा सिस्टम हिला दिया. तो ना अभी जो नहीं कर पा रहे थे फिर वो उनके लिए ट्रबल हो गया. तो अभी कंपनी और बोला अगर दस कर सकते हो तो फिर आप बारह भी कर सकते हो, पंद्रह भी कर सकते हो. तो जिन लोगों ने स्टार्ट किया वो ही बर्न आउट हो गए बाद में.
18: Obviously. Understandable.
17: Thank you so much. Thank you.
18: आपके कॉल के लिए,
17: राय जो है ये शेयर करने के लिए.
18: ऐसा लगा पहली बार इनसे बात हुई ना.
17: Yeah.
18: I feel so. But यार very nicely said. एक चीज तो उन्होंने कही कि जब ये एक सर्टेन एज में थी तो उस टाइम पर इनका एम्बिशन जो है ये एम्बिशियस होना, दैट ड्राइव मिलता था इनको ना कि हाँ ये भी करना है, ये भी हासिल करना है लाइफ में. एंड देन स्लोली पर्सपेक्टिव शायद इनका थोड़ा चेंज हुआ.
17: आई थिंक वन पॉइंट जो जिस पर हमें गौर करना भी जरूरी होता है इस चीज में इज कंपैरिजन,
18: राइट?
17: यू नो कभी कभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग है या कभी कभी हम ही ऐसे गए, अरे तुम्हारी उम्र की जब मैं था
18: तो
17: मैंने ये कर लिया था, मैंने ये अचीव कर लिया था, मैंने ये कर लिया था, ये कर. आजकल के बच्चों में तो कोई एम्बिशन ही नहीं है, दिस एंड दैट एंड और भी बातें होती.
18: सिचुएशन डिफरेंट होता है ना, कई साल पहले हालात डिफरेंट थे,
17: वो तो पता है ना.
18: बट दैट्स व्हाट वी ऑल नीड टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स.
17: This is the fact of the matter. ये होता है.
18: Right.
17: अब तो वक्त नहीं है कॉल्स लेने के लिए. आप चाहें तो 5599 पर टेक्स्ट हमें जरूर कर सकते हैं. और इतना मैं आपको बता दूं हम बोर्डिंग कॉल के बारे में. लास्ट वीक हमने बताया था दो ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने हर एक
18: कॉल पर अपना जो एंट्री सबमिट किया.
17: But going into the second week, we have one person.
18: Oh, the other person dropped out.
17: Yes, एक person ऐसे हैं जिन्होंने एक भी बोर्डिंग कॉल अभी तक मिस नहीं किया है.
18: मतलब जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. एनीवेज, आज का हमारा व्हाट्सएप एक टॉपिक जिस पर अपना कंट्रीब्यूशन देना है. अगर आपको इफ यू हर्ड द टॉपिक तो आप 5599 पर टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं. थोड़ी देर बाद कुछ और भी शेयर करेंगे, बट बिफोर वी मूव ऑन आईड रियली लाइक टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा आपसे बातें करूँ इसके बारे में. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस टॉपिक कि एम्बिशियस होना.
17: यू हैव टू बी एम्बिशियस इन लाइफ,
18: राइट?
17: बट यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन
18: कहाँ पर आपको,
17: कि कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी देना है. और एम्बिशियस होने का मतलब ये नहीं है कि यू गो एंड डू समथिंग दैट यू डोंट इवन लाइक. Be ambitious about things that you love in life.
18: That you're passionate for.
17: हाँ, do things that you love, that you enjoy. आप enjoy भी करेंगे, entertainment भी होगा, आपको burnout भी नहीं होगा, and आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको रुकना है.
18: And on the other hand, I'd also like to say कि एक और एक line आपने बोली थी कि हमारी community में जब जो लोग कम ambitious होते हैं, शायद उनको एक certain
17: failure के रूप में देखा जाता है.
18: हाँ, failures के रूप में देखा जाता है. But I would like to say यार, अगर आप इस इमोशन को शेयर करते, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु शेयर्स दिस इमोशन. आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस पर्सन. मुझे किसी भी कंपनी का सुपरवाइजर नहीं बनना, मैनेजर नहीं बनना, मुझे यू नो सीईओ नहीं बनना. आई एम हैप्पी वे आई एम. आई एम हैप्पी विद माई ग्रोथ. मतलब जब मैंने काम करना शुरू किया, वे एवर आई वॉज, आई हैव बीन वेरी पेशेंट एज फार एज वर्किंग लाइफ इज कंसर्न. एंड आई हैव नोटिस दिस अबाउट माई सेल्फ कि मैं बहुत पेशेंटली मैंने ये सब कुछ शुरू किया. आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 18 एंड वहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे. नाउ आई थिंक अनदर थिंग इज कि सर्टन लोगों में ये ड्राइव नहीं होता है. इसका मतलब ये नहीं कि उनको ये करना नहीं है, पर उनके
17: उनका तरीका अलग होता है.
18: उनका तरीका अलग होता है.
17: ऐसा नहीं कि वो आप एम्बिशियस नहीं है.
18: और लाइफ को देखने का तरीका एक्चुअली अलग होता है. और साथ में उनमें वो चीज होती है कि किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं.
17: Yeah.
18: You know, वो एक चीज हो सकती है.
17: If it gives them mental peace, I think all good. And it's very important कि हमारे आसपास हमारा support system उस तरह से हो.
18: Yeah, कुछ
17: हमारे
18: लोग,
17: जो लोग हमारे आसपास होते हैं, हमारी लाइफ में होते हैं, उनका सपोर्ट. ऐसा नहीं कि वो बता दे हाँ ठीक है तुम ये. वो आपको you know, क्या बोल, encourage करें और जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसमें आपका साथ दें कि
18: exactly.
17: भाई ठीक है ये नहीं हुआ, चलो कुछ और करके
18: so
17: देखेंगे.
18: Just in case if you are on the other side of the situation, जहाँ पर you are not according to the society, you're not a very ambitious person, क्योंकि आप उस height पर नहीं पहुँचे हो, उस कामयाबी की you know शिखर पर नहीं पहुँचे हो, या फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करते हुए लोग देख रहे हैं कि अरे ये तो तुम क्या जिंदगी भर यही करते रहोगे, आगे नहीं बढ़ना, ये सवाल अगर आप सुन रहे हैं. But you have not, if you are not that person who is planning in life to you know do that, क्योंकि आपकी लाइफ में बाकी चीज प्रायोरिटी रखती है, तो इट्स ओके.
17: सिंपल थिंग,
18: टेलिंग योरसेल्फ यू आर डूइंग द राइट थिंग.
17: सिंपल थिंग लाइफ का मैं बताऊं आपको, आपको जानना चाहिए आप लाइफ में और लाइफ से
18: क्या चाहते हैं,
17: क्या चाहते हैं.
18: राइट.
17: एंड अगर आपको वो पता है तो आप कर सकते हैं.
18: यू हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन, सो यू डोंट नीड टू फाइंड इट एनीवेयर एल्स. बिफोर वी मूव ऑन विद द बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड ट्रैक, किसी ने मैसेज किया, शाहरुख खान इज सुपर एम्बिशियस बट स्टिल मैनेजेस टू कीप हिज मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी. आई मीन ही हैज मैनेज्ड हिज एम्बिशंस एट एवरी फेज ऑफ हिज सक्सेसफुल करियर. ये उन्होंने कहा है. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए.
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
10: गुंडी घर जाओ या सीधा अंदर आओ. मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: accurate traffic.
1: Fly Solomon Airlines.
2: Bit of cloud around, should stay mainly fine today. 17 hour high. It's eased up nicely on motorways. Northern, 23 minutes Constellation Drive to town. Pretty good through Silverdale. Slow from Greville on and off to the bridge. Some quick patches. Northwestern, 23 minutes in from Massey. We're slow from Point Shev. A little heavy on and off to St. Luke's. Southern, 35 Manukau to town. Slow from East Tāmaki. Heavy Mount Wellington to Remuera.
1: Auckland to Vanuatu from $925 return. Selected dates, conditions apply. FlySolomons.com.
3: Coffee? The usual?
4: How about the unusual?
5: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
6: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
7: To get the best value from your mechanic, bringing it into Midas stops a lot of confusing thoughts like, should you ask AI first? Offer a contra deal?
8: You don't need your toilets cleaned, do you?
7: Find a cheaper mechanic in Invercargill. Pretend you know what they're talking about.
9: Pretty sure the carbonara's playing up.
7: Pray, plead, sob, beg, bargain. So save the mental gymnastics and bring it into Midas for straight answers and mates rates prices. Midas, for peace of mind motoring.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani ho ya butter chicken korma ya chana masala recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain to intezar kis baat ka aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye Shan Foods asli swad har ghar ke liye
11: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
12: Home, time check.
13: Good morning, it's Samitik 9 baj rahe.
12: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The latest political poll has the Opportunity Party in kingmaker position. The RNZ Read Research has it sitting above the threshold to enter Parliament at 5.3%. Neither the left or right bloc would have enough support to form a government without them. Labour is in front with 32.2% and National sits at 29.1%. A legal expert believes Parliament should never be able to touch and change the meanings of treaties. Act's One Law for All policy includes reining in judges' interpretations of laws. Professor Claire Charters says that's inconsistent.
15: Our neighbours in constitutionally liberal Western countries such as the US and Canada uphold treaties between Indigenous peoples and their government, both historically and new treaties.
14: Waikato Regional Council is weighing up the pros and cons when it comes to AI data centres. Two potential sites were identified in the region. Economic lead Tariq Ashraf says there are advantages.
16: When you're building a whopping great building, that's going to cost a lot of money. And so that's money that could be well spent here. You require construction workers as well as the supplies, etc.
14: And a seal in South Australia has died from H5N1 bird flu. The country's agriculture minister says this is concerning but not unexpected to see infection in other wildlife as cases spread. Richie Mo'unga in sport starts for the All Blacks in Wednesday morning's final midweek match against the Lions in Johannesburg. The first five says he's come back from three seasons in Japan a better player.
17: Wiser, a little bit older, as some of the boys have already mentioned. But just come back, just really grateful, eh?
14: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the Tigers have upset the Roosters 25-24, leaving the Warriors at the top of the NRL table 2 weeks out from the playoffs.
12: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari good brands bhi hai.
12: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम बताया जा रहा है फाइन रहेगा अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ मॉर्निंग शावर्स जो हम एक्सपीरियंस करेंगे. सनसेट 5:55 पीएम पर होगा. राइट नाउ टेम्परेचर 12.3 डिग्रीज है. हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर. ओवरनाइट टेम्परेचर आज का 9 डिग्रीज रहेगा.
12: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
0: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे luxury living. What's going on? क्या बकते हो?
3: अरे कहना क्या चाहते हो?
19: आज की स्टोरी सैन फ्रांसिस्को यूएसए की है एंड ये वग्मिता सिंह इनका नाम है. एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर और कहा है कि भाई क्या चल रहा है अमेरिका में. She went to a restaurant जहाँ पर she ordered a sandwich.
13: Okay.
19: और सैंडविच इनको मिला लेकिन इनको बहुत पसंद नहीं आया.
13: क्यों?
19: चीज था उसमें और इनको शायद चीज पसंद नहीं है.
13: हाँ.
19: तो उन्होंने रेस्टोरेंट वालों से कहा कि आप प्लीज इसमें से चीज हटा दो, निकाल दो.
13: हाँ.
19: And the restaurant charged her 75 cents to remove the cheese.
13: But why didn't she buy a sandwich without cheese at the first place?
19: अरे प्रभु.
13: नहीं, I'm just thinking that she's नहीं पसंद.
19: अगर मेरी जिंदगी में कभी मेरी वग्मिता सिंह के साथ मुलाकात हुई या कभी सोशल मीडिया पर उनसे बातचीत हुई तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई मेरी co-host जो है उन्होंने पूछा है कि आपने इन द फर्स्ट प्लेस विदाउट चीज सैंडविच क्यों नहीं खरीदा था. उनको उन्हें इस बात की परेशानी है कि भाई
13: 75 cents
19: चार्ज कर रहे हैं निकालने के लिए.
13: हाँ.
19: अरे ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है अमेरिका में. उन्होंने कहा कि she had ordered a sandwich at a cafe in San Francisco
13: and San Francisco.
19: अरे हाँ. And asked the waitress to remove the cheese.
13: हाँ.
19: उन्होंने कहा था कि चीज निकाल दो.
13: हाँ, without cheese वाला चाहिए था.
19: हाँ.
13: Okay.
19: तो उसने कहा था कि चीज निकालने के लिए 75 सेंट्स लगेंगे.
13: Oh, okay. So it's not किनको सैंडविच बना दिया और उसको बताया कि बाद में चीज निकाल देंगे और तब पैसे चार्ज किए. जब इन्होंने इनिशियली बताया कि इनके सैंडविच में इनको चीज नहीं चाहिए उसके लिए 75 सेंट्स चार्ज किए.
19: तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे किसी ऐसी चीज के लिए क्यों चार्ज कर रहे हो.
13: हाँ.
19: जो मैं खा ही नहीं रही हूँ.
13: Exactly,
19: ले ही नहीं रही हूँ.
13: Exactly.
19: तो वेटर्स ने बताया कि रेस्टोरेंट का रेसिपी फिक्स्ड है.
13: हाँ.
19: और
13: अमेंडमेंट्स के लिए वो चार्जेस करते
19: हैं. द शेफ हैड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक द सैंडविच विदाउट चीज. हाँ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा.
13: अरे एफर्ट कम लगेगा अगर आप चीज नहीं डालोगे.
19: नहीं,
13: तो
19: नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा. उसको बैलेंस करना पड़ेगा सपना बाकी की जितने चीजें हैं. फॉर एग्जांपल
13: टेस्ट के हिसाब से.
19: नहीं नहीं, टेस्ट के हिसाब से तो नॉर्मल ही सब कुछ डालेंगे.
13: हाँ.
19: ताकि चीज देखने में बैलेंस लगे.
13: Oh,
19: नाइस लगे, सुंदर लगे.
13: नाउ दिस इज क्या बकते हो.
19: हाँ, वो तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ.
13: अच्छा, ओके. बट आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस. लाइक अगर मुझे ऐसा पहले जब लग रहा था कि उन्होंने ऑर्डर किया उसके बाद उन्होंने बोले इसमें निकाल दो, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा था. बट दिस एक्चुअली मेक सेंस. व्हाई आर दे चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी जस्ट नॉट टू पुट चीज़. अगर आप किसी भी यू नो रेस्टोरेंट में जाकर बोलो कि मुझे ये एक्स्ट्रा साइड में चाहिए, तो उसके लिए तो वो चार्ज करते हैं.
19: हाँ, that's
13: नहीं चाहिए के लिए कौन करता है यार.
19: दैट्स जस्टिफाइड आल्सो. 75 सेंट्स चीज़ निकालने के लिए. अगर वो ऐसे ही निकाल देते हैं, तो ये पर्सन जो है शायद वापस जाती उस रेस्टोरेंट.
13: हाँ,
19: आप शायद नहीं जाएंगी.
13: Yeah, obviously. I mean, I don't know, उनका अपना कोई पॉलिसी होगा, बट टू पीपल, टू कस्टमर्स हु आर गोइंग देयर, इट डजंट मेक सेंस टू देम, यू नो. इसीलिए तो वो ये सवाल उठा रहे हैं. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई एंड फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, ताकि आप अपने डिसीजंस जो है आगे चलकर बना सको. 6 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर. दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन और आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आज का हमारा ये सफर. और इस सफर में जहाँ पर आज आपके साथ हम बातें करेंगे अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन अवर कम्युनिटी, हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में आने वाले दिनों में. और साथ ही साथ कृष्ण जन्माष्टमी, ये पर्व जो है बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है. इसी शनिवार से बहुत से जगहों पर इसे मनाया जाएगा. तो कहाँ कहाँ पर ये मनाया जाने वाला है, इससे रिलेटेड सूचनाएं भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। प्लस हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन, जितने भी फादर्स अभी आप हमें सुन रहे हैं तैयार रहिएगा, क्योंकि दिस इज द आवर जहाँ पर वो मौका आपको देंगे हम टू पार्टिसिपेट इन आवर फादर्स डे कॉम्पिटिशन। सोशल मीडिया पर डैड्स एआई अपग्रेड में तो आप एज किड्स जो भी हमें सुन रहे हैं, बच्चे आप सुन रहे हो, अपने डैड्स के लिए एंट्रीज आप डाल सकते हैं।
19: क्या कमाल, यू हैव सीन द एंट्रीज?
13: नो, नॉट एज येट।
19: अरे प्रभु मैं क्या बताऊं, क्या कमाल कमाल की एंट्रीज जो है ये अभी तक आपने डाली है
13: एक डैड्स एआई अपग्रेड के लिए।
19: हाँ, अभी मैं आपको बताऊं, सानवी इन्होंने अपने पापा को ये क्या क्या कौन से
13: माय फॉरएवर हीरो
19: शक्तिमान बनाया, अपने पापा को शक्तिमान बनाया है। और ये कौन है, श्वेता ने अपने पापा के लिए ये आर लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये कौन से सुपर हीरो है या कोई ओरिजिनल सुपर हीरो।
13: उनके पापा का नाम आर से शुरू होता होगा ना, राकेश शुक्ला उनके पापा का नाम है, इसी उन्होंने टैग भी किया उनको
19: शायद
13: तो इसीलिए एस की जगह आर लिखा है, जैसे सुपरमैन का कॉस्ट्यूम है उसमें एस होता है, इन्होंने आर लिखा है।
19: और नीतिका
13: ना, हाँ नीतिका ने अपने डैड के लिए किया है, हार्ड वर्किंग कीवी डैड, अपने हस्बैंड के लिए,
19: अपने बच्चों के पापा के लिए हार्ड वर्किंग कीवी डैड सुपर हीरो बनाया है। हाँ।
13: मुझे चीकाचू ये मतलब दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने एंट्री ली है, उनका आईडी है बेसिकली फेसबुक आईडी चीकाचू के नाम से, बट मेरे को उनका वो बहुत अच्छा लगा। एक हाथ में वैक्यूम क्लीनर, एक हाथ में ग्रोसरीज और आर्मी पेंस के साथ कई पेन बूट्स एंड एवरीथिंग, सुपर हीरो आर्मर जो इन्होंने पहना है, आंखों से रेज निकल रहे, मतलब ये क्या ही सुपर हीरो है। आई लाइक दिस पर्टिकुलर एंट्री, वेरी नाइस,
19: थैंक यू सो मच। आप भी जाए अपने डेट को एक सुपर हीरो के रूप में आपको प्रेजेंट करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, प्रॉम्प्ट डाले एआई में वो बनाकर रेडी कर,
13: जीपीटी को बताओ या जेमिनी को बताओ, सब कर दे देगा। अपने अपने डैड की एक फोटो दे दो और प्रॉम जो भी जैसा भी सुपर हीरो चाहिए आपको वो लिख दो कि टर्न दिस फोटो ऑफ माय डैड इनटू अ सुपर हीरो ब्ला ब्ला ब्ला करके
19: विद हिज हील्स ऑन हिज हेड,
13: जो भी आपको करना हो
19: आप डाल दो और फिर उसे जाकर पोस्ट कर दो, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस वहां है, जस्ट फॉलो ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, इट्स दैट सिंपल। और
13: सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने जरूरी हैं टू बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ, रिमेंबर
19: $300 कैश जीतने का मौका है इस फादर्स डे के मौके पर।
13: और ऑन द अदर हैंड, जैसे कि हमने कहा हमारा जो फादर्स डे ऑन ईयर कॉम्पिटिशन है विच इज डैड्स रिवर्स ग्रिल, डैड्स बी रेडी फॉर दिस, आपसे हम पूछेंगे कुछ भी सवाल मॉडर्न स्लैंग को लेकर, पॉप कल्चर को लेकर, टेक को लेकर, एंड व्हेन वी आस्क एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम एनी दीज जॉनर्स, तो अगर आपने सही सही आंसर दे दिया आपका नाम जाएगा ड्रो में, और ड्रो में जाकर आप जीत सकते हैं $500 कैश। यू डोंट हैव टू शेयर दिस $500 कैश विद एनीवन, क्योंकि एक ही विनर रहेंगे, एक ही डेड विजेता रहेंगे जिनको पूरा का पूरा 500 मिलेगा, तो ये आपका हो सकता है। तैयार रहिएगा, कब आपके लिए कॉम्पिटिशन ओपन होगा इसी घंटे, इतना आपको बता दें एनी टाइम, और क्या सवाल हम पूछेंगे जिसका सही जवाब देकर आप ड्रो में शामिल हो सकते हैं।

0: What's going on?
1: What's up, Auckland?
2: What's up, Auckland? क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में, जिसका हिस्सा आप बन सकते हैं। जैसे कि हमने इस घंटे की शुरुआत में भी आपको बताया था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये इसी सैटरडे 29 अगस्त से बहुत से जगह पर मनाया जा रहा है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। कहाँ कहाँ पर ही मनाया जा रहा है, सबसे पहले दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव जो है ये मनाया जाएगा 29 अगस्त से फ्राइडे 4 सितंबर तक। द केव होल का नाम है द केव, 5/57 के विंडिश ड्राइव मेनिकाओ वे हाउस के ऑपोजिट में है और हर रात 7:30 PM से यहाँ पर ये मनाया जाएगा।
3: और उसके साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है ये मनाया जाएगा श्री राम मंदिर 11 Brick Street हेंडरसन में और ये इसी शनिवार से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसमें आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं।
2: साथ ही साथ आपको याद दिला दे, रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Ave मेनिकाओ यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा इसी शनिवार 29 अगस्त से लेकर फ्राइडे 4 सितंबर तक। रामकृष्ण मंदिर 25 Onslow Ave मेनिकाओ यहाँ पर 7:30 PM से हर रात।
3: न्यूजीलैंड संगम द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा डेको ऑफ एलिगेंस 16 Lambie Drive मेनुकाउ में, रात 7:30 बजे से कथा जो है ये होगी और ये इसी शुक्रवार से मनाया जाएगा 4 सितंबर तक और हर दिन आपके लिए यहाँ पर भोजन का भी प्रबंध रहेगा।
2: और आपके आसपास भी, आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं जो ख़ास तौर पर आप कम्युनिटी के लोगों के लिए कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इनकी जानकारियां हम अन्य लोगों तक पहुंचाएं, तो इसके लिए आप ज़रूर हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, अपना जो भी कम्युनिटी डिटेल है ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर, और वंस यू सेंड इट अक्रॉस तो इसके बारे में डिटेल्स जो है ये हम शेयर करते हैं हमारी कम्युनिटी न्यूज़ सेगमेंट में। बाय द वे, एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आपसे बातें करनी है और वो है कि आजकल के जो यूथ है ये किस हिसाब से क्या कुछ कर रही है, इट्स वर्थ यू नो अप्रिशिएटिंग, वर्थ टॉकिंग अबाउट। और लाइकवाइज हमारी कम्युनिटी में यहाँ न्यूजीलैंड में भी जो यूथ है ये काफ़ी कमाल की चीज़ें कर रही हैं। रिसेंटली सैंडी एंड रोजबे की बातें हुई अनफिल्टर्ड में विद युवराज सिंह और साथ में जो कि मेम्बर हैं ऑफ एक्सप्लोर, एक स्टूडेंट रन बिजनेस जो कि भाग ले रहा है न्यूजीलैंड यंग एंटरप्राइज स्कीम येस में। और ये जो स्कीम है ये क्या है, एक्सप्लोर कैसे शुरू हुआ, कितना इनोवेटिव कार्ड गेम है ये जिसे डिज़ाइन किया गया है टू एनकरेज टूरिस्ट्स एंड लोकल्स ताकि वो न्यूजीलैंड के हिडन जेम्स को और उनके लेसर नोन डेस्टिनेशंस के बारे में डिस्कवर कर सके। और थ्रू दिस गेम प्लेयर्स जो है ये सीखते हैं अबाउट द स्टोरीज, कल्चर एंड अट्रैक्शंस जो इन जगहों को यूनिक बनाते हैं व्हाइल बीइंग एनकरेज्ड टू एक्सप्लोर एंड सपोर्ट डेस्टिनेशंस बियॉन्ड द यूजुअल टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स। सो इमेजिन न्यूजीलैंड के टूरिज्म में भी काफ़ी योगदान कर रहे हैं, खुद का एक कमाल का बिजनेस जो है ये भी खड़ा किया है और इतना अच्छा इनोवेटिव आइडिया, यू नो इस कंट्री के हिडन जेम्स के बारे में गेम खेलते हुए लोग पता कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस और इसके पूरे पीछे के पूरी की पूरी कहानी, द आइडिया, द कस्टमर्स, द प्रोडक्ट बिल्डिंग, येस में हिस्सा लेना, ये सब कुछ आप जान सकते हैं कि कैसे युवराज ने किया है, उनके साथ कितने लोग खड़े हुए, कैसे सपोर्ट मिला उनको एंड ये उनके लिए क्या मायने रखता है, ये सारी चीज़ें उनके इस जर्नी के बारे में अगर आपको जाननी है तो आप अनफिल्टर्ड के इस रीसेंट एपिसोड में ये चेकआउट कर सकते हैं। सैंडी एंड रोजबे के साथ इन्होंने पूरा कॉन्वर्सेशन किया है जिसके लिए आपको बस लिख कर भेजना होगा ड्राइव DRIVE on 5599 और लिंक आपको इसका मिल जाएगा जिस पर क्लिक करते हुए आप ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो है ये सुन सकते हैं।
3: फिलहाल अभी 22 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर, थोड़ी देर बाद फादर्स डे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका हम आपको देंगे।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो आ गए।
5: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz। अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: Whites separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
7: 2 p.m. call out, we're on your way. Heading back to the office, we're on your way there too. Commute to site, yep, you guessed it, we're on your way. The Z Business Fuel Card is accepted at every Z, Caltex and Challenge station. So we're always on your way. T's and C's apply.
8: Score more Smeg with Smeg bonus stickers at New World North Island. Get Nature's Fresh Muffin Splits 6-pack, $3.99 each. Or Cadbury and More Chocolate Blocks, $6.49 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: फिलहाल चलिए 27 मिनट्स आफ्टर 9 और आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा फादर्स डे कॉम्पिटिशन. जैसे कि हमने आपसे कहा था कि फादर्स डे डैड्स रिवर्स ग्रिल, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वंस यू टेक पार्ट इन दिस तो आपके पास मौका है कि आप जीत सके $500.
3: अक्सर क्या होता है कि डैड जो है ये सभी का टेस्ट लेते हैं घर में, इंक्लूडिंग द मम्मीज. तो पूछते रहते हैं तुम्हें पता है ये ऐसे होता है, तुम्हें पता है ये होता है ये. तो हमने सोचा चलो अब हम रिवर्स करते हैं सब कुछ.
2: ओके.
3: एंड डेड को हम ग्रिल करेंगे यहाँ. सिंपल ग्रिल होगा ये, बहुत ज्यादा नहीं ग्रिल करेंगे. एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कुछ कोई किसी चीज से भी रिलेटेड ये हो सकता है. सही सही जवाब देंगे आप, ड्रॉ में नाम शामिल हो जाएगा $500. अभी फादर्स डे बहुत दूर भी नहीं रह गया ना.
2: फादर्स डे सेलिब्रेट
3: करने वाले हैं तो $500 एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे. इस बार डेड को खुद ही मेहनत करनी होगी.
2: यार, वी वांट टू गिव द डेड्स अपॉर्चुनिटी एज वेल. इफ यू हैव बिकम अ डेड, अभी चाहे फ्रेश फ्रेश बने हो या फिर थोड़ा पुराने हो चुके हैं आप, और आप डेड है, दैट्स व्हाट मैटर्स.
3: तो लाइंस हम आपके लिए खोल रहे हैं. आओ 800-004-866. एंड यू डोंट नीड टू बी फ्रॉम ऑकलैंड ओनली. आप जहां कहीं भी होंगे इन न्यूजीलैंड, अगर आप ये जीतते हैं, ये $500 डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे.
2: राइट.
3: तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सी चीज, नंबर मिलाएं. और कॉल करने के लिए भी, पार्टिसिपेट करने के लिए भी कोई कॉस्ट नहीं है, इट्स फ्री ऑफ चार्ज. तो नंबर हमारा पता है आपको,
2: 0800 हम 0800-004-866. जस्ट इन केस अगर नहीं पता है, दिस इज द टोल फ्री नंबर 0800-004-866. आप डायल कीजिए. और ओ आया कॉल, लेट्स सी. गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग
2: जी, किन से बात हो रही है?
3: हेलो
4: हेलो.
2: हाँ जी, किन से बात हो रही है?
4: रोशन.
2: रोशन, कैसे हो आप?
4: बढ़िया हूँ आज, थैंक यू.
3: दैट्स वेरी गुड. कितने बच्चे हैं रोशन आपके?
4: तीन.
3: तीन बच्चे हैं, वेरी नाइस. तो आप उनसे सवाल वगैरह पूछते हैं घर पर?
4: कभी काल पूछ लेते हैं कि ये क्या करते हैं, ऐसे कि इसको कैसे करते हैं या क्या करना है.
3: ओके ओके, वेरी नाइस. तो आज रिवर्स ग्रिल में आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका सही सही जवाब आपको देना है. ठीक है?
4: ओके, ठीक है.
2: अगर आपने सही सही आंसर दिया, आपका नाम हम एक ड्रॉ में शामिल करेंगे, जहां पर आप जीत सकते हैं, अगर आप विजेता होते हैं तो $500 कैश.
3: ठीक है, रेडी है आप?
4: जी.
3: ओके, रोशन टेल अस, what is a POV video on social media?
2: POV.
4: POV, point of view.
3: It was that simple.
2: इतना आसान था.
3: हाँ.
2: Imagine, मैंने POV सुना ना, मैं थोड़ा doubt में आ गई.
3: कि क्या हो सकता है, इतना सिंपल होता है ना.
2: Because you asked the question in such a way कि POV video on social media. ऐसे पूछा आपने.
3: तो आप इधर से उधर अगर नहीं भी पता है तो यू कैन ट्राई लक. बट रोशन, थैंक यू सो मच, यू डिड अमेजिंगली वेल. और सही जवाब दिया, आपका नाम हम ड्रॉ में शामिल कर रहे हैं. कीप लिसनिंग. वैसे आप ऑकलैंड में रहते हैं या ऑकलैंड से बाहर?
4: नहीं, ऑकलैंड.
3: अच्छा, ऑकलैंड में ही है. बहुत
2: बढ़िया, पहली एंट्री है आप ब्रेकफास्ट शो की ओर से. सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप विजेता हुए तो $500 आपको जरूर मिलेंगे. पर शुक्रिया आज कॉल कर पार्टिसिपेट करने के लिए.
4: Thank you.
2: Have a nice day. रोशन जी ने कॉल किया, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर दिया और बदले में ये ड्रॉ का हिस्सा बने.
3: अब इंतजार करें, माय टाइम में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है ये आपको मिलेगी.
2: बिल्कुल, फादर्स डे के इस खास मौके पर आपके लिए मौके ही मौके हैं जो इंतजार कर रहे हैं. पर क्या आप उस मौके पर चौका मारते हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है.
0: Bollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Morning Special Jai.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: It's massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
4: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेज सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ लीगल एसोसिएट्स.co.nz
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: Oh hey, if you haven't received your enrolment pack yet, we might not have your correct address, but there's still time.
10: Enroll, check or update your details at vote.nz by midnight 25 October or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
12: Indelible Homes, your building expert.
1: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: What's going on?
15: तो चलिए अब आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं हम पर डेली राउंड अप आज सबसे पहले स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आए हैं
16: अपॉर्चुनिटी पार्टी अभी किंग मेकर पोजीशन में आ चुकी है अकॉर्डिंग टू द आरएनजेड रीड रिसर्च पोल जो लेटेस्ट रिजल्ट्स सामने आए हैं उसमें यह दिख रहा है कि नाइदर कॉलिशन नो द ऑपोजिशन

0: जो है विल हैव द नंबर्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ द अपॉर्चुनिटी पार्टी और द पार्टी जो है दे हैव टिप्ड द 5% थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम जब से पोल जो है ये शुरू हुआ है और अगर इसको रेप्लिकेट किया जाए ऑन पोलिंग डे तो राइट ब्लॉक इनके पास 59 सीटें होंगी लेफ्ट ब्लॉक विल हैव 55 सीट्स तो दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी पार्टी की 6 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी टू गेट ओवर द लाइन और लेबर हैज़ बिन अनएबल टू कैपिटलाइज नेशनल के जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं एंड हैज़ टेकन अ डेंट एज द गवर्नमेंट पार्टीज जो है इन्होंने टैक्स अटैक्स जो है ये शुरू किए हैं हाउएवर इट्स ड्रॉप ऑफ 1.8% सिंस जुलाई हैज़ पुट लेबर ऑन इट्स लोएस्ट रिजल्ट इन दिस सीरीज सिंस इलेक्शन नेशनल इमेज जो उनका अबोर्टेड अटेम्प्ट था चेंज इन लीडरशिप का वट एवर जो भी आप कहना चाहें स्लाइट बम्प इन सपोर्ट लेकिन अभी भी ये 20s में है 0.4 पॉइंट्स ऊपर गया है टू 29.1% अन्य पार्टीज जो हैं ये भी स्टेडी ही चल रही हैं
1: ओके इंटरेस्टिंग एज फार एज द पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न इन न्यूजीलैंड दूसरी ओर मैं आपको बता दूँ फूड प्राइसेस आपने शायद किसी न किसी को ये डिस्कस करते हुए बोलते हुए या खुद ये शॉपिंग के दौरान एक्सपीरियंस किया होगा कि आजकल भाई ग्रोसरीज बड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है व्हेन यू गोइंग टू द सुपरमार्केट यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस कि यार चीज़ों का दाम इतना ज़्यादा क्यों है अपेरेंटली फूड इन न्यूजीलैंड हैज़ बिकम मच मोर एक्सपेंसिव ओवर द पास्ट 10 ईयर्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फूड प्राइसेस जो है ये इतनी रफ्तार से बढ़े हैं जितनी रफ्तार से लोगों के जो इनकम है वेजेस है बेसिकली ये नहीं बढ़ा है अगर एक रिपोर्ट की माने विच हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन RNZ कहा गया है इन द पास्ट डेकेड वेजेस वेंट अप बाय 52% लेकिन कुछ एवरीडे फूड आइटम्स हैं दैट हैव इंक्रीज्ड मच मोर इन कंपैरिजन विद द वेजेस इंक्रीज जैसे बटर इसका प्राइस 157% से ऊपर गया है
0: 157%
1: यस एग्स went up by 125% white bread went up by 120% fish and chips iske bare mein last week hum baatein kar rahe the new zealand mein fish and chips ka price jo hai 75% ya 78% se badh chuka hai pichle 10 saalon mein
0: acha
1: mild cheese 75% se beef mince 71% se badh chuka hai lamb chops has gone up by 72% potatoes by 73% cabbage by 75% aur 2 liters milk ka price jo hai ye 57% badh chuka hai so all of the items that I've just spoken about ye sare ke sare items jo hai inka price hamare wages se bhi zyada badh chuka hai because wages went up by 52% only in the past 10 years
0: and the cost of products around anywhere from 70% to 150% respectively अलग अलग प्रोडक्ट्स का दाम ऊपर गया है
1: yes. so, अगर फूड प्राइसेस जो इतने ज्यादा क्यों है ये आप सोच रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि अराउंड द वर्ल्ड लोग जो है प्रोटीन रिच डाइट ये है ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो जिसकी वजह से मीट एंड डेयरी जो है इसकी डिमांड बढ़ चुकी है एंड बिकॉज न्यूजीलैंड सेल्स अ लॉट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ओवरसीज स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल डिमांड की वजह से प्राइसेस जो है ये बढ़ रहे हैं यहाँ न्यूजीलैंड में दूसरी ओर हायर फ्यूल कॉस्ट फ्यूल काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ चुका है फार्मिंग के मामले में ट्रांसपोर्टिंग फूड रनिंग मशीनरी पैकेजिंग डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू सुपरमार्केट एज वेल इवेंचुअली ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये सुपरमार्केट प्रोडक्ट प्राइजेज में दिखते हैं और इंटरनेशनल प्राइजेज भी अफेक्ट करते हैं इवन दो न्यूजीलैंड प्रोड्यूसर्स थिंग्स लाइक मिल्क मीट एंड वेजिटेबल्स बट वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट सो न्यूजीलैंड प्रोड्यूस्ड फूड इजंट नेसेसरली चीप फॉर न्यूजीलैंडर्स ज़रूरी नहीं है ऐसा इसीलिए इन चीज़ों के दाम जो है ये आए दिन बढ़ रहे हैं तो द सिंपल थिंग इज इट्स क्वाइट स्कैरी लेकिन फूड प्राइसेस इन न्यूजीलैंड बढ़ रहे हैं दिन ब दिन और हमारा जो वेतन है वेजेस है इट वेंट अप बाय ओनली 52% इट डजेंट मीन कि ग्रोसरीज आर गेटिंग चीपर इन्फ्लेशन के मामले में अगर देखें क्योंकि फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है इट हैज स्लोड बाय 1.9% लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोसरीज का दाम जो ये कम हो रहा है दे आर स्टिल गेटिंग मोर एक्सपेंसिव लेकिन एट द रेट दे आर गेटिंग एक्सपेंसिव वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है
0: ओके बाय द वे रिची मुआंगा अगर आपको पता नहीं है ही इज बैक इन द ब्लैक 2023 वाज द लास्ट टाइम जब उन्होंने ऑल ब्लैक्स की ओर से खेला था वर्ल्ड कप में और अब उनको स्क्वाड में नेम किया गया है वेंसडे को ऑल ब्लैक्स विल बी टेकिंग ऑन द लाइंस तो रिची मुआंगा जो है विल बी फीचरिंग फॉर द ऑल ब्लैक्स
2: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local developer.

0: दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन दो बातें
1: पहली बात सुंदरता ध्यान खींचती है और चरित्र दिल दूसरी बात काश से लेकर खैर तक का सफर रोज तय करती है ये जिंदगी
2: काश से लेकर
1: खैर
2: ओके
1: काश ये हो खैर कोई बात नहीं
2: रहने दो या एग्जैक्टली वेरी नाइस वेरी वेरी ब्यूटीफुल और उम्मीद करते हैं कि आज की दो बातें हैं आपकी लाइफ में कुछ सीख लेकर आए ताकि आप भी बेहतर से बेहतरीन बने पर इसी के साथ साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की जाने का समय जो हो रहा है शुक्रिया आप सभी के साथ के लिए आप सभी के समय के लिए कल एक बार फिर मुलाकात होगी ठीक सुबह 6 पर

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: Good morning and a very very happy happy Monday to you. भाई मंडे के ब्लूज को हटाओ और काम पे लग जाओ, यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ कहने से लगता है अपने माइंड में खुद की एक मोटिवेशन शुरू हो जाती है कि मंडे ब्लूज को हटाना ही हटाना पड़ता है. और इन्हें हटाने के लिए मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक आ गई हूँ, यही याद दिलाने के लिए कि क्या ओवर द वीकेंड आपने अपने लिए टाइम निकाला या नहीं निकाला. Yesterday is gone, tomorrow is not yet done. We have only got today, so let us begin. मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज के लिए जियो, कल हमने देखा नहीं है, कल जो चला गया उसको हम वापस ला नहीं सकते, तो इट इज़ वेरी वैल्यूएबल. टाइम इज मनी एज बेंजामिन फ्रैंकलिन हैड ऑलवेज सेड. तो भाई इसी बात पर आप लोगों के लिए माई टाइम भी आ जाता है, आपको याद दिलाते हुए कि आपका टाइम आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कशिश फूस के सौजन्य से ये बिल्कुल मुमकिन हो जाता है कि 10 से 12 बजे के दरमियान मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक का शिकार आ जाती हूँ कुछ ना कुछ आपके साथ बातचीत करने के लिए. लीगल एसोसिएट से हमारी टीम ज़रूर अभी थोड़ी देर बाद, उनकी टीम माफ़ कीजिएगा, साथ देने वाली है. तो कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ 5599 पे टेक्स्ट करें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टीम के उस मेंबर को मैं ज़रूर टेलीफोन लाइन पे लूँ और उनसे बातचीत करूँ. तो गाना बजाती हूँ.
0: बचाओ क्या,
3: याद रहे कि हमारी रक्षाबंधन की कॉन्टेस्ट इसी हफ्ते वाइंड अप हो जाएगी, बट इसके साथ साथ हमारी फादर्स डे की फादर्स डे की कॉन्टेस्ट भी आपके लिए शुरू हो चुकी है, उसके बारे में भी बातचीत करूंगी थोड़ी देर में.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो एक्सपर्ट्स अड्डा में आज मेरे पास कोई ऐसी है जो बहुत दिनों के बाद हाथ में पकड़ में आई हैं। वैसे यूजुअली वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, लेकिन आज बिकॉज इट अ क्वेश्चन हैज़ कम एंड आई डिडंट हैव अ चॉइस बट टू कॉल अप आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। हाउ आर यू आशिमा?
2: गुड मॉर्निंग काशिका जी, हैप्पी मंडे।
1: हैप्पी मंडे, कैसी हो?
2: अरे मैं बिल्कुल काबू में नहीं आती, ऐसे कैसे हो सकता है यार, आप रहन दो।
1: देखो ऐसा है, हर समय ना राज जी के लिए सवाल आते हैं, बट इस बार मैंने कहा
2: अब वो फेमस है।
1: I know, ये तो बात सही कही है तुमने, लेकिन देखो तुम अपनी फील्ड में फेमस हो, है ना, और ऐसे में तुम्हारे साथ जब मैं अगर मैं बात करना चाहती हूँ, इट इज़ अबाउट फर्स्ट होम, यू नो फर्स्ट होम बायर्स की जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट एंड द सवाल हैज़ कम लाइक दिस टू से कि कुछ फर्स्ट होम बायर्स के बारे में प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कुछ उसके बारे में आप अगर उनसे पूछ सकते हैं लीगल एसोसिएट्स। मैंने कहा यू आर द राइट पर्सन, सो मैंने तुम्हें फोन लगा दिया।
2: बढ़िया हुआ, देखो क्वेश्चन ऐसा आया, अब राज आ ही नहीं सकता, फिर तो अब आज मैं ही फेमस होने वाली हूँ।
1: बिल्कुल,
2: चलिए चलो, फर्स्ट होम बायर्स हमेशा ही, हम पहले भी कई बार ही बात कर चुके हैं काशिका जी, फर्स्ट होम बायर्स, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सोचा कि आप घर ले रहे हो और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मीट करते हो तो वंडरफुल, क्योंकि ये तो मार्केट ही बायर्स की है। अगर आपको घर लेना है सबसे पहले बैंक अप्रूवल करवा लो, प्री अप्रूवल करवा लो, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द हाउस। मेरा काम एज अ लॉयर तब शुरू होगा जब आपने घर देखना शुरू करना है, क्योंकि आप जब भी घर देखोगे, कोई भी घर फाइनल करोगे, तो नेचुरली आप एक अग्रीमेंट पे एंटर होते हो जो सेल एंड परचेज अग्रीमेंट होता है, एंड दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो बिना लॉयर को दिखाए अगर आप एंटर होते हो तो देयर मे बी अ रिस्क कि क्या चीजें लिखी आपको ना पता हूं एज अ फर्स्ट होम बायर। तो ऑलवेज कंसल्ट अस, कम टू अस, वी कैन गाइड यू कि कौन से कंडीशंस डालने चाहिए एज अ फर्स्ट होम बायर, कौन से नहीं डालने चाहिए। आजकल काशिका जी बहुत कॉमन हो गया है कि बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट्स इतनी लीगल टर्मिनोलॉजी में यूज होती हैं कि एक्चुअली सेलर और बायर दोनों को ही नहीं समझ में आती अगर पढ़ो तो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लीगल जार्गन्स यूज होते हैं, एंड इसीलिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लॉयर्स को कंसल्ट करो, आप हमारे पास आओ, वी कैन गाइड यू, और आपको बता सकते हैं कि आपने कौन सी कंडीशंस डालनी है। फाइनेंस तो मस्ट है, वो कंडीशन तो आपने डालनी ही डालनी है, नो मैटर आपके हाथ में अप्रूवल हो या ना हो, डजंट मैटर। फाइनेंस आपने 10 वर्किंग डेज का डालना ही डालना है, उसके बियॉन्ड क्या क्या कंडीशंस हैं आप हमारे पास आओ, एंड वी कैन गाइड यू, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर सर्कमस्टेंसेस आर, अकॉर्डिंगली वी कैन टेल यू व्हाट कंडीशन शुड पुट इन द अग्रीमेंट।
1: Absolutely, I think you've said it very well, क्योंकि ये jargons जो हैं हमारी समझ के बाहर होता है, we're just only depending upon ChatGPT and Google, but basically
2: अगर,
1: the best part about legal associates is that वो हमारी भाषा में बात करते हैं, हमारी भाषा में हमें explain करते हैं, and that goes without saying that you guys have been so pro in all this, so जो लोग सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगी, हमारी community के लिए legal associates is just a boon, जहाँ हमारी भाषा, हमारी बात, हमारी सिचुएशन को समझ के वो हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं एग्जैक्टली किस तरह से हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, एंड द मैजिक नंबर टू गिव अ कॉल इज 0927994399 Level 131 इस तमाकी रोड पापा टोयटोय या हैमिल्टन आप पहुंच सकते हैं, और ऐसे में legalassociates.co.nz की आप वेबसाइट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अ बिग थैंक यू टू यू, सॉरी फॉर द शॉर्ट नोटिस, आई जस्ट कॉल्ड यू एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर आशिमा,
2: थैंक यू जी,
1: बाय,
2: थैंक्स, बाय बाय।
0: माय टाइम विद कशिका,
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं,
4: we gotta go, are you ready,
5: come and take a trip with me,
6: your attention please, we are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus 1,000

0: boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
1: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: Zero with an X.
7: You started your business for a reason, remember? Then all of a sudden, invoices and bills and payroll started getting in the way. And that is where Xero comes in. Connect your invoicing, bank feeds, bills and payments in one place. Real-time cash flow without all the added chaos. Xero takes care of the numbers so you can get back to doing what you love. Search XERO today.

0: ऑफिस शाउट आउट में फाइनेंस वर्ल्ड से पापा टोयोटो से वरुण जी आप हमें सुन रहे हैं, अ बिग थैंक यू टू यू फॉर मेकिंग श्योर दैट हम आपका आपको एक शाउट आउट दे दें. अच्छा, इसके साथ साथ एक शाउट आउट आपको और भी मिलने वाला है और वो है हम का बोर्ड नाउ, यानी कि दो रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू विद सॉलोमन एयरलाइंस, $1,000 स्पेंडिंग आपके लिए, मनी भी उसके साथ इन्वॉल्व है. तो ये कभी भी मैं बोर्ड नाउ का अनाउंसमेंट आपके लिए कर सकती हूँ, बोर्डिंग कॉल आपके लिए अनाउंस हो सकती है 30 मिनट्स के लिए. आप जाके रोवा पे जाके वो कॉम्पिटिशन के पेज के लिंक को जाकर क्लिक कीजिएगा और अपनी एंट्री सबमिट कीजिएगा रोवा ऐप के ज़रिए. आपके लिए हम लेकर आते हैं बोर्डिंग कॉल. हम बोर्डिंग कॉल सॉलोमन एयरलाइंस की सौजन्य से हफ्ते में 4 बार ये नॉन स्टॉप फ्लाई करते हैं ऑकलैंड टू वनुआटू. एंड विजिट कर सकते हैं आप इनके फेस वेबसाइट को flysolomons.com के ज़रिए. हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. एक ऐसी फिल्म मिर्ज़ापुर जो बहुत जल्द आने वाली है, उसका ये गाना सडनली इट्स पिक्ड अप, इट्स वेरी प्रिटी, सुनिए.
1: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: passengers. Your next boarding call could take you to paradise. Listen out for your special hum boarding call for your chance to win through return tickets to Vanuatu with Solomon Airlines.
1: Let's take a vacation.
0: And $1,000 spending money.
2: Thanks to Solomon Airlines. Flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
3: The beat of Bollywood.
4: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
5: एक बात तो है कि हमारी वाकई कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन आप ब्रांच आउट कर सकते हैं. आप एक्चुअली वेंट आउट कर सकते हैं मुझे 0800 00 हम पर कॉल करके, जहां भाई बहन का प्यार, भाई बहन का टकरार, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा सीरियस अप्रेजल करना है, चाहे वो प्यार का हो चाहे वो गुस्से का है, तो बस वेंट आउट कर दीजिए. इस गाने के ठीक बाद एंट्री लेना चाहती हूं. ये चार बार है माई टाइम में जहां पे मैं आपकी कॉल अब लेने वाली हूं, क्योंकि फ्राइडे के दिन तो ड्रॉ है. सो जल्दी से कॉल कीजिए 0800 00 हम 0800 00 4866 पर $200 $250 ईच आप भाई बहन को मिल सकता है.

0: आपने मेरे पास एक मैसेज भेजा है एंड दैट इज रिलेटेड टू द ड्रीम, और आपको आपके भाई बहन की ड्रीम आई. चलो मैं उसके बारे में बाद में बात करती हूँ, बट एक बात आपको बताना चाहती हूँ. आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ. 800 00 हम इज द नंबर जिस पर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कोई भाई या बहन की कोई ऐसी बात आपको लगता है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं. एक सपोर्ट फोर्स बनकर आती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल रायता फैला देती है, यानी जाके शिकायत कर देती है टू द पेरेंट्स, और वो फिर आपकी बैंड बजा देते हैं या बजा दी उन्होंने आपकी बैंड. ऐसा कुछ हुआ है ज़रूर बताइए मुझे. वैसे एक चीज़ और है कि अगर भाई या बहन आपस में कोई बॉन्ड शेयर करते हैं, कुछ मेमोरीज़ होती हैं आपकी, वो मेमोरीज़ जो है आप कभी कभी संजो के साथ रख लेते हैं. तो चलिए उन मेमोरीज़ को आप एक भी मेमोरी उसमें से शेयर कर सकते हैं. हो सकता है उनकी टी शर्ट हो सकता है उनकी वॉच हो सकता है कुछ उनकी रिंग हो या ब्रेसलेट हो, चेन हो, कुछ भी हो सकता है. तो आप उसकी फ़ोटो लेके खींच के हमारे फेसबुक के पेज पे आप पोस्ट करें, जहाँ रक्षाबंधन की एक प्रमोशन में हमने एक पोस्ट डाली है. बस आप अपना कमेंट, अपनी कहानी वहाँ ऐड कीजिए, अपने भाई या बहन को टैग कीजिए, और 300 डॉलर्स के कैश में भाग लेने का आपको बहुत सुनहरा मौका भी मिलने वाला है. इट्स नाउ योर टाइम टू गिव अ कॉल सो दैट आई कैन टेक यू ऑन एयर, एंड उसके बाद हम आपके लिए ढेर सारे प्राइजेस का ऑप्शन खोल देते हैं. ठीक है, चलो बताओ भाई ऐसा कुछ हुआ, कोई शिकायत की. मोस्टली शिकायतें जो करते हैं ना भाई नहीं करते शायद, मोस्टली शिकायतें बहनें जाके करती हैं. क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आई बी वेटिंग. बट इसी के बाद एक ड्रीम आपने मुझसे शेयर किया है, एंड आई यू वॉन्टेड टू नो वॉट एग्जैक्टली इट इज़, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू भाई एंड बहन ऑल्सो. तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ बस थोड़ी देर में.
1: Attention everyone, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं, और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर.
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए, और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं.
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल. रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग

0: डायरी। सो ड्रीम डायरी में वैसे जैसे आपका टेक्स्ट आया और आपने बताया कि आपकी कुछ इनर फीलिंग्स अबाउट द बॉन्ड हिडन, आपकी जो इमोशंस थे, एंड यू बीन ड्रीमिंग अबाउट योर ब्रदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ये सपोर्ट, ये कनेक्शन जो आपका है व्हेन यू सी योर ब्रदर और योर सिस्टर, इट शोज द अ विश, जहाँ आपका ट्रस्ट, आपकी सेफ्टी, आपका कंफर्ट फॉर योर डेली लाइफ, बहुत कुछ जो है आपके भाई या बहन के साथ जुड़ा होता है। और ये एक खास चीज़ होती है, कभी कभी ओपिनियन मिक्स्ड होता है, जहाँ पे आपको पता नहीं कि आपके भाई या बहन आपसे कितने टाइम, कितने अरसे से मिले, हो सकता है आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई स्ट्रेस रही हो, आपके बीच में कोई हिडन फ्रस्ट्रेशन है, यू नो, एंड दिस इज़ वॉट you know, might be triggering the kind of dream which probably you are dreaming. I actually don't know कि क्या आपने ड्रीम किया। आपने कहा आई जस्ट ड्रीम्ड ऑफ माय ब्रदर, आई सेड ओके, सो इससे क्या बन सकता है? वेल, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको लगता है कभी आपके सिबलिंग्स जो हैं आपके सपने में आते हैं, तो बेसिकली इट्स अ वेरी डीप रूटेड रिलेशनशिप, और ये कुछ आपके पास्ट की जो एक रिलेशनशिप है, डायनामिक्स हैं, वो आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हम कभी रक्षाबंधन का गाना बजाते हैं, हम रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं, हम सड़क पर जाते हैं तो हमें वो राखियाँ दिखाई देने लग जाती हैं, या फिर हमें शॉप्स पर जाते हैं, इंडियन शॉप्स पर, वहाँ राखी दिखने लगती है, रक्षाबंधन के बहुत सारी प्रोमोज मिलने शुरू हो जाते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्टार्ट्स गेटिंग इमोशनल द इनसाइड यू, है ना?
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: ये न्यूज़ सुनकर तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा क्योंकि पेशेंट्स आर वेटिंग इन सॉइल्ड बेड्स जहां नॉर्थ शोर हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उन्हें वेट करना पड़ रहा है. नर्सेस कह रही है कंडीशन इज सो बैड, इट रियली फील्स वेरी सैड अबाउट द होल थिंग. लुक्स लाइक आई डोंट नो हाउ द सिचुएशन इज गोइंग टू बी, बट कुछ प्रॉब्लम्स जो आउटलाइन की गई हैं, पेशेंट्स वेटेड फॉर यू नो इन द ट्रियाज फॉर 90 मिनट्स, हार्ट स्कैन्स शुड हैव बीन डन इमीडिएटली एंड इट टुक आवर्स, पेशेंट्स फॉर वेटिंग फॉर मोर देन 50 आवर्स in the emergency department for a bed in the hospital, and kuch essential medication bhi missing thi. Iske saath saath soiled beds ke saath overcrowded corridors and around department was at 300% capacity at that time. Is that fair? Because yahan par health New Zealand ne agree kiya to hire 25 nurses for the department, but only 9 had come. The nurses informed that.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
11: A Kogan TV is just like a TV. Both TVs do very similar TV things, but with slightly different little logos, remote shapes, and legs. One's a Kogan 55-inch LED 4K Smart Google TV. The other TV costs an arm and a leg. Get what you want for less with Kogan. Available from Mighty Ape, Dick Smith, and Kogan.com. Clickin' awesome.
12: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की, जैसे घर पर मिलती थी। तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
13: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलोकाउ में ब्रेड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा कीवीज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलोकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
15: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Members of the nurses' organisation at Auckland's North Shore Hospital have declared a state of emergency due to unsafe staffing. They've written to Health NZ saying they can no longer remain silent while people are put at risk. Delegate Jean Moore says treating patients in corridors is unacceptable and the hospital has been operating at 300% capacity on certain days. There's overwhelming support for New Zealand's largest coal mine by Westport. Bathurst Resources Limited is seeking fast-track approval. A Westport Enterprise Network survey found nearly all businesses wanted to stay open. Chair Luke Robertson says the town depends on it.
16: Without alternatives and without a long-term solution, this will mean that Westport, as we know it, will definitely cease to exist.
15: And the Waikato Regional Council has been urged to make its position on AI data centres clear. InvestNZ has launched a campaign aimed at attracting global customers. Economic lead Tariq Ashraf told the committee their region is a key focus.
17: They've identified six so-called advantaged zones throughout New Zealand. Two of those happen to be in our region, in North Waikato and in Taupo.
15: In rugby with All Blacks, travel and hospitality.com, star playmaker Richie Mwanga has been named a start for the All Blacks in this Wednesday's tour clash with the Lions in Johannesburg. New Zealand stocks on a high after their win over the Springboks. Coach Dave Rennie thinks they'll improve more.
18: I think it's important we don't get carried away with it. We've almost got to reset. We'll take a lot out of the game though. We've learnt a lot about ourselves and we'll be better this weekend.
15: And Kiwi golfer Ryan Fox has scraped into the lucrative season-ending PGA Tour Championship. He finished 47th at the latest FedEx Cup event.
14: Sports News. Brought to you by

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 16, overnight temperature of 9. आज का forecast बताया जा रहा है, सुबह के समय clouds थे, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा breezy होगा, southwest की हवाएं, लेकिन ये शाम तक clear होता चला जाएगा. It feels like 15 degrees right now, 5:54 पर sunset बताया जा रहा है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashika.
1: गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत नमस्कार. अगर आज आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. तो ये तो आपके लिए, आपकी विशेस तो हमारे साथ सुबह शाम ब्रेकफास्ट और ड्राइव शो में आती ही हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कहीं नॉस्टैल्जिक होना चाहते हैं, तो हमारे म्यूज़िक स्टेशंस जो है आपका मनोरंजन 24/7 करते रहते हैं और विदाउट एनी एड्स, राइट? ओके, सो रोवा के नंबर वन म्यूज़िक स्टेशन यानी कि रिवाइंड शो, जो हमारा रिवाइंड है, हम रिवाइंड, उसमें आप 60s 70s के ट्रैक्स सुन सकते हैं. 80s के जूक बॉक्स के ट्रैक्स अगर आपको सुनने हैं तो भाई वो भी आपके लिए मुमकिन है. फिजी भजन, फिजी कीर्तन संग्रह, इसके म्यूजिक स्टेशन आपके लिए अवेलेबल हैं. पंजाबी गानों में दिलचस्पी रखते हैं तो यू हैव गॉट चढ़ती कला एज वेल अलॉन्ग विद राहत फतेह अली खान. अगर आप कुछ सूफी गाने सुनना चाहते हैं, कव्वाली सुनना चाहते हैं, तो उनके ट्रैक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं. बट इस घंटे पे मैं ट्रैक पे लाना चाहती हूँ नन अदर देन फादर्स को, और ये पूछना चाहती हूँ कि भाई क्या फादर्स जो हैं आजकल की जनरेशन के साथ हिले मिले हैं कि नहीं हैं? क्या आप वाकई इनके लिंगों को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं? बस कुछ ऐसे ही चंद सवालों में से एक ही सवाल पूछूंगी. बस उसमें आपको, अगर आपके फादर आपके साथ में हैं या अगर आप खुद फादर हैं, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन हाउ यू गो अबाउट विथ योर चिल्ड्रन? थोड़ी देर में
0: बचाओ क्या?

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: So as I explained, I'm waiting for a call from some dad or some son, if possible, क्योंकि आपकी आजकल की जो language slang जो है, pop culture क्या है, अब कुछ तो पता होना चाहिए ना आपको कि what is a skibidi. अब मुझे भी खुद ही नहीं पता था skibidi क्या होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे words हैं जो आपके सामने आते हैं और आपको लगता है कि आप उसके बारे में as a son या as a father बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गिव मी अ कॉल. लाइक यू नो, इफ आई से दैट देर इज़ सम पर्टिकुलर वर्ड आई फील दैट इट्स कुक्ड, इसका मतलब खाना नहीं पक गया. व्हाट डू यू थिंक कैन बी द मीनिंग ऑफ आई एम कुक्ड टुडे? ओके, एज सिंपल एज दैट. 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं बताने के लिए. आई हैव ऑल्सो लर्न दिस फ्रॉम माई डॉटर, तो मुझे पता चला कि उसका मीनिंग का मतलब क्या हो, तो मैंने सोचा आज आपसे पूछ लेती हूँ. तो डेफिनेटली अगर आपने कॉल किया, मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूँगी, $500 कैश जीतने का सुनहरा मौका भी दूंगी. बाय द वे, सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको बता देती हूँ कि AI क्रिएटेड आप अपने डैड या सुपर हीरो की फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको पोस्ट कर सकते हैं, लाइक अ सुपरमैन, अ बैटमैन और वट एवर यू थिंक इज़ राइट, एंड टैग योर डैड इनटू दैट. अब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को बोलिए कि आप वो जो फ़ोटो जिसको आपने AI जनरेट किया है, आप उस कंपटीशन जो पोस्ट है उसमें जाके लाइक करवाइए. और ये सुपर हीरो की फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कंपटीशन में लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. $300 कैश जीत सकते हैं. 4 सितंबर के दिन ये ड्रॉ होगा. हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस डेफिनेटली आप समझ सकते हैं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी कीजिए. 0800 00 हम पर आप कॉल करके मुझे बताइए अगर आप समझ पाए व्हाट डज दिस मीन आई एम टोटली कुक्ड टुडे, इसका क्या मतलब हुआ. 0800 00 हम, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे लगा था क्या खाना बनाने वाली बात कर रही है, लेकिन ये बात ही कुछ और निकली. सो आई एम ऑल्सो लर्निंग अलॉन्ग विद यू ऑल. तो आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसके ज़रिए यू नो यू फील दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम योर चिल्ड्रन, डेफिनेटली कॉल 0800 00 हम या 0800 00 4866. दिस इज़ द नंबर एंड आई शैल वेट फॉर योर कॉल. फादर्स डे का ये सुनहरा मौका है और फादर को पैम्पर करने का सुनहरा मौका है, तो ये सुपर हीरो आपके जो है $500 कैश जीत सकते हैं. अब आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड डेफिनेटली करना चाहूँगी. आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट दिस ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी. 6 वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट, जल्दी कीजिए और बताइए आपकी 6 वर्ड स्टोरी क्या है. वैसे कम्युनिटी में क्या होता है क्या नहीं होता है ये भी आप बता सकते हैं. बाय द वे, डिड यू रियलाइज बातें करते करते मैंने कुछ प्ले किया था, यानी कि मैंने आप लोगों के लिए प्ले किया था हमारा बोर्डिंग कॉल का क्यू. तो आपके पास एग्जैक्टली 30 मिनट्स हैं जहाँ पर आप रोवा ऐप पे जाएं और बोर्ड कीजिए अब फ्लाइट को, ताकि आप वनुआटू फ्लाई करके जा सकें. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 मिनट्स, यस, ओके.
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
5: That is very that is a very acceleration.
4: That's a very acceleration. Yeah.
5: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
5: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
7: The new Macca's Barbecue Hash Stack Burger.
8: Not new, Greg's made it before.
9: Yeah, Noah's made it.
10: Sam's made it too.
7: Oh, new for us, but you've been adding the hash brown for ages. Macca's Barbecue Hash Stack. T's and C's apply.
11: At Spotlight, save a massive 20 to 50% off store-wide, including Manchester Home Decor, fabric, craft, knitting yarn, party curtains and blinds. Yes, that's 20 to 50% off store-wide. Sale on now. At Spotlight, it's what you make it. Discounts apply to full-price products. Excludes clearance. See website for details.
12: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
13: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland.
14: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Huge 10kg front loader and heat pump dryer, sleek grey set, $11.99. Huge black stainless steel side-by-side fridge freezers, $6.99. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. Trade

0: Twitter. Six Word Story.
1: It really gets interesting जब आप interact करते हैं, but ये interaction मुझे चाहिए था आपका on the call, लेकिन आपने समझा कि it is over the text, but it is not over the text. तो मैंने आज जो मैंने पूछा था, अगर आपने एक six word story बनाकर मुझे भेजी है, and that is आपने लिख के भेजा, when I shave, dad's the reflection. When I shave, dad's the reflection. Wow. This is very, very beautiful. I loved it. लेकिन हाँ, अच्छा चलो, six word story में ये मंजूर है, लेकिन आपको कॉल करना था, आपको मुझसे बात करनी थी. So it'll really make a difference. वैसे हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पे दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव में आपके लिए 29 अगस्त से 4 सितंबर तक द केव में 7:30 बजे हर रोज़ मैनकाओ में प्रोग्राम रखा हुआ इन्होंने. रामकृष्ण मंदिर मैनकाओ में जो है, वहाँ पर भी 4 सितंबर तक 29 अगस्त से लेके 7:30 बजे बहुत सारा कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड उत्सव का मनाया जाने वाला है. न्यूजीलैंड संगम जो है आपको इनवाइट करना चाहती है 28 अगस्त से लेके 4 सितंबर एट 16 लैम्बी ड्राइव डेकोर ऑफ एलिगेंस के ज़रिए 7:30 से 9 बजे तक कृष्ण कथा आरती और महाप्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है. श्री राम मंदिर में आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी जो है 29 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक ये होने वाला है, और साथ साथ कृष्ण जन्म का भी आयोजन किया जा रहा है. तो डेफिनेटली आप इन सभी जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी में कुछ खास हो रहा है तो डेफिनेटली आप हमें buzz@hamfm.com पे ईमेल कर सकते हैं.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

जब हम अपने पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं तो बता देते हैं फ्रॉम क्लासरूम टू कंपनी, एक यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, और ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं अनफिल्टर्ड सैंडी एंड्रोसबर्ग के साथ एपिसोड में आए, जहां पे इनकी मीटिंग या मुलाकात हुई युवराज सिंह से, अ मेंबर ऑफ ई एक्सप्लोर, एक स्टूडेंट रन बिजनेस है जो न्यूजीलैंड में यंग एंटरप्राइज जो है स्कीम के जरिए यानी येस के जरिए कर रहे हैं, एक इनोवेटिव कार्ड गेम जो है विच इनकरेजेस टूरिस्ट एंड लोकल्स, जहाँ पे आप हिडन जेम्स जो है लेसन नोन डेस्टिनेशंस जो है गेम्स प्ले करने के जरिए इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं द यूजुअल टूरिस्ट स्पॉट्स के अलावा. तो ये आइडियाज़ क्या हैं, किस तरह से उन्होंने इस बात को पूरा समझा, ये किस तरह से कीवी माइंड्स के जरिए चला. रोवा एंड आप स्पॉटिफाई के थ्रू आप डेफिनेटली जान सकते हैं, 5599 पे आप ड्राइव लिख के भेजें एंड पूरा का पूरा एपिसोड आपके लिए तैयार है.

0: Klasika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: वैसे न्यूजीलैंड में एक चीज ऐसी होने वाली जिसकी बहुत जबरदस्त शॉर्टेज होने वाली है, एंड ये शॉर्टेज है ऑफ प्लम्बर्स. विथ वेरी फ्यू देन 20% जो ये बिजनेस में नए अप्रेंटिस आए हैं, तो ये एक्सपीरियंस ट्रेड्स पीपल जो हैं, दे हैव ऑल हेडेड टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया. लेकिन इससे बताया चल रहा है कि ओनली 1450 प्लम्बिंग, गैस फिटिंग एंड ड्रेन लिंक जॉब्स विल बी नीडेड इन द नेक्स्ट ईयर. और ये वर्कफोर्स जो है, ये देखिएगा आप, यहाँ हमें डेफिनेटली ये चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द पीपल हैव एक्चुअली गॉन हेड एंड लेफ्ट न्यूजीलैंड. और इस साल के जो नंबर ऑफ़ न्यू अप्रेंटिसेस जो है वो ड्रॉप हुए हैं बाय 27% कम्पेयर टू 2025, जहाँ ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं अगर देखा जाए तो. अब पता नहीं इस तरह की नौकरियों में लोग यू नो है कि नहीं, बट एक एक्सपर्ट ने बताया कि ओवर द ईयर्स दे हैव बीन ट्रेनिंग लॉट ऑफ पीपल एंड व्हाट अ बैड रिस्पॉन्स दे हैव गॉट एज ऑफ नाउ.

0: at Turners.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply. Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind. ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Rescue me, recycle me.
4: तो आज मैंने सोचा कि रिसाइकल मी में मैं खाली बात करने वाली हूँ अबाउट आलू. ओके, नाउ व्हेन वी से कि आलू के साथ क्या कर सकते, क्या बच जाता है आलू, तो क्या होता है कि अगर कभी कभी हम आलू बच जाता है तो हम लोग इसको मैश कर लेते हैं. अब ये कुछ भी हो सकती है, सूखी सब्जी भी हो सकती है, उबले हुए आलू भी हो सकते हैं. और फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा रोस्टेड वाला बेसन, थोड़ा ग्रेटेड चीज़ डाल के, नमक और चिली गार्लिक पेस्ट डाल के, थोड़ा चॉप किया हुआ हरा धनिया, ऑयल फ्राइंग करने के लिए रखना है. बस आपको इनकी राइस की, आपको एक काम कर सकते हैं, आप टिक्की बना सकते हैं. थोड़े से चावल अगर आप ऐड करते हैं बचा हुआ है, बस आप इन सबको ऐड करने के बाद इनकी टिक्की बना सकते हैं. आप देखोगे करीब 9 से 10 टिक्कियां आपकी आराम से बन जाएंगी. सपोजिंग आपके पास एक बोल राइस का है, उसमें आपने बाकी की चीज़ें आपने ऐड की, एंड दैट्स अबाउट इट. इतना सिंपल हो जाता है ना, कई बार आपको लगता है कि ओह माय गॉड, इतना सामान बच गया, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, इसका क्या किया जाए. इतना सिंपल आंसर था, इतने सिंपली इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं. सो यस, इस हफ्ते पूरा हम आलूओं के बारे में ही बात करने वाले हैं कि लेफ्ट ओवर आलू के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं.
2: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: तो चलिए फिर देखिए, टाइम आ चला है वाइंड अप करने के लिए और ऐसे में कीजिए स्वीकार का शिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है आपके लिए सोमवार. मेरी मुलाकात आपके साथ होगी, दिन कहलाएगा मंगलवार. लेकिन जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके लिए आने वाला हफ्ता और भी जोरदार, दमदार और शानदार बना रहे. हमारी मनोकामना यही है कि बस आप हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें और वार्म रहिएगा, क्योंकि मौसम वाकई ही ख़राब है. जहाँ हो सकता है ये वायरल एक जो चल रहा है कोल्ड एंड कॉफ का, वो आपको ना पकड़े. स्टे सेफ, स्टे वार्म, बाय.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jeku.
5: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
6: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें.
5: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
6: पर डेवलपमेंट के पैसे
5: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
7: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
7: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
9: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
13: टाइम हो चुका है दिन के ठीक 12.
14: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
15: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. Healthcare workers have declared a state of emergency at Auckland's North Shore Hospital. Rebecca Hunt with more.
16: In a letter, the nurses' organisation describes patients lying in soiled beds and waiting more than 50 hours for admission into ED. It estimates 25 more full-time equivalent nurses are needed to keep up with demand. Health New Zealand has in turn highlighted recent staffing uplifts, but the union says it's promising less than half of what's needed and doesn't specify who the staff for four.
15: No charges will be laid over a fatal dog attack that killed a one-year-old in Christchurch. Sonny Charles Watson died at his family home in Aranui 10 days ago. The death has now been referred to the coroner. Labour will campaign under the three words, Better Starts Now, the party officially unveiling its slogan at a suburban Christchurch home this morning. It follows a promise of more jobs, affordable health and lower bills. And Westport's Business Association is adamant that the Bathurst coal mine should stay open. It's seeking fast-track approval to continue operating. Westport Enterprise Network's Luke Robertson says they're on a knife's edge.
17: There is a perception that Westport is exclusively coal mining and that the mine dominates the landscape. That's simply not true, and people love living here because of the environment, not in spite of it.
15: In rugby league with Machinery Haas in a league of their own, winger Dallin Watanez-Lesniak will have surgery on a broken collarbone he suffered during the Warriors' win over the Rabbitohs in the NRL. He might be back for the finals. NRL legend Brad Fittler told Channel 9 they'll be okay without him.
0: Pompey's on the bench. There's a few blokes played a lot of first grade on the bench as well, so I reckon if any position they can cover, it's an outside back.
15: And Kiwi F1 driver Liam Lawson finished 7th at the Dutch Grand Prix, won by Lando Norris in his McLaren.
14: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Ross Skill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: वेदर के हाल चाल 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है आज वैसे काफी खूबसूरत दिन है बारिश के आसार 1% भी नहीं है लेकिन सनसेट होगा आज ठीक 5:55 पे

आ चुका हूँ मैं फिर से। क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। मेरा नाम केतन है और आप मेरी आवाज सुन रहे हैं हम की तरफ से। अरे वाह, ये तो इको हो रही है। कैसे हैं आप सभी? मिस किया मुझे? मैंने डेफिनेटली किया है आपको, बहुत ज्यादा मिस किया है। इतना मिस किया है कि